कल्याण जी आनंद जी का संगीत लिए ये रचना गुलशन बावरा की लिखी हुई थी। लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों का संगम था। फिल्म का नाम परिवार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में।

जसपाल सिंह की आवाज से सजा ये गीत आपने सुना सावन को आने दो। इस फिल्म से राज कमल का संगीत था, मदन भारती की लिखी रचना थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। प्रातः के 5:36 और 16 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत आदमी और इंसान इस फिल्म से अभी आपने सुना। रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना थी। साथियों, प्रकृति का बहुत महत्व है हम सभी के जीवन में। प्राकृतिक नज़ारों को हम निहारते हैं, नज़ारे तो सुंदर लगते ही हैं और ये हमें फायदा भी देते हैं। हरियाली देखने में कितनी अच्छी लगती है, फूल बागीचे, इसी तरह के बाद जज्बात से सजी ये रचना आइए सुनते हैं।

फिर इस फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना। 1980 रिलीज फिल्म, भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी, रघुनाथ सेठ का संगीत, विनोद पांडे की लिखी रचना।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अनोखी अदा फिल्म से वर्ष 1948 रिलीज ये फिल्म। नौशाद का संगीत शकील बदायूं की लिखी रचना। और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है अनूप जलोटा की गाई ये रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:53 हुई है। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे 6 बजे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। अर्पण कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 6:10 पर। 6:44:30 पर श्रोता साथी सुन सकते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज अयोध्या कांड प्रसारित किया जाएगा भाग 18। संस्कृत समाचार 6:55 पर। 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और अंग्रेजी में आप सुन सकते हैं समाचार प्रातः 7:05 पर। गोल्ड सुप्रभात सुनिएगा प्रातः 7:10 पर। आज सवेरे सुन सकते हैं आप प्रातः 7:30 पर। समाचार प्रभात के तहत हिंदी न्यूज प्रातः 8 बजे। मॉर्निंग न्यूज न्यूज इन इंग्लिश 8:15 पर। उर्दू बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 8:30 पर।

8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी, साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय शगुन चोपड़ा।

6:12 और ठीक 4 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। लेकिन इस सुप्रभात के साथ एक प्रश्न और मैं आपके लिए लेकर आई हूं, वो ये कि हर दिन जब हम आपसे कहते हैं सुप्रभात, या अपने आप से भी कहते हैं, सुबह उठते हैं, अपने आप से मिलते हैं, तो क्या एक सवाल पूछते हैं कि क्या हम सचमुच जी रहे हैं या सिर्फ एक एक दिन करके अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। सच कहें तो कई बार ऐसा एहसास होता है कि सुबह उठने से लेकर रात तक हमारी जिंदगी एक मशीन की तरह चलती है। अलार्म बजा, मोबाइल देखा, काम पर गए, लौटे, खाना खाया और फिर अगली सुबह। अब इस भागदौड़ में हम अपने भीतर के उस इंसान से दूर होते जा रहे हैं जो शांति, प्रेम और आनंद का स्रोत है। तो क्यों ऐसा है और क्या इसे बदला जा सकता है? क्या हम एक ऐसी जिंदगी भी जी सकते हैं जो हमें वास्तव में खुशी दे, जो हमें याद दिलाए कि हम अपने जीवन में क्या करने वाले हैं या क्या करना चाहते हैं, या जो हमें ये याद दिलाए कि जिंदगी का वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचे बिना हम बस जीते जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे जिए जाना अच्छा है? क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है जीने का? सब बात करेंगे, लेकिन साथ साथ अगर हम भजन सुने तो बात ही क्या। और ये जो पहला भजन है ना, बहुत ही प्यारा है, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और याद दिलाएगा कि हाँ, जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना है, ये जो भागदौड़ है ना, इसके अलावा भी।

जी हाँ, तो हर दिन, हर एक दिन हमारा यूं ही बीतता जा रहा है बिना ये सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे जीवन के लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ भी है या नहीं। बस हम तो सिर्फ करते जा रहे हैं। और ऐसे ही भागदौड़ वाली ज़िंदगी में एक दिन ऐसा होता है कि हम बैठते हैं और ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसका मर्म क्या है। और तब

अपने आप पर गुस्सा आता है, एक पछतावा होता है कि अभी तक हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, या क्यों इतना सारा समय हमने यूं ही व्यर्थ कर दिया। तो इसीलिए हमने बात की कि हम जिंदगी सिर्फ बिताते जा रहे हैं या वास्तव में जी रहे हैं, ये हम सोचते क्यों नहीं, और क्या सुबह का समय इस आत्ममंथन के लिए नहीं है? क्या हम जब जल्दी उठते हैं तो क्या ये ना सोचें? क्योंकि सोचेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अब सोचने के लिए पहले अपने आप से बात करना ज़रूरी है, लेकिन हम तो सबसे पहले सुबह उठते ही किससे बात करते हैं? उस ऊपर वाले से, अपने परिवार से, या मोबाइल की स्क्रीन से? आप सभी के पास इसका उत्तर है। पर जीवन आजकल इतना तेज़ हो गया है कि हम घड़ी की सुइयों के साथ दौड़ रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, पर अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए संत कबीर ने एक बार कहा था कि माला फेरत जग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। यानी बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने मन की ओर लौटना ज़रूरी है। और जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, यानी शांति, स्थिरता, सत्य, आनंद, वो सब कुछ बाहर मिलेगा ही नहीं, वो अंदर ही मिलेगा। तो जब अपने आप से हम ऐसा कहते हैं कि इतना समय ही कहाँ है, तो उस लकड़हारे की कहानी याद आ जाती है। कौन सा लकड़हारा, क्या किया था उसने, क्या है उसकी कहानी, सब बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये भजन सुनते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

समय हो चला है 6:30 और ठीक 2 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और हम बात कर रहे थे कि हम अपनी ज़िंदगी को इतनी भाग दौड़ के साथ जी रहे हैं या सिर्फ बिता रहे हैं, और इसी बारे में हमने आपसे कहा था कि बाहर की इतनी भागदौड़ है, इतनी जिम्मेवारियां हैं, इतने लक्ष्य हैं कि वो हमें अपने आप से जुड़ने नहीं देते, हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। पर ये भागदौड़ कभी भी हमें वो नहीं दे सकती जिसकी तलाश में हम भाग रहे हैं, यानी शांति, सुख, स्थिरता,

सत्य। और इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जब ऐसी हम बात करते हैं तो लकड़हारे की कहानी याद आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी कहानी। तो कहानी है एक लकड़हारे की जो लगातार पेड़ काट रहा था। घंटों की मेहनत के बाद भी उसका काम कम होता जा रहा था। तो किसी ने उससे कहा कि तुम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज क्यों नहीं कर लेते। उसने कहा कि इतना समय ही कहाँ है। तो बस हमारी जिंदगी भी उस कुल्हाड़ी और उस लकड़हारे जैसी हो गई है। हम भी काम करते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, लेकिन अपने मन की धार को तेज करना भूल गए हैं। और वो तेज होती है जब ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या कुछ पल सिर्फ मौन बैठ जाते हैं। ऐसे सुनने में ऐसा लगता है कि ये समय की बर्बादी है कि खाली बैठ के क्या करना है, लेकिन सच कहें तो ये जो अपने आप से जुड़ना है ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, मौन के माध्यम से, यही सबसे जरूरी है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सारा बल तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। तो जब तक हम अपने अंदर लौटेंगे नहीं, बाहर की सफलता चाहे हमें कहीं भी पहुंचा दे, किसी भी लक्ष्य तक ले जाए, फिर भी अधूरी लगेगी। तो हम इसे और कैसे समझ सकते हैं? और जो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है आजकल, क्या उसको भी हम इस समझ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अब वो हिस्सा कौन सा है ये आप सोचिए, और सोचने के बाद फिर इस बारे में हम आगे बात करेंगे।

इस बात की कि क्यों भाग दौड़, कितनी भाग दौड़ और कहां तक भाग दौड़, आखिर कहीं तो रुकना है, और अगर नहीं रुकते हैं तो उसका नुकसान क्या है। तो नुकसान ये है कि हम जब अपने आप से नहीं जुड़ते या अपने लिए समय नहीं निकालते तो फिर हमारी प्रसन्नता कम होने लगती है, हमारी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं जाने लगती है। अब आप ही सोचिए, जैसे मोबाइल की बैटरी है ना, उस बैटरी को आप बार बार चेक करते रहते हैं कि वो बैटरी फुली चार्ज्ड है ताकि आपको मोबाइल ठीक से चले। लेकिन हमारे मन की बैटरी तो ऐसे ही चार्ज होती है, जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ देर मौन के लिए बैठते हैं तब। और जब मन की बैटरी को चार्ज नहीं करते तो शरीर थका हुआ होता है, उसके लिए तो हम सो जाते हैं, लेकिन मन भी तो थकता है, उसके लिए कुछ नहीं करते। तो जैसे एक बार किसी ने एक महात्मा से पूछा कि आप हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हर दिन कुछ समय अपने भीतर बिताता हूँ, और वो रिचार्जिंग है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, ऐसे ही मौन, ध्यान, स्मरण, ये हमारे मन को एनर्जी देता है और इसी एनर्जी से हम आगे बढ़ पाते हैं। जानते हैं, एक बार महात्मा बुद्ध के पास भी एक व्यक्ति आया था, बहुत परेशान, और वो भी ऐसा ही कुछ सवाल लेकर आया था। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें एक ग्लास पानी में मिट्टी मिलाकर दे दी और कहा अब इसे पी जाओ। वो बोले कैसे पी जाऊं, पानी तो बहुत गंदा है। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने उस ग्लास को नीचे रख दिया। कुछ देर में मिट्टी नीचे बैठ गई। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मन भी ऐसा ही है, हम उसमें इतना कुछ मिलाते जाते हैं, उसे शांत होने ही नहीं देते, उसे बैठने ही नहीं देते, और इसीलिए हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई भी समाधान नहीं दिखता। लेकिन जब शांत रहना सीख जाएंगे तो समाधान अपने आप दिखाई देंगे। हमारी बेचैनी का कारण वास्तव में हमारी परिस्थितियां हैं ही नहीं, हमारा अशांत मन है, और हम बार बार परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अर्पण में आज हम यही कोशिश

जी हाँ, तो बात हो रही थी अपने आप से जुड़ने की या सुबह सुबह का समय अपने साथ बिताने की, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, सिमरन करते हैं या मौन बैठते हैं, तो धीरे धीरे हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। नहीं तो हम या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंताओं में, लेकिन जीवन सिर्फ इस पल में है। तो जो आप कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसे उसी समय महसूस कीजिए, उसमें उपस्थित रहिए, बस यही तो ध्यान है। और इतना सीख जाने से ही बहुत आसान हो जाता है अपने आप से जुड़े रहना। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप से जुड़ें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें। और ये बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे एक बार एक किसान से किसी ने पूछा था कि आपकी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है, तो उसने कहा कि मैं अपने बीजों की बहुत ज़्यादा देखभाल करता हूँ। तो हमारे विचार भी हमारे जीवन के बीज हैं, जैसी देखभाल हम उनकी करेंगे वैसा ही जीवन होगा। इसीलिए सुबह उठते ही कोई शिकायत नहीं, सिर्फ कृतज्ञता से शुरुआत, और इसीलिए अपने आप से जुड़ना ज़रूरी है। तो बातें बहुत हुई, अब पूनम चलती है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। नमस्कार।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति कटुवचन भी बोल रहे हैं।

सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे। क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

0: अभियानमिदं द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे प्रारब्धस्य हरघर तिरंगा इत्युपक्रमस्य पञ्चवर्षम् अस्ति। अनेन अभियानेन नागरिकाः राष्ट्रध्वजं प्रस्थापयितुं तथा देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाश्च भावनां प्रकटयिष्यन्तीषु विविधासु गतिविधिषु भागं ग्रहीतुं प्रोत्साह्यन्ते। अस्मिन् वर्षे अभियानं विशेषत्वेन महत्वपूर्णमस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततम वर्षपूर्त्या सह आयोज्यते। अनेन राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रगीतस्य च विशिष्टः समागमः भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नागरिकान् अभियाने सक्रियतया भागं ग्रहीतुम् अथ विकसितभारतस्य निर्माणे स्वप्रतिबद्धतां पुनर्नवीकर्तुं च आहूतवान्। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन स्वातन्त्र्यभावनायाः उत्सवस्य भागरूपेण पीतवर्णमार्गे हरघर तिरंगा इति विषयवस्तुना सुसज्जिता विशेषा मेट्रो रेल यानसेवा समारब्धा। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे DMRC इत्यनेन कथितं यत् भारतस्य 80तमे स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोज्यमानानां सप्ताहव्यापिनां कार्यक्रमाणां भागरूपेण एषा विशेषा मेट्रो रेलसेवा प्रारब्धा। ओडिशाराज्ये पुनः प्रचण्डवृष्टेः अनन्तरं राज्यस्य अनेकेषु भागेषु नदीनां वर्धमानः स्तरः नूतनः जलाप्लावनप्रकोपः जनयति। बैतरणी नदी अस्य प्रावृट्कालस्य तृतीये जलाप्लावनप्रकोपे प्रविष्टवती अस्ति। एकया नूतन न्यूनचापव्यवस्थया सम्पूर्णे राज्ये अतिवृष्टिः अभवत्। अधिकारिणः जलाप्लावनप्रवणक्षेत्रेषु नदीस्तरस्य निरीक्षणं निकटतया कुर्वन्तः सन्ति, आवश्यकान् समाह्वानान् निवारकोपायाञ्च कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयः भारोत्तोलकः महाराजन अरुमुगा पाण्डियनः उज्बेकिस्तान ताश्कन्दनगरे एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इत्यस्यां स्पर्धायां पुरुषाणां 65 किलोग्राम मिते भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
1: जय। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. Mr. Modi shared a video message and said that those who will play will flourish and appealed to the citizens to always cheer for Bharat.
2: जो खेलेगा वो खिले।

0: नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नया सप्ताह, नए सपने और सबके साथ ही गुड सुप्रभात। तो सोमवार को अक्सर हम ये कह देते हैं कि ओफो, फिर वही ऑफिस, फिर वही ट्रैफिक, फिर वही भाग दौड़। लेकिन सोचिए, अगर सोमवार नहीं होता तो नई शुरुआत कैसे होती। इसीलिए आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जो कल अधूरा रह गया था उसे आज पूरा करके दिखाना है। तो उठिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए कि आज का दिन मेरा है और आज से मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बिल्कुल बदल दूंगा। तो बस इतना सा सोचने से दुनिया बदल जाएगी। जैसे पहला पहला प्यारा प्यारा गाना जिसको सुन के हम जो अलसाए से हैं ना इस समय, वो सोच बिल्कुल बदल जाएगी। तो मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से और इस प्यारे गाने से।
1: पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा कि ही यारा में उठे तहिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आई

सात बजकर 7:10 और ठीक 58 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है गोल्ड सुप्रभात, सोमवार वाला गोल्ड सुप्रभात, पूरी ऊर्जा पूरी एनर्जी वाला गोल्ड सुप्रभात, यानी नई सुबह।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

7:15 और 58 सेकेंड आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। मैं हूं पूनम आपके साथ। और ये जब 15 मैंने बोला ना, तो मुझे याद आया कि 15 अगस्त बस कुछ ही दूर तो है, तो स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाने वाले हैं, पूरे देश में उसकी जो लहर है, देशभक्ति है, वो अभी से ही हमारी रगों में दौड़ रही है। हर तरफ हमें तिरंगा नजर आता है। और ये याद दिलाता है कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक मौका है अपने तिरंगे से भावनात्मक रूप से जुड़ने का। और देश भर में बहुत सारी तिरंगा यात्राएं हो रही हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और इसमें हमें ये याद आता है कि ये जो अभियान है, ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम अपने घर पर तिरंगा फहराएं, बल्कि इसीलिए भी है कि बच्चों को तिरंगे से जोड़ें, उन्हें उसका अर्थ भी समझाएं। जैसे केसरिया यानी त्याग और साहस, सफ़ेद यानी सत्य और शांति, और हरा समृद्धि और विश्वास, और अशोक चक्र निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा। तो ये सिर्फ एक उत्सव की बात नहीं है, ये बात है हर दिन अपनी जिम्मेवारी को निभाने का संकल्प लेने की। और यही संकल्प हम लेते हैं जब हम इस अभियान से जुड़ रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

जी हाँ, इस प्यारे से गाने के साथ आपको याद दिला दें कि सूर्योदय का समय हम आपको बताते हैं हर रोज़, और इसीलिए बताते हैं ताकि आप अपने दिन को प्लान कर सकें और जल्दी उठ सकें, क्योंकि सूर्य देवता भी तो जल्दी आ जाते हैं। अब आ जाए 5:47 के आसपास हो जाएंगे, 7:05 के आसपास। दिन भर बादलों की आवाजाही रहेगी, बारिश की संभावना है, इसीलिए घर से निकलें तो छाता रखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस बात को याद रखें कि हर सूर्योदय हमें एक और मौका देता है, जो हम कल नहीं कर पाए उसे आज हम करें और मुस्कुरा कर करें। वैसे मुस्कुरा कर एक काम करना और ज़रूरी है, और वो है योग करना, ताकि आप बिल्कुल ठीक रहें। एक छोटा सा योग है, स्ट्रेचिंग है, जिसे ताड़ासन कहा जाता है। 2 मिनट आपको करने होंगे सिर्फ, इसको लगाने 2 मिनट लगाने होंगे इसे करने में, कि ये जो योग है ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, यानी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करता है और शरीर को सीधा रखता है, यानी आपका पोस्चर करेक्शन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। करना क्या है, दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े होना है, दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, हथेलियाँ मिलानी है, एड़ियों को ऊपर उठाकर पूरे शरीर को आसमान की तरफ खींचना है। धीरे धीरे आप सामान्य सांस लेते रहें, 15 से 20 सेकेंड, बस इतना ही। इतना करने से ही सोचिए कितना कुछ बदल जाएगा। छोटी सी चीज़ है, लेकिन जैसे आप इसे करना शुरू करते हैं आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव लेकर ये आ जाती है।

तो इसी प्यारे से गाने के साथ आपको याद दिला दें कि आज का दिन सिर्फ एक कैलेंडर का पहला दिन नहीं है कि आपने एक नया हफ्ता शुरू किया है, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का एक नया कदम है। किसी के साथ मुस्कुरा कर मिलके माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने काम को पूजा समझकर कीजिए और याद रखिए कि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बड़ी सफलताओं की नींव बनती हैं। तो इसी के साथ फिलहाल पूनम चलती है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही FM गोल्ड सुनते रहिएगा। नमस्कार।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर साल मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हम यहाँ बेफिक्र होकर बैठे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उसी देश प्रेम को आइए आज याद करते हैं। कल से शुरू हुए तिरंगा अभियान के माध्यम से राज्य भर में तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है और देश प्रेम को याद किया जा रहा है। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इसी नोट के साथ। और आज मेरा साथ दे रही हैं शगुन चोपड़ा।
1: नमस्कार फरहत, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल यस, फरहत राइटली सेड, तिरंगा इज अ प्राइड एंड इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन व्हिच इंस्पायर्स अस to do the best for our nation. So let us participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and then renew our collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. And Tiranga is the symbol of unbreakable bond that has always inspired us, you know, every one of us to unite and build our nation.
0: जी
1: right?
0: बिल्कुल शगुन, और ये अभियान 17 अगस्त तक चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर नागरिक से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का ये स्रोत भी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इस पूरे अभियान की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा।
2: घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
3: संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्य पथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की अनूठी पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा साइट पर अपलोड करने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस समारोहों से जुड़ा एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान बनकर उभरा है। ये अभियान नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देश के प्रति अपने जुड़ाव को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज सवेरे के लिए विशाल शर्मा।
0: तो शगुन, हमारी श्रोताओं से भी यही अपील है कि वो आज से ही शुरू कर दें अपने घर में तिरंगा फहराना।
1: विल यस पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली। सो दिस इंडिपेंडेंस डे राष्ट्रपति भवन हैज प्रिपेयर्ड अ वेरी स्पेशल इनविटेशन किट फॉर द एट होम रिसेप्शन टू बी होस्टेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ऑगस्ट 15th। The kit was made by around 130 artisans, designers, teachers and students. Over more than 3 months, they have been preparing it. And nearly 50 artisans from Bastar, Chhattisgarh, they were part of the team. And what makes this kit special is that it celebrates the art, traditions and culture of four Indian states. They are छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश।
0: और बहुत सारी कला हैं इसमें। छत्तीसगढ़ की कला में ढोकरा कला और पिटवा लोह शिल्प को शामिल किया गया है। अगर बस्तर की बात की जाए तो वहां के कारीगरों ने पुराने लोहे से सुंदर कलाकृतियां और घंटियां बनाई हैं। गोवा की खाजन भूमि को सुंदर अजुलेजू टाइल पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है। और शगुन, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां वारली पेंटिंग का बहुत नाम है जी, और उसको नदी को फिर से जीवंत करने की इसमें कहानी दिखाई गई है।
1: खाम नदी,
0: जी खाम नदी। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो भील पेंटिंग में बीज बचाने की पुरानी परंपरा को भी इसमें दर्शाया गया है। इस परंपरा की मदद से स्थानीय अनाज, दालों और सब्जियों की कई किस्मों को सुरक्षित रखा जाता है। इस तरह ये निमंत्रण किट सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि भारत की विविध कला, संस्कृति, परंपराओं और कारीगरों की मेहनत का सुंदर प्रतीक है। तो ये बहुत खास है, मुझे लगता है इसको मतलब देखने का अपना एक अलग ही मजा होगा।
1: दैट इज ट्रू, दिस पर्टिकुलर किट
0: जी।
1: So, Russia had proposed exploring a railway route to the Indian Ocean and India aimed at reducing to the Indian Ocean and India. This aims at reducing dependence on strategically important maritime routes Russian Deputy Prime Minister Marat Khusnulin said the alternative routes could help address risks which are associated with the two strategic waterways, Strait of Hormuz, the other one is Bosphorus Strait. So according to Russia's state news agency, Mr. Khusnulin said rail routes passing through Turkmenistan, Iran and Afghanistan could be explored to provide access to India. The proposal comes amid the ongoing conflict in West Asia, which has disrupted shipping through the Strait of Hormuz.
0: और शगुन नवीकरणीय ऊर्जा में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है. गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा इसने पार किया है. पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है.
1: So, Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026, the achievers, at his residence in New Delhi yesterday. And during the interaction, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud. Through their exceptional performances and their success, they will motivate, these youngsters will motivate many other youngsters as well. Mr. Modi shared a video message and said that those who will play will flourish and appeal to the citizens to always cheer for Bharat.
4: Jo khelega wo khilega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki.
1: So India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd of July and the 2nd of this month, 2nd of August at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals in total, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. So exceptional performance by our athletes.
0: Ji, aur ab nausena abhyas ki baat kar lete hain. Bharatiya nausena Amerikee nausena ka sanyukt abhyas EOD 2026 aaj se Kochi sthit Takshani nausena kaman mein shuru hokar 14 अगस्त तक चलेगा. रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है. 5 दिन के इस अभ्यास में विषय विशेषज्ञ विनिमय कोर्स प्रशिक्षण उपकरणों के प्रदर्शन और स्थिति आधारित व्यवहारिक अभ्यास शामिल हैं.
1: इंडियन वेटलिफ्टर Maharajan Arumugapandian won the silver medal in the men's 65 kilogram category at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan. So Maharajan produced a personal best of total 285 kilograms, lifting 128 kilograms in the snatch and 157 kilograms in the clean and jerk. Vietnam's Huang Thach won the gold medal with a total lift of 291 kilograms, finishing 6 kilograms ahead of Maharajan.
0: और शगुन जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो देश है वो कृषि पर सबसे ज्यादा निर्भर है. तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे. पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है. तो इससे जो है बहुत सारे किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे. और आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान मिथक तोड़ना जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा. इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे. तो आप इसमें खुद हमारे श्रोता भाग ले सकते हैं और अपने सवाल अब हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं. और श्रोताओं अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का. तो शगुन से सबसे पहले चेन्नई की खबरें जान लेते हैं.
1: राइट फरत. चेन्नई कस्टम्स ऑफिशियल्स अरेस्टेड अ मलेशियन नेशनल आफ्टर रिकवरिंग 4.03 केजी ऑफ सस्पेक्टेड हाई ग्रेड हाइड्रोपोनिक गांजा फ्रॉम द चेक्ड इन बैगेज एट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो द ऑफिसर्स ऑफ द एयर इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ चेन्नई कस्टम्स दे इंटरसेप्टेड द पैसेंजर आफ्टर ही अराइव फ्रॉम बैंकॉक. The passenger allegedly attempted to exit through Green Channel without making a declaration to customs. So during X-ray screening, his checked-in baggage showed suspicious images, following which the luggage was subjected to detailed examination. The passenger was arrested and subsequently remanded in judicial custody. This was from Chennai.
0: और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं तो हर घर तिरंगा अभियान चल ही रहा है, तो डीएमआरसी ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया है कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल इस ट्रेन की शुरुआत की गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने नागरिकों से गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने और डिजिटल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का भी आग्रह किया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व आदिवासी दिवस

0: पर सभी आदिवासी समाज को कल शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं भारत की अमूल्य पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज को सम्मान देने के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, अधिकार और अवसरों के माध्यम से विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। तो ये तो थी दिल्ली की दो खबरें शगुन, और अब आपके पास क्या है बेंगलुरु में?
1: So, in Bengaluru, former Chief Minister of Karnataka and sitting MP Basavaraj Bommai has informed that an educational institution will come up at a suitable location for imparting top quality coaching for various competitive examinations to benefit poor as well as the talented students of North Karnataka. It's for everyone. He was speaking to media persons in Hubballi after a state level preliminary consultative meeting. And this was organized, this preliminary consultative meeting was organized by North Karnataka Talented Children's Competitive Examination Welfare Committee, saying that establishing a top-notch training center in North Karnataka is their collective resolve. Bommai informed that a small action committee led by experts will be formed to select a suitable location, also determine the institutional model, and decide on the first-year training activities for those passing 10th and 12th standards. So it's good news for the students of North Karnataka.
0: जी शगुन, और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, वहां पर भी हर घर तिरंगा अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों जिसमें बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर में एक तिरंगा रैली आयोजित की। इस रैली में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, छात्रों, खेल प्रशिक्षकों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। थाने में थाने नगर निगम और आम ही साइकिल प्रेमी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन किया। बुलढाणा जिले के खामगांव में हर घर तिरंगा, टीबी मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत अभियानों के तहत तिरंगा यात्रा और जन जागरूकता रैली आयोजित की गई। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि इस अभियान के तहत लोगों तक बहुत सारी जो सरकारी पहलें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, ताकि लोग नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो बच्चे नशा करते हैं उनको छोड़ सकें। और इसके अलावा टीबी जैसी बीमारी, जिसके लिए मुझे लगता है ये पहले आम चीजें हो गई थी कि लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी इलाज के बारे में, लोग सोचते थे कि शायद ये होगी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन ये भी है कि ये ठीक हो सकती है, तो इसमें भी जागरूकता बहुत जरूरी है।
1: वेल, दैट इज ट्रू
0: जी।
1: एंड हर घर तिरंगा इज बैक, सो अगेन वी वुड लाइक टू टेल आवर लिसनर्स दैट प्लीज गेट रेडी टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड्स बिगेस्ट जन भागीदारी मूवमेंट, एंड इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू द स्पिरिट ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम दिस ईयर। सो नाउ लेट्स हेड टू हैदराबाद। Telangana's young athletes have made the state proud at the national level, winning a total of 18 medals in water sports competitions held across three states in canoeing at the Asmita Canoe Sprint National Championship in Bhopal, Madhya Pradesh. So Telangana players, they won 8 medals in rowing at the 27th Sub-Junior National Rowing Championship in Kolkata, West Bengal. Telangana team bagged 6 medals, 3 gold, 1 silver and 2 bronze across 10 events. In swimming, at the National Junior Swimming Championship in Jaipur, Rajasthan, Telangana won 2 more medals. So Sports Minister Vakiti Srihari, along with senior sports officials and coaches, congratulated all the athletes and their coaches for bringing glory to Telangana on the national stage. Well, yes, congratulations to all the young athletes.
0: और पश्चिम बंगाल सरकार भी हर घर तिरंगा अभियान में भाग ले रही है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत होगी एक नई पहल की, यानी आकाशवाणी भवन के पास स्थित गोस्थो पॉल सरानी से विक्टोरिया मेमोरियल के उत्तरी द्वार की ओर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी इस रैली में शामिल हो रहे हैं और इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। और श्रोताओं, चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो हम सब जानते हैं कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, तो आज भी आप तैयार हो जाइए क्योंकि हल्की बूंदाबांदी आज हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अब कोलकाता की बात करते हैं तो वहां पर आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: So Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum temperature will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature in Bengaluru was 20 degrees

0: Celsius and maximum will be around 29 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky again. There is possibility of development of thunder lightning. The temperature, minimum temperature, will be around 24 degrees and maximum temperature in Hyderabad will be around 32 degrees Celsius. So yes, today we are also going to talk about why 10th of August is special. So today we observe National Deworming Day. This is an important health initiative aimed at protecting children and adolescents from worm infections. And in India, National Deworming Day is observed twice every year on 10th of February and 10th of August, which is today. The program focuses on deworming children and adolescents and creating awareness about the prevention of worm infections.
1: जी बिल्कुल, इसमें पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों को और अक्सर बच्चे पेट में दर्द भी बताते हैं, तो इसका ध्यान देना बेहद जरूरी है और सरकार भी इसमें जागरूकता अभियान चलाती है। यहाँ तक कि कई सारे स्कूलों में जो टीचर्स हैं वहाँ पर जो बच्चों को है वो एक ये गम मतलब मेडिसिन दी जाती है। जी एक अभियान होता है वो, उसमें ये मेडिसिन खिलाई जाती है ताकि जो बच्चे हैं वो इस कीड़े से जो है दूर हो सके।
0: एंड वर्म इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड। वर्म इन्फेक्शंस कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स हेल्थ फॉर अ न्यूट्रिशन ग्रोथ एंड देयर लर्निंग एबिलिटी एज वेल। सो डीवर्मिंग हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ दीज इन्फेक्शंस एंड देयरबाय सपोर्ट्स healthy development. So children are also encouraged to follow, everyone actually, not just children, but everybody is also encouraged to follow simple hygiene habits such as washing hands with soap, drinking clean water, washing fruits and vegetables properly, and keeping your surroundings clean, it will help, and using toilets instead of practicing open defecation. So National Deworming Day reminds us that good health begins with good hygiene and awareness.
1: बिल्कुल, जान है तो जहान है, तो ऐसे में स्वस्थ रहना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका हर चीज में दिमाग लगेगा, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर खेल कूद हो,
0: हर एक्टिविटीज, राइट। सो स्टे क्लीन, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।
1: जी, और अब आइए इतिहास में हम कुछ और पन्नों को पलट लेते हैं और बात करते हैं 10 अगस्त 1793 की।
0: Well, right, the Louvre Museum Central des Arts was symbolically opened during the French Revolution and transformed a former royal palace into a museum, representing the idea that art and culture belong to the people.
1: 1792 की अगर शगुन बात की जाए तो आज ही के दिन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने तुइलरी महल पर धावा बोला, जिससे फ्रांसीसी राजशाही का पतन तेज हुआ और गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
0: ग्रेट। इन 1944 गुआम वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सिक्योर आफ्टर यूएस फोर्सेस डिफीटेड ऑर्गेनाइज्ड जापानीज रेजिस्टेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू।
1: 1948 में आज ही के दिन भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई।
0: इन 1962 स्पाइडरमैन made his first appearance in Marvel's Amazing Fantasy 15. This character is actually created by Stan Lee and Steve Ditko. So the issue introduced Peter Parker and established the character's famous theme of responsibility accompanying great power.
1: और स्टेन ली और स्टेव डिटको को भी नहीं पता होगा कि बच्चे इतने उनके प्रेमी हो जाएंगे स्पाइडरमैन को लेकर।
0: एंड द मूवी आल्सो केम, द मार्वल्स स्पाइडरमैन हैज आल्सो बीन रिलीज्ड। एंड द अदर थिंग दैट हैपेंड इन 1990 वाज नासाज मैगेलन स्पेसक्राफ्ट एंटरिंग ऑर्बिट अराउंड वीनस, बिगिनिंग इट्स मिशन टू मैप द प्लैनेट सर्फेस यूजिंग रेडार।
1: और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया, जिससे उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो अभी तो हम लोगों ने कर ली, अभी तो हमने कर ली इतिहास की बात, और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसको हम याद कर रहे हैं शगुन?
0: टुडे वी आर रिमेम्बरिंग पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, the monumental Indian musicologist and the scholar. He revolutionized Hindustani classical music. How he did that? Well, he introduced the thought system, and he is widely recognized as the pioneer. He systemized, he documented, he institutionalized the Hindustani classical music, transitioning it from an unwritten or sort of secretive oral tradition into a structured academic discipline by the way of thought.
1: और अब हम याद कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को। हिंदी के पहले रचनाकार थे ये, जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने ला के खड़ा करती हैं, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग बिल्कुल असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में और एक मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई ने बहुत ही नजदीक से देखा। सामाजिक पाखंड और

0: रूढ़िवादी जीवन मूल्यों को उन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया.
1: वेल यस, सटायर, व्यंग्य, दिस डिस्क्राइब्स ह्यूमन वैल्यूज एंड नेचर एज वेल. वेल, वी नो हिम एज हरिशंकर प्रसाई एज अ सटायरिस्ट एंड ह्यूमरिस्ट, बट ऑल्सो फॉर हिज सिंपल एंड डायरेक्ट स्टाइल एज वेल. एंड ही रोट व्यंग्य, एज वी टोल्ड यू, दे रिफ्लेक्टेड हिज क्रिटिकल थिंकिंग एंड ह्यूमरस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सिंपल थिंग्स, एज यू सेड, विद ह्यूज मीनिंग्स. सो प्रसाई वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1982 फॉर हिज सटायर विकलांग श्रद्धा का दौर. ही स्टार्टेड अ लिटरेचर मैगजीन कॉल्ड वसुधा, एंड डिस्पाइट बींग हाईली प्रेज्ड, ही हैड stop the magazine after the publication suffered economic losses as well. Harishankar Prasai used to give answers of readers in the column Poochhiye Parsai Se in a Hindi newspaper Deshbandhu, which was published from Raipur and जबलपुर.
0: और उन्होंने सदाचार की तावीज पे भी एक व्यंग्य लिखा, जो लोग ऊपर से बहुत ईमानदार बनते हैं अंदर से कैसे होते हैं. तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंग्य इनके थे. yes. जो मुझे लगता है आम जीवन में बहुत जरूरी हो जाता है उनके व्यंग्य को पढ़ना.
1: दे डिस्क्राइब ह्यूमन नेचर वेरी वेल. लिसनर्स, टुडे they're also remembering John Joseph Haley Jr., the actor, comedian, dancer, radio host as well, a singer and a drummer. He is most notable for his portrayal of the Tin Man and his farmhand counterpart Hickory in the 1939 film The Wizard of Oz, very popular film. So his wide-eyed, good-natured expression gained him supporting roles in musical features Poor Little Rich Girl and Higher and Higher with Frank Sinatra and the Irving Berlin musical Alexander's Ragtime Band. There, the song that we have chosen, this is a sort of a live performance. This goes by the name Never in a Million Years by Jack Haley.

और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं जिनकी ऐसे शख्सियत को जिनकी चर्चा करना बहुत आज के टाइम में जरूरी हो जाता है। इस समय हम लोग शगुन घर हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, तो तिरंगे की बात की जा रही है। हम आपको बता दें कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गीत जो जिसने लिखा था उनकी हम बात कर रहे हैं, उनको हम याद कर रहे हैं आज, श्यामलाल गुप्त पार्षद की जी। ये पत्रकार भी रहे, समाज सेवी भी रहे, अध्यापक भी रहे, बहुत सारे पद इन्होंने संभाले। और पांचवी कक्षा में जब थे ये, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, परोपकारी पुरुष मुहिम में पावन पद पाते देखें, परोपकारी पुरुष मुहिम में पावन पद पाते देखें, उनके सुंदर नाम स्वर्ण से सदा लिखे जाते देखें। तो आइए सबसे पहले ये गीत ही सुन लेते हैं।

0: इसके अलावा इन्होंने स्त्री शिक्षा और दहेज विरोध में भी अपने सक्रिय योगदान दिया। विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। इसके अलावा वैश्य पत्रिका का जीवन भर संपादन किया। रामचरितमानस उनका प्रिय ग्रंथ था।
1: विलियस श्यामलाल गुप्त, वी नो हिम बाय हिज पेन नेम पार्षद, लिरिसिस्ट, penned the famous patriotic flag song which we are listening in the background, and this song, it acted as a catalyst of Indian freedom struggle movement, and this was originally penned in 1924.
0: Ji, aur dekha jaye to jitni bhi patriotic movies hoti hain usme ye geet alag alag jo geetkar hain wo gaate hain, lekin bahut kam log jante hain ki ye likha kisne hai, to aaj humne wo bhi apne shrotaon ko bata diya.
1: Rightly.

और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के पहले राम को, यानी कि प्रेम अदीब को। जी, प्रेम अदीब को राम के रूप में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। उनकी फिल्म शोभना समर्थ के साथ पर्दे पर राम की भूमिका में नजर आई और ये फिल्म बहुत ही मशहूर भी हुई, राम राज्य। आइए सुन लेते सबसे पहले इसी फिल्म से ये गीत।

0: अश्वकेरथ पर सारथी
1: Supreme Adib's legacy lives on through his unforgettable performances. They have left a lasting impression on audiences and shaped the portrayal of Lord Ram in Indian cinema.
2: और उनकी जो बहुत ही शालीन किस्म के थे, शगुन कहा जाता है, और उनकी जो आवाज थी बहुत ही कोमल थी, और इसी वजह से उनको राम के किरदार के लिए चुना गया था. और दिल को छू लेने वाले उनके अभिनय न सिर्फ इन्हें फिल्म जगत में एक विशेष स्थान दिलाया बल्कि सदा के लिए अमर भी कर दिया. उनकी बहुत सारी फिल्में रहीं, सागर, मूवी टोन की भोले भाले, साधना, घूंघट वाली. तो आइए सुने तो उन्हीं की कुछ चुनिंदा फिल्मों से ये की.

0: तो श्रोताओं, अब घड़ी की सुइया कह रही है कि हमें अपने श्रोताओं को कहना होगा अलविदा। तो शगुन और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
0: नमस्कार।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा

0: फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। घर घर तिरंगा,
1: हर घर तिरंगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
2: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
3: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में

गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की

0: 91 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार तीन दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीटीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुस जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
5: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन

0: शासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to join Har Ghar Tiranga movement and hoist the tricolour at homes. India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashvani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolor at homes.
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है. हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुंग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का एआदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए मसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं क्योंकि इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने अवाम से अपील की थी कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराएं।
1: पिछले कुछ वर्षों में हर

0: हर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
1: पेश है एक रिपोर्ट।
2: सिखाफत की वजारत ने कहा है कि इस साल हर घर तिरंगा में मुहिम तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा प्रोग्रामों और मातरम के गीत के जरिए मुल्क भर में सड़कों और घरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करेगी। वजारत ने कहा है कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह शहरियों को मौका भी फराहम करेगी ताकि वो यौम आज़ादी के त्यौहार के हिस्से के तौर पर कौमी नगमे का गाकर जश्न मना सकें। इस साल की तकरीबात की एक अहम खसूसियत सूर्य पथ तिरंगा होगी, जिसे वजारत ने अपनी नौइयत का एक पहला कदम बताया है, जिसका मकसद दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को तिरंगा की एक आलमी तकरीब में यकजा किया जा सके। वजारत ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फीज अपलोड करें। हर घर तिरंगा मुहिम यौम आज़ादी की तकरीबात से वाबस्ता मुल्कगीर अवामी शिरकत की एक पहल के तौर पर उभरी है, जिससे शहरियों को कौमी परचम की नुमाइश करने और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का हौसला मिलेगा। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बीड, थाने और बुलढाणा समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और शहरियों ने पूरे जोश जज्बे के साथ शिरकत की। थाने में एक साइकिल रैली के जरिए माहौलियात के तहफ्फुज और सेहतमंद जिंदगी को फरोग दिया गया। खेमगांव में टीवी के बारे में और रैलियों और नुक्कड़ नाटक के जरिए मनशियात से पाक भारत के तई बेदारी पैदा की गई। इस मुहिम का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देना और यौम आज़ादी की तकरीबात में आवाम की शिरकत की हौसला अफजाई करना है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि वजीर आला सम्राट चौधरी इस मुहिम की क्यादत करेंगे।
4: हर घर तिरंगा मार्च आज सुबह 10 बजे से जेपी गोलंबार से शुरू होगी, जो करगिल चौक तक जाएगी। इसका एहतमाम फन, सखाफत और नौजवानों के महकमे की तरफ से किया गया है। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान इस मुहिम के तहत जीविका के जरिए रियासत में हर ब्लॉक को 4000 तिरंगा परचम फराहम किए गए हैं। मुहिम के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम के गीत, खून के अतिया के कैंप्स, तिरंगा नुमाइशों, तिरंगा के साथ सेल्फी और तिरंगा रंगोली समेत मुख्तलिफ गर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: मगरबी बंगाल में हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज कोलकाता में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला शुभिंदु अधिकारी जुलूस की क्यादत करेंगे, जो घोस्तों पलसरानी से दोपहर में शुरू होगी और विक्टोरिया मेमोरियल पर खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के वजरा, इंतजामिया के सीनियर अहलकार और शहरियों की एक बड़ी तादाद की इसमें शिरकत मुतवक्के है। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की है तकरीबन 50,000 लोग यात्रा में शिरकत करेंगे। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने जुलूस के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मणिपुर ने भी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के इनेकाद में शिरकत की। यह प्रोग्राम 17 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगा। इस मुहिम का मकसद भारत के इत्तेहाद का जश्न मनाना और तिरंगा के तई गहरे एहतराम का मुजाहरा करना है। इस मुहिम के दौरान शहरी अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। मणिपुर के वजीर आला यमनाम खेमचंद मगरबी इम्फाल के संगजिमी में अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में शिरकत करेंगे। उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो सबसे पहले खुद को भारतीय, उसके बाद मणिपुरी समझें। भारत गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की पैदावार 300 गीगावाट की सलाहियत से आगे बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस उसूलियाबी से 2030 के 500 गीगावाट सलाहियत के निशाने में से 60% से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है। नई और बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की वजारत ने कहा कि मुल्क की बिजली पैदावार की कुल सलाहियत में गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली सलाहियत का हिस्सा 54% से ज्यादा हो चुका है। वजारत ने यह भी कहा कि साफ सुथरी तवानाई की पैदावार में बहुत से शोबों का तआवुन रहा है। गैर रिवायती ईंधन की मजमू सलाहियत में शमसी तवानाई इस मैदान की तरक्की में पेश पेश रही। وزارت کے مطابق 2025-26 کے دوران ملک میں غیر روایتی ایندھن کی 55.29 گیگا واٹ کی صلاحیت کا اضافہ ہوا ہے. بار بار استعمال ہونے والی توانائی کی صلاحیت میں بھی تیز رفتار ترقی کا پتہ چلتا ہے. 2014-15 میں یہ صلاحیت 191 ارب یونٹ تھی، جبکہ

0: 2025-26 में ये 477 अरब यूनिट से ज्यादा हो गई। न्यूज डेस्क से आनंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम पे।
1: लोकसभा में आज 4 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनलिज्म में इस्लाहात का 2026 का बिल, कानों और मादनियात के फरोग और मुतालिका जाब्तों में तरमीम का 2026 का बिल, केरला का नाम तब्दील किए जाने से मुतालिक 2026 का बिल और इमदाद बाहमी के फरोग में कौमी कॉरपोरेशन में 2026 का बिल शामिल है। राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकरों के रिकॉर्ड के शवाहिद से मुतालिक 2026 का बिल पेश करेंगे। इसमें बैंकरों के रिकॉर्ड को कानूनी शवाहिद के तौर पर पेश करने और इसे मौजूदा दौर की डिजिटल बैंकिंग के कामकाज के मुताबिक बनाने के लिए कहा गया है। ऐवान में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम का 2026 का बिल भी पेश किया जाएगा। इस बिल में रकम की अदायगी और तस्फीये के निजाम से मुतालिक 2007 के कानून, इनकम टैक्स 2025 के कानून और मालियात से मुतालिक 2026 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। इन दोनों बिलों को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से पेश किया जा रहा है। JPSC JSSC इम्तिहानात में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत के बावजूद तातुल अब भी जारी है। तलबा ने हुकूमत की तजावीज को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया है और आज विधानसभा के घेराव के अपने प्रोग्राम पर बजिद हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: झारखंड में एहतजाज का आज 17वां दिन है। तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान बातचीत में मुबैना बदउनवानियों की तहकीकात, इम्तहानात की मनसूखी, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई और इम्तहान के निजाम में इसलाह पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत ने 14वीं JPSC प्रीलिमिनरी इम्तहान मनसूख करने से इत्तेफाक किया है और तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है। CID के ADG मनोज कौशिक ने इस सिलसिले में एक शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 19 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और डिजिटल शवाहिद भी काफ़ी तादाद में इकट्ठा किए जा चुके हैं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: तलबा के जारी मुजाहरों के पेश नज़र झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के 3 मुलाजमीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। JPSC के 3 मेंबरों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसा ने कल गवर्नर संतोष कुमार गंगवार को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क EOD 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जुनूबी बहरी कमान में मुनाकिद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमा आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोजा इस मशक के दौरान माहिरीन के दरमियान तजुर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मशकें की जाएंगी। वजारती दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से ये मुश्तरका मशकें करती आ रही हैं। आइंदा होने वाली मशक इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज से पहले दिल्ली के कुछ इलाकों में मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है क्योंकि बहुत से अजला सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल एक बड़ी तश्वीश का मसला बनी हुई है। ताज के इलाकों में शदीद बारिश के बाद दरियाओं के पानी में फिर इजाफा हो रहा है। बालासोर में जालाकार दरिया में पानी के इजाफे से बस्ता में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। केंद्रपाड़ा के बहुत से इलाके भी मुतासिर हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी शदीद बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। रूस ने बहर हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है, जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हिसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम मारात खुसलिन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए फास्फोरस समेत 2 किलीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसुनील ने बताया कि तुर्कमानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है, जिसमें आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजमरात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। भारत ने बोलीविया को जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने ये 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप हिफ़्ज़ाने सेहत के तई सलाहियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की हैं। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इजहार यकजहती और मुश्तरका तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को तआवुन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेट लिफ्टर महाराजन अरमुगा पांडियन ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेट लिफ्टर ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने मजमूरी तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाति रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टेक ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की जंग आज़ादी के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत छोड़ो तहरीक में शामिल लोगों की कुर्बानियों और उनका अज़्म आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा और हर भारतीय शहरी में आज़ादी के तई नई तवानाई पैदा करेगा। रोजनामा प्रताप ने अगस्त क्रांति के तनाजुर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नायब सदर जमहूरियत सीपी राधा कृष्णन के इस बयान को सफाए अव्वल पर शाया किया है कि भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्ला अफवाज ने बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया और भारत अपने शहरियों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए अहदबंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तफिदीन को 1 करोड़ से ज्यादा मकानात उनके सुपुर्द किए गए, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समंदरी रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और ठीक 56 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है म्यूजिकल दिल्ली, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं प्यारी सी हवा के साथ, चाय की खुशबू के साथ और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। तो सोमवार की शानदार शुरुआत तो हो ही चुकी है, आप ऑफिस के लिए निकल चुके हैं या बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं या घर में हैं तो काम में लगे हैं, सब करते करते भी चेहरे पर ताजगी है, मुस्कुराहट है और ये पता है कि नया हफ्ता शुरू हो रहा है, तो नई बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते में होने वाली हैं। बस यही जज्बा बनाए रखना ज़रूरी है ताकि आप पूरे हफ्ते ऐसे ही एनर्जेटिक रहें। फिलहाल एक प्यारा सा गाना किशोरदा की आवाज़ में, मैं हूँ पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

8:51 और ठीक 36 सेकंड हो चले हैं। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम बात कर रहे थे सोमवार की सुबह की। तो भाई सोमवार की सुबह का मतलब सड़कों पर थोड़ी ज्यादा भाग दौड़। आपने नोटिस किया होगा कि ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है ऐसे

में कि जल्दी पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित पहुंचना। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगा कर रखिए, अगर आप दोपहिया वाहन पर हैं तो हेलमेट पहन कर रखिए, और मोबाइल पर बात करना या मैसेज करना, ये हमारा बहुत स्ट्रांग वाला मोह होता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन इस मोह को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही ज़िंदगी भर का पछतावा बन सकती है। तो सड़क पर धैर्य एक बहुत अच्छी आदत है, और धैर्य बढ़ाना हो तो सड़क पर धैर्य रखने से ज़्यादा और कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड हो नहीं सकता। इसलिए हॉर्न कम बजाइए, नियमों का पालन कीजिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का मौका दीजिए। बस ये छोटे छोटे काम कर लीजिए और बाकी तो आपका मूड अच्छा रखने के लिए हम अच्छे अच्छे गाने लेकर आते ही हैं।

0: प्यारा प्यारा गाना। और इस गाने के साथ मैं सोच रही थी कि हमारी सेहत भी ना एक अच्छे गाने की तरह होती है, जब सुर सही हो तो मज़ा आता है और जब थोड़े से भी बिगड़ जाए ना तो सारा का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। और सुबह की शुरुआत भी ऐसी है। अगर आप ये सुर ठीक रखना चाहते हैं अपनी सेहत का तो शुरुआत कीजिए पानी पीकर, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके, पौष्टिक नाश्ता करके, ताकि आपका दिन भर का जो सुर है वो अच्छा रहे। और हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत चलना फिरना, पानी पीना, कुछ देर अपने लिए निकालना, आँखों को थोड़ा सा रिलैक्स करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन आपकी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे गाने सुनते सुनते जब मैं मज़ा ले रही थी इस गाने का तो साथ ही साथ इंदु भी स्टूडियो में आ गई, और आने के बाद में उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद आया। मैंने उनको कहा कि ये उन्हीं की पसंद के गाने हैं, तो बिल्कुल मैं उन्हीं की पसंद के गाने प्ले कर रही थी। और इंदु आपके लिए बहुत कुछ आज लेकर आई हैं म्यूजिकल दिल लगी में। तो पूनम तो जाने वाली आपको पता है ना 9 बजे, लेकिन इंदु साथ रहेंगे। हाँ इंदु, क्या क्या करोगी आज बताओ।
1: हम बस कभी कभी मैं जब आती हूँ ना स्टूडियो में तो ख्याल आता है कि मैं तितली हूँ, पंछी हूँ, गाना हूँ, संगीत हूँ और मजेदार बातें हूँ। और कई बार ये भी फील होता है कि हम अगर हम खुश रहेंगे ना तभी अच्छा प्रोग्राम हो पाएगा। और गाने तो हैं ही हमारे साथ।
0: बिल्कुल, और ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इंदु का शो तो आप बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते, इतना प्यारा शो करती है। वैसे तो सभी आज करते हैं
1: तारीफ, मैं तो मतलब बस मजा आ गया सच में।
0: देखो इंदु, तुमने 500 रुपए दिए थे, उतने में इतनी हो सकती थी। सो ये तो जोक्स की बात है, लेकिन वाकई हम जितने भी आरजेस हैं ना अपने शोज में पूरी जान डालने की कोशिश करते हैं ताकि आपका दिन बेहतरीन बना रहे। और साथ साथ जो भी हमारे अधिकारी हैं ना वो भी हमें ऐसे ही गाइड करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे शोज लेकर आएं। फिलहाल वक्त ये बता रहा है कि शोज के साथ साथ समाचार भी सुनने चाहिए, तो पूनम को दीजिए इजाजत। लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आप रहेंगे एफएम गोल्ड के साथ ही, सुनेंगे समाचार और उसके बाद इंदु होंगी आपके साथ म्यूजिकल दिल्ली का सफर आगे बढ़ाने के लिए। पूनम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। घर घर तिरंगा,
1: हर घर तिरंगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में

0: भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे। उधर पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर ने भी देश के अन्य हिस्सों के साथ मिलकर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया है। इस दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता से में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विश्व शेर दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अर्ज्ड सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट एंथुजियास्टिकली इन द हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड रिन्यू देयर कलेक्टिव रिजॉल्व टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिल्डिंग अ विकसित भारत। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर मोदी सेड, आवर ट्राइकलर इज आवर प्राइड एंड अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑलवेज गिव आवर बेस्ट फॉर द नेशन। The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Mann Ki Baat program on Akashvani last month, Mr. Modi urged people to hoist tricolor at homes.
2: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
1: The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervor. Tiranga rallies were organized in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana. In Bihar, a grand Tiranga Yatra will be organized in Patna today under the Har Ghar Tiranga campaign. Several state ministers, legislators, officials and a large number of people will participate in the Tiranga Yatra. Manipur also joined the rest of the country in organizing the Har Ghar Tiranga campaign. State Chief Minister Yumnam Khemchand participating in the campaign from his residence at Singh Dame under Imphal West District urged the people

गुड मॉर्निंग है जी, और वही दो प्यारे बोल लेकर के हाजिर हो गए हैं हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। भाई सुना हमने है कि नाम बड़ा है या दाम, किसके पीछे कौन दौड़ लगाएगा, दाम के पीछे नाम दौड़ा चला आएगा या फिर नाम के पीछे दाम दौड़ेगा। वेल, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि नाम बड़ी चीज़ होती है।

दिल तो हमारा भी करता है कि काश नाम कहीं ऐसी जगह लिखा हो कि बस कोई पढ़े और बहुत कुछ याद आ जाए। आज़ादी के गुमनाम नायक सीरीज में आज हम बात करेंगे कनकलता बरुआ की, जिन्हें वीरांगना और शहीद भी कहा जाता है। एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी जिन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश राज की भारतीय शाही पुलिस द्वारा गोली मार दी गई थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो भारत के लिए शहीद हो गई और उसी वीर बाला को हम नमन करते हैं। देश की एकता, शांति और भाईचारे का हम सब संदेश देते हैं और कुछ है जो जोश और जुनून से भर जाता है और अपने आप, मतलब कई बार ना इन लोगों के सामने हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। नमन है ऐसे गुमनाम नायकों को।

ये है म्यूजिकल दिल लगी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। हर हाँ एक दरवाजा खोलता है और हर ना एक भ्रम को तोड़ता है। जिंदगी का सफर इसी बैलेंस पे टिका हुआ है। कब रुकना है, कब चलना है, यही तो हम सब का एक इम्तिहान।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत।

जिंद मेरिए, मेरी भी एक बात सुनिए। वो ये कि बड़े बड़े विद्वान ये फरमा गए हैं कि जहाँ संसार एक रंगमंच है और हमारा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग, तो फिर वहाँ हार जीत का क्या रोना। तो क्यों नहीं हम सिलेक्ट करते हैं कि हम पेड़ लगा सकते हैं या फिर पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, किसी के सपनों को हम रास्ता दे सकते हैं या फिर उनके रास्ते में हम नहीं आएँ, ये ज़्यादा चूज करना होगा, या किसी को प्यार करें नहीं तो फिर नफरत से दूर रहें। समझ नहीं आता कि सब कुछ इतना साफ साफ है तो फिर क्यों हम काटना, तोड़ना, फोड़ना, नफरत करना, ये सारी चीज़ें क्यों चूज़ करते हैं। क्यों नहीं चूज़ करते हम मौसम को, प्यार को, अपने आप को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो हमें अच्छा फील कराती हैं, तो चलो आओ उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं।

और एक खूबसूरत कारवां बन रहा है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की वजह से पता है आपको फिर से किताबें लौट रही हैं। ऑनलाइन ट्रेंड लोगों को किताबों से जोड़ रहे हैं, है ना, ये कितनी अच्छी बात। सोशल मीडिया को हम चाहे कुछ भी कहें लेकिन कुछ कुछ तो अच्छा है। किताबों के कवर को आजकल कवर वाले बैग में देखा जा रहा है। किताबों का दौर कभी वैसे ख़त्म नहीं होता, पढ़ना अब बन गया है स्टाइल स्टेटमेंट। हम ये जानना चाहते हैं कि किताबों की कहानी कैसी है, लेकिन पढ़कर कैसा महसूस होता है वो मिस करते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग किताबों से जुड़ रहे हैं। किताबें अब हमारी ऑनलाइन दोस्त बन रही हैं, किताब अब हमारी बातचीत का हिस्सा है, तो ये एक गुड न्यूज़ है। और अगर आप इस गुड न्यूज़ के हिस्से में नहीं है तो फिर आइए शामिल हो जाइए हमारे साथ। ये है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। स्वागत है आपका।

0: वैसे ये अच्छी बात है कि हम अगर कुछ अच्छा किसी को देख के सीखें तो क्या बुराई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में आप जानते हैं? ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई और ये एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के युवाओं को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाला कौशल प्रशिक्षण देकर के उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें रोजगार दिलाना है। अगर आप इसके बारे में और नहीं जानते तो फिर पढ़िए और जानिए।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स।

एक और हसीन चीज है जिसे हम बार बार देखा करते हैं और वो है हमारे स्टूडियो की घड़ी। 9:51 हो चुके हैं 24 सेकंड्स के साथ और हम कहना चाहते हैं आपसे एक बात कि जो हमसे दूर हैं वो भी हमें प्यार करते हैं और जो पास है बस उनसे थोड़ी सी आस है, इतना ही फर्क है। अपनी हेल्थ के साथ साथ डिजिटल हेल्थ चेकअप करते रहें। पासवर्ड चेक, जीमेल चेक, कौन से ऐप हैं जो महीने भर से आपने यूज़ नहीं किए, आपकी लोकेशन को कौन से ऐप ट्रैक कर रहे हैं ये चेक कीजिए। बाकी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े रहिए।

और हम उसी प्यार के साथ आपको इनवाइट करना चाहते हैं ORMAS दिल्ली पॉपअप स्टोर 2026 के उद्घाटन का निमंत्रण है आपके पास। दिल्ली पॉपअप स्टोर 2026 का भव्य उद्घाटन होगा कल यानी कि 11 अगस्त को शाम 4 बजे DLF एवेन्यू साकेत मॉल A4। और इसके आयोजक हैं पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ओडिशा सरकार के अंतर्गत ORMAS, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा ओडिशा के ग्रामीण कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उत्पादकों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा और दूसरे उत्पादों को दिल्ली में प्रदर्शित और बढ़ावा देना। इससे ग्रामीण लोगों को बेहतर बाजार और रोजगार के अवसर मिलेंगे। आप आइएगा जरूर, बिल्कुल मत भूलिएगा शाम 4 बजे कल यानी कि 11 अगस्त को। म्यूजिकल दिल्ली है ये आपके साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। छात्रों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने कार्यक्रम पर अडिग हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूसी उप प्रधानमंत्री मरार खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मोज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनुलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। समिति के प्रवक्ता हसन कशकवी के हवाले से ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस योजना पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति में चर्चा हुई और बिना किसी विरोध के इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को 13 जुलाई को संसद में औपचारिक रूप

0: पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरू मोंगपंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Mann Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist tricolour at homes.
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
3: The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervor. Tiranga rallies were organized in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana. In Bihar, a grand Tiranga Yatra will be organized in Patna today under the Har Ghar Tiranga campaign. Several state ministers, legislators, officials and a large number of people will participate in the Tiranga Yatra. Manipur also joined the rest of the country in organizing the Har Ghar Tiranga campaign. State Chief Minister Yumnam Khemchand participating in the campaign from his residence at Singh Jamai under Imphal West District urged the people to recognize themselves as Indians first, then a Manipuri. Meanwhile, Delhi Metro Rail Corporation has unveiled a special metro train wrapped with the Har Ghar Tiranga theme on the yellow line to celebrate the spirit of independence. The Indian Navy US Navy Explosive Ordnance Disposal Exercise 2026 will be conducted at Southern Naval Command, Kochi, from today till 14th of this month. The Defence Ministry said the bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist diving and EOD teams of the two navies. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The milestone of crossing 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity

0: Husnulin said alternative routes could help address risks associated with the two strategic waterways, including the Strait of Hormuz and the Bosphorus Strait. At least three people have been killed and 10 others injured in multiple shootings in Chicago over the weekend. According to media reports, as many as 8 shootings took place on Sunday. 3 people were killed and 9 others injured, including 2 who are in critical condition. A 35-year-old man was also shot in the head in the early hours of Saturday. He remains in critical condition. Statistics show that 1,878 victims of gun violence were reported in Chicago in the last 12 months, with 356 people killed. India settled for the silver medal in the team event at the FISU World University Squash Championships 2026 after losing to Hong Kong, China in the final in Mumbai yesterday. The Indian quartet of Om Saimwal, Shamina Riaz, Suraj Kumar Chand and Nirupama Dubey lost the final to Hong Kong, China on game difference after the tie ended 2-2. Despite missing out on gold, a silver medal is India's best ever finish in the team event at the FISU World University Squash Championships. Indian weightlifter Maharajan Aruga Pandian won the silver medal in the men's 65-kilogram category at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan. Maharajan produced a personal best total of 285 kg, lifting 128 kg in the snatch and 157 kg in the clean and jerk. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत ने बोलिविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढ़ाने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और आवश्यक दवाएं भेजी। भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधी ओईडी अभ्यास आज कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। चीन के पूर्वी तट पर तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत ने बोलिविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढ़ाने के लिए जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की 8 मीट्रिक टन खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधी ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। 5 दिन के इस अभ्यास में विषय विशेषज्ञ विनिमय, क्रॉस प्रशिक्षण, उपकरणों के प्रदर्शन तथा स्थिति आधारित व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना 2005 के बाद संयुक्त रूप से साल्वेज और ईओडी अभ्यास आयोजित कर रही हैं। इन दोनों नौसेनाओं का ये विशिष्ट द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आज से शुरू होने वाली 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत द्वारा मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। यात्रा के दौरान वे मॉरिशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे और समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण और सैन्य सहयोग जैसे पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करेंगे। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी नौसेना बलों ने ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी लागू करने के प्रयासों के अंतर्गत 55 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदल दिया है।
2: सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 20 से अधिक अमरीकी युद्धपोत सैन्य अभियानों

0: सहायता के लिए पश्चिम एशिया में तैनात हैं। इनमें नाकाबंदी को लागू करना भी शामिल है। सेंटकॉम के अनुसार 9 अगस्त तक अमरीकी बलों ने 55 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदल दिया, 2 को निष्क्रिय कर दिया और 2 अन्य जहाजों पर चढ़कर अनुपालन सुनिश्चित किया। ये ताज़ा जानकारी पहले की इसी तरह की समुद्री कार्रवाई की रिपोर्टों के बाद आई है। सेंटकॉम ने बताया कि मानवीय सहायता ले जा रहे 30 से अधिक जहाजों को नाकेबंदी से गुजरने की अनुमति दी गई है। समाचार कक्ष से विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
1: ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंजूरी दी है। समिति के प्रवक्ता हसन खशकवी ने हवाले से ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस योजना पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति में चर्चा हुई और इसे मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को 13 जुलाई को संसद में औपचारिक रूप से पेश किया गया। इस बीच ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए नए मार्ग के निर्धारण को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के पूर्व प्रमुख मोहसिन रेजाई को देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उन्होंने मोहम्मद बाकिर जोलगद्र की जगह ली है। ये पद पहले अली लारिजानी के पास था, जिनकी मार्च में अमरीका इसराइल के हमलों में हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद मोहम्मद बाकिर जोलगद्र इस पद पर थे। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित 2 रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनुलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। ये प्रस्ताव पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आया है, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर होने जाने वाले जहाजरानी यातायात को बाधित कर दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन में शक्तिशाली चक्रवात डॉल्फिन देश के पूर्वी तट पर पहुंच गया है। इसके चलते भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: चीन के मौसम विभाग के अनुसार तूफान ने झेजियांग प्रांत के युहुआ के पास दस्तक दी, जिसके केंद्र के पास हवा की अधिकतम गति 151 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कम से कम 30,300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि शंघाई में लगभग 1,500 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चीन पहुंचने से पहले डॉल्फिन तूफान जापान के दक्षिणी ओकिनावा प्रांत से गुजरा, जहां 6 लोग घायल हो गए और 50,000 से अधिक इमारतों की बिजली गुल हो गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में बदलाव, जिनमें अधिक शक्तिशाली तूफान भी शामिल हैं, ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पाकिस्तान में दक्षिणी वजीरिस्तान के जार मिलान इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने 2 बुजुर्ग आदिवासी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित गाड़ी से जा रहे थे, तभी डारोजांडा में अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चलाई। दोनों आदिवासी नेताओं को कई गोलियां लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर मौके से भागने में कामयाब रहे। शिकागो में हुई कई गोलीबारी की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रविवार को 8 गोलीबारी की घटनाएं हुई, इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। वियतनाम के हुआंग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। एफ IBA अंडर 18 एशिया बास्केटबॉल कप का आयोजन अहमदाबाद में 13 से 23 अगस्त तक किया जाएगा। भारतीय टीम का सामना ग्रुप चरण में कोरिया, जापान और कजाकिस्तान से होगा। भारत 14 अगस्त को जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। टूर्नामेंट का फाइनल 23 अगस्त को अहमदाबाद में खेला जाएगा। मुंबई की सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 के टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चाइना के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अमेरिका के यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान चैंपियनशिप में हाई जंप और लॉन्ग जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मौजूदा एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप बसंत कुमार मेघवाल ने 2.21 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया। इन दो पदकों के साथ चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बोलिविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढ़ाने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और आवश्यक दवाएं भेजी। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधी अभ्यास आज कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुस जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। चीन के पूर्वी तट पर तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। इंडिया डिस्पैचेस 8 मेट्रिक टन्स ऑफ लाइफ सेविंग एंड एसेंशियल मेडिसिन्स टू बोलिविया टू सपोर्ट इट्स पब्लिक हेल्थ केयर कैपेसिटी। Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. Typhoon Dolphin brings heavy rain and strong winds in China's east coast, raises warning of floods and landslides. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. India has dispatched 8 metric tons of consignment of life-saving and essential medicines to Bolivia in support of its public health care capacity. External Affairs Ministry said in a social media post that India always stands ready for advancing cooperation through solidarity and shared progress. The Indian Navy US Navy Explosive Ordnance Disposal EOD Exercise 2026 will be conducted at Southern Naval Command Kochi from today till the 14th of this month. The Defence Ministry said the bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist diving and EOD teams of the two navies. The 5-day exercise will comprise subject matter expert exchanges, cross training, equipment demonstrations, and scenario based practical exercises. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The landmark achievement was reached on the 31st of last month. It represents that India has achieved more than 60% of its 500 gigawatt target set for 2030, a report.
4: The Ministry of New and Renewable Energy said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. It added that the growth in clean energy generation has been driven by strong contribution across sectors. In the total non-fossil fuel capacity of the country, solar energy has remained a key growth engine with around 165 gigawatts of installed capacity at present. With Anand Samar Singh for Akashwani News, Delhi.
3: Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, is on a four-day official visit to Mauritius starting today. The Ministry of Defence informed that the visit is part of India's continued engagement to strengthen bilateral maritime cooperation and deepen defence ties with Mauritius. During the visit, he will interact with senior leadership of the government of Mauritius and hold discussions on matters of mutual interest, such as maritime security, defence cooperation, capacity building and military collaboration. More than 15 delegates from the BRICS Culture Working Group and the Culture Ministers Group visited the Bhimbetka Rock Shelters in Raisen district of Madhya Pradesh yesterday. Representatives from South Africa, Indonesia, Russia, China and other countries joined the visit. The delegates saw the thousands-year-old rock paintings and learned about prehistoric human life. During the guided tour, they visited different rock shelters. The paintings show scenes of hunting, group activities, and wildlife. These paintings give an idea of the close relationship between humans and nature in ancient times. Bhimbetka has more than 750 rock shelters. Ancient paintings have been found in more than 100 of them. The paintings also show the art and lifestyle of different periods. Russia has proposed exploring a railway route to the Indian Ocean and India aimed at reducing dependence on strategically important maritime routes. Russian Deputy Prime Minister Marat Khusnulin said alternative routes could help address risks associated with the two strategic waterways, Strait of Hormuz and the Bosphorus Strait. According to Russia's state news agency, Mr. Khusnulin said rail routes passing through Turkmenistan, Iran and Afghanistan could be explored to provide access to India. The proposal comes amid the ongoing conflict in West Asia, which has disrupted shipping through the Strait of Hormuz. This is Akashvani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. Typhoon Dolphin, the most powerful tropical cyclone to hit China this year, has made landfall on the country's eastern coast, bringing heavy rain and strong winds and raising warnings of floods and landslides. A report.
5: According to China's meteorological authorities, the storm made landfall near Yuhuan in Zhejiang province, with maximum sustained winds of 151 kilometers per hour near its center. At least 30,300 people have been evacuated, while Shanghai has cancelled around 1,500 flights. Before reaching China, Typhoon Dolphin swept through Japan's southern Okinawa prefecture, where six people were injured and more than 50,000 buildings lost power. Heavy rain is forecast today across several areas, including Zhejiang, Shanghai, northern Fujian, northeastern Jiangxi, Anhui, and Jiangsu. Scientists say global warming is making extreme weather more likely, including more powerful typhoons. Ashish Abraham for World News.
3: Iran's parliament has approved the general outlines of a strategic action plan aimed at ensuring the security and sustainable progress of the Strait of Hormuz and the Gulf. Iran's local media, quoting committee spokesperson Hassan Kashkawi, reported that the plan was discussed by the parliament's National Security and Foreign Policy Committee and approved without opposition. The legislation was formally introduced in the parliament on 13th of July. Meanwhile, Iran and Oman have been negotiating for several weeks over the designation of a new route in the Strait of Hormuz for safe maritime traffic. Earlier, Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi said there are currently no ongoing negotiations between Iran and the United States. Iran's Supreme Leader Mujtaba Khamenei has appointed former Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Chief Mohsen Rezai as his representative to the country's Supreme National Security Council, replacing Mohammad Bakir Zolgadar. The position was formerly held by Ali Larijani, who was assassinated in US-Israeli strikes in March, and then Mohammad Bakir Zulakadr. Rezai is a former IRGC chief and a member of the Iran's Expediency Discernment Council, which resolves differences between Parliament and the Guardian Council, a separate body that vets candidates for office. Rezai was a military commander during the Iran-Iraq War of the 1980s, referred to in Iran as the Sacred Defense. The U.S. Central Command, CENTCOM, has said American naval forces have redirected 55 commercial vessels as part of efforts to enforce the U.S. blockade against Iran. In a social media post, CENTCOM said more than 20 U.S. warships are deployed in the Middle East to support military missions, including enforcement of the blockade. According to CENTCOM, as of 9th of August, U.S. forces have redirected 55 commercial vessels, disabled two and boarded two others to ensure compliance. The latest update follows earlier reports of similar maritime operations. CENTCOM also said more than 30 vessels carrying humanitarian aid have been allowed to pass through the blockade. In Chicago, at least three people have been killed and 10 others injured in multiple shootings over the weekend. According to media reports, as many as eight shootings took place yesterday. Of those

10:30 बज चुके हैं, दिल का मेल बॉक्स लेकर के हाजिर हो गए हैं हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो आपके नगमे, आपके नाम हमारे साथ। हार्दिक नमस्कार करते हुए हमें एक लिसनर कहते हैं कि एक नगमा सुनवा दीजिए। एक नहीं जनाब, हम तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक नगीने लाते हैं आपके लिए। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, और उसके बाद हैं ये हमारे पास ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से पूरा का पूरा अब्बासी परिवार। आप सबका स्वागत है दिल का मेल बॉक्स में।

दिल का मेल बॉक्स में इससे अच्छी जगह ये कहने के लिए नहीं होगी कि आप कौन हैं। ये है नाम जगदीश कुमार, राहुल, रितिका नांगलोई कहते हैं धन्यवाद। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान अनुखान हैं और खेड़ा वडिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा कहते हैं कि भाई देखिए जो गीत है उसमें हम शामिल हैं। गाँव जा खोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, प्रोग्राम के सभी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आहा, क्या बात है, यही तो हम सुनना चाहते हैं। स्क्रीन की दुनिया से जरा ऊबने लगे हैं हम, सुना है कि फिर से किताबों से दिल लगाने लगे हैं हम। थैंक यू वेरी मच सत्य प्रकाश सनोठिया रोहिणी से, थैंक यू। ये बताता है कि आप कितने ध्यान से हमें सुनते हैं।

कितनी अच्छी लाइन है ना, चलो जी जो हुआ वो जाने दो, बहुत कुछ हुआ। ये जो जाने दो है ना, ये मैजिकल वर्ड है, पता है, अगर हम ये सीख लें तो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें छुटकारा मिल जाए। मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार और नजमा बेगम नाज हैं, भाभी सरिता गौतम हैं, शाहजी नगर दिंगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे हैं, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे हैं, और मधु किरण दिल्ली से पूछती हैं कि आपने कहा कि नाम और काम, काम तो आप अच्छे गीत करके सुनवा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लेकिन अपना नाम भी तो बताइए। तो मधु किरण जी थोड़ा छोटा सा नाम है इसलिए मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरा नाम है INDU इंदु। और आगे हमारे पास जो नाम है दिल का मेल बॉक्स में, ये है कोपरगांव से सुरेश वर्षा, शेवगांव से श्रीराम उषा गोंधली, और मोताला बाजार से बबलू हैं, शेख वजीर हैं, सोहेल सैयद तहमूर, शामिर खान अजलान हैं, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, और मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तनी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, कोई छूट तो नहीं गया ना ये? यस, ये है आपका दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पे।

और इसके साथ साथ कुछ नाम और हैं जो मैंने सोचा कि मैं ले लूं। ये है निर्मला विशाल मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मोहरकर। और इसके बाद और भी कई सारे गाने, कई सारे नाम, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिल का मेल बॉक्स में।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

और मैं आ गई दिल का मेल बॉक्स लेकर के, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक और रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस तुम आ गए हो, नूर आ गया, ये गाना उनकी पसंद का चल गया। सलीम अख्तर का जन्मदिन है तो कोई गीत चला दीजिए, कोई नहीं, सारे गीत हैप्पी बर्थडे भाई। दिल्ली रेडियो लिसनर्स क्लब से नवाब अहमद भारती हैं, बबलू कश्यप हैं, महेश अग्रवाल हैं, अशरफ अली हैं, सिराज मिथुन, संजय ढींगिया हैं, और उसके अलावा फरमाइश की है जय जैनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश महेश प्रज्ञेश ने, डबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर, और दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमान हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा और बेबी चाहत। आपकी चाहत ये रही।

0: जमालो हे जमालो
1: दिल का मेल बॉक्स में ये है सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत भरत, कमल सानी, पिंगा वाला चौक, गुराया जालंधर से। तो दिल का मेल बॉक्स में वैसे मुझे पता है बहुत सारे और लोग हैं जो थे इस वक्त, लेकिन हर गाना हम सबके दिल के करीब है और हर नाम हमारे पास है।

इस चाहत को यूं ही बनाए रखिएगा, दिल का मेल बॉक्स फिर से खुलेगा, फिर से मिलेंगे हम आपसे कल आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। अभी बजने वाले हैं 11 जो है समाचारों का, और उसके बाद तस्वीर लेके हाजिर हो जाएंगे एक बार फिर से हम। तो इसी के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि मेल कीजिए, अपनी चॉइस का गाना हमें बताते रहिए, कहाँ से और क्यों गाना पसंद है ये भी बताइए तो अच्छा लगेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। उधर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पेश करेंगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जैम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जैम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारत और अमेरिका की नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हो रहा है। ये अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच परिचालन क्षमता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आज से 4 दिन की मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा दोनों पक्षों के बीच समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस दौरान वे मॉरिशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोह का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की। इधर राजधानी दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। उधर नागालैंड में कोहिमा में भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत दो पहिया वाहन रैली हर घर तिरंगा का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi emphasized that prestige is not gained merely by cutting ribbons, but by playing with the spirit of a young student or an aspiring athlete. He encouraged the athletes to enhance the prestige of Khelo India. Talking to weightlifter Saikom Mirabai Chanu, the Prime Minister said that her victory serves as a tremendous inspiration for future generations.
2: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में. अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है. पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है.
1: यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा निखिल खड़से वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन. इंडिया फिनिश्ड एट द फोर्थ स्पॉट ऑन द मेडल टेबल ड्यूरिंग द गेम्स हेल्ड बिटवीन 23rd of July एंड द 2nd of दिस मंथ एट ग्लासगो इन स्कॉटलैंड. इंडियन एथलीट्स won 39 मेडल्स इंक्लूडिंग 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज अक्रॉस वेरियस स्पोर्ट्स. The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervor. Tiranga rallies were organized in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana. In Bihar, a grand Tiranga Yatra will be organized in Patna today under the Har Ghar Tiranga campaign. Several state ministers, legislators, officials and a large number of people will participate in the Tiranga Yatra. Manipur also joined the rest of the country in organizing the Har Ghar Tiranga campaign. State Chief Minister Yuman Khemchand, participating in the campaign from his residence at Singha Jamai under Imphal West District, urged the people to recognize themselves as Indians first and then a Manipuri. Meanwhile, Delhi Metro Rail Corporation has unveiled a special metro train wrapped with the Har Ghar Tiranga theme on the yellow line to celebrate the spirit of independence. In Nagaland, the Bharatiya Janata Party organized a two-wheeler rally Har Ghar Tiranga in Kohima today as part of the nationwide campaign to promote the spirit of patriotism and national unity. The rally was flagged off by Nagaland Minister for Higher Education and Tourism, Temjen Imna Along, from Kohima. Earlier addressing the gathering, the minister urged the citizens, particularly the youth, to carry the national flag with pride and respect as the state joins the nationwide commemoration of the 80th Independence Day.

और ये इशारा है तस्वीर का, और आज हम आपको लेके जाएंगे शिप्रा के पावन तट पे बसी आस्था की अनुपम पहचान। हर कण में शिव का वास, जहां वही है मेरी उज्जैन महान, महाकाल की नगरी उज्जैन। अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से सब कुछ याद आ जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे तस्वीर है ये उज्जैन की। और नहीं गए हैं तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको कन्विंस करने की कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में चलिए, वहाँ की सज धज देखिए। महाकाल की जो गूंज है बड़ी निराली है, हर मन में ऐसा लगता है कि नए प्राण हो गए हों। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर।

बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा बहुत पुराना और पवित्र शहर है। इसे महाकाल की नगरी और मंदिरों का शहर भी कहते हैं। यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो हर 12 साल में यहाँ पे सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। और मेन चीज़ बहुत सारी है इसके बारे में, लेकिन कुछ ना बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि उज्जैन प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, ये तो सब जानते हैं, और कहते हैं कि लगभग 5000 साल पुराना है। और आदि ब्रह्म पुराण में सबसे अच्छा शहर के रूप में इसका वर्णन मिलता है। इसे अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में मोक्षदा और भक्ति मुक्ति कहा जाता है। एक समय था जब ये शहर एक बड़े साम्राज्य की राजधानी था, और आज भी उज्जैन में ऐसे लोगों की भीड़ और ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिनके दिलों में उज्जैन बसता है। इस शहर का जो इतिहास है बहुत ही शानदार है। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी शहर की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मुझे मिल जाए तो उसको जानना। जैसे कि कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, जैव, सप्तैता, मोक्षदायिका, पुराणों के अनुसार उज्जैन के कई नाम हैं, उज्जैनी, प्रतिपाल, पद्मावती, अवंतिका, अमरावती, कुमुदवती, विशाला। और एक समय था जब ये एक शहर हुआ करता था ऐसा कि उसकी अपनी एक, और आज भी है उसकी जो चमक है, उसकी जो रौनक है, वो आज भी है। और शहर अवंती जनपद की राजधानी बन गया, इसलिए इसे अवंतीपुरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा जो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा। और आप यही कहेंगे उज्जैन में आके, क्योंकि ये एक तरह की ना शांति देती हैं इस तरह की जो जगहें होती हैं। जब हमारे मन में उथल पुथल थोड़ी सी मचती है, हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं, तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जाना हम पसंद करते हैं। उन्हीं में से एक है उज्जैन, तस्वीर में आज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

उज्जैन के लिए तो ये कहा जा सकता है कि अगर आपने एक बार इस शहर को देख लिया तो कभी नहीं भूल सकते। विक्रम की गौरव गाथा गाता है ये शहर। कालिदास का अमर सम्मान है, सदियों से इतिहास संजोए है, भारत की अनुपम शान है ये उज्जैन। इसके बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए। कहते हैं कि 7 मुक्ति प्रदान करने वाले शहरों में से एक शहर है। गढ़कालिका और हर सिद्धि, 2 शक्तिपीठ और पवित्र कुंभ जो भारत के 4 शहरों में होता है। राजा भर्तरी की गुफा यहाँ पाई जाती है और माना जाता है कि उज्जैन में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है। अब यहाँ पे ना मेला लगता है, वो आप अगर उसको प्लान करके जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि शैव महोत्सव है, 5 से 7 जनवरी तक 3 दिन का चलता है ये शैव महोत्सव। इसका आयोजन उज्जैन में किया जाता है। त्यौहार

दौरान सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का एक प्रतीकात्मक समागम है ये, और ये उत्सव अब जब देखेंगे ना आप तो आपको लगेगा कि ये भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू होता है और बहुत सुंदर होता है। और अगर अभी आसपास जाना चाहते हैं तो श्रावण सवरी जुलूस श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े में अमावस्या तक और कार्तिक के उज्जवल पखवाड़े से लेकर के मंगरेश्वर के अंधेरे पखवाड़े तक भगवान महाकाल का जुलूस सड़कों पर गुजरता है उज्जैन में। भाद्रपादियों में अंतिम सवारी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और लाखों लोगों की उपस्थिति और प्रदर्शन में ये सब कुछ होता है। दशहरा मैदान में विजयदशमी पर्व पे महाकाल की शोभा यात्रा भी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा मेला है कालिदास समारोह, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको यही यानी कि तस्वीर में जो इस वक्त चल रही है FM गोल्ड पे। और ये तस्वीर है उज्जैन की, उज्जैन वही जहाँ पे जाने के लिए बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि वो बुलाएंगे तब हम जाएंगे।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

स्वागत है आपका तस्वीर में। तस्वीर है ये उज्जैन की, जो भारत के पवित्र शहरों में से एक है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे पे है। दक्षिण और उत्तर को सीधे जोड़ते हुए यात्रा करने वाली क्षिप्रा नदी एकमात्र नदी है। उज्जैन के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आकृति के विशिष्ट चरित्र को ये दिखा

और ये चलना और ये जो भाव है ये उज्जैन हमें सिखाता है। ये एक अनूठे भौगोलिक स्थान पे है उज्जैन, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के पारंपरिक कैलेंडर के लिए भारत के समय का भी प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये कि हम किसी शहर में जाएं और उसकी छोटी छोटी चीज़ों को समझें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मार्च यानी कि मार्च के लास्ट में गर्मियों से शुरू अगर आप करें वहाँ पर जाना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मई में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और मॉनसून जून के मध्य में आता है और अक्टूबर की शुरुआत तक जारी रहता है। तो फिर आप मौसम के हिसाब से भी अपना जो वहां जाने का प्लान है उसको देख सकते हैं। और मैं बात कर रही थी कालिदास समारोह की, तो जो 1958 में शुरू हुआ और ये हर साल उज्जैन में कालिदास समारोह मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने महाकवि कालिदास की स्मृति को ध्यान में रखते हुए हर साल इसका वो आयोजन करते हैं। तो इसको भी आप अगर अपनी उस लिस्ट में रखें तो आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। और इस साल ये जो भारतीय कालिदास समारोह है वो 18 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा कालिदास संस्कृत एकेडमी उज्जैन में। तो उसी हिसाब से आप अपना जो वहाँ जाने का पूरा प्लान है उसको देख सकते हैं कि कैसे करना है। बहुत अच्छा लगेगा, एक बार घूम के तो आइए, फिर आप कहेंगे कि उज्जैन की तस्वीर कितनी अच्छी लगी आपको।

0: हाथों की लकीरों में किस्मत का राज नहीं होता, मेहनत की हर एक बूंद से जीवन यूं ही साज नहीं होता। और कई बार जब हम अपने हाथों की लकीरें पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, तब कुछ ऐसे शहर हैं जहां का रुख करते हैं, और उज्जैन उसी में से एक है।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। बात हो रही है उज्जैन की, एक ऐसा नगर जिसका महत्व समय की सीमाओं से बहुत आगे है, और ये एहसास तब होगा जब आप वहां पे जाएंगे। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इतनी गहराई है कि बस आप ढूंढते रहिए, आपको थाह नहीं मिलेगी।

इस्तेमाल। कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये है उज्जैन की तस्वीर जो जुड़ा हुआ है, हर तरफ से वेल कनेक्टेड है। सबसे पास वाला हवाई अड्डा इंदौर का है, उज्जैन पश्चिम रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है, नियमित बस सेवाएं आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। उज्जैन जाइए और वहां पे जाके मालवा की प्रसिद्ध दाल बाटी और दाल बाफले का स्वादिष्ट भोज लिए बिना मत आइएगा।

उज्जैन पुकारता है। उज्जैन हर शिव भक्त को पुकारता है। जाइए महाकालेश्वर मंदिर देखिए, श्री बड़े गणेश जी का मंदिर है वहाँ पे। इसके बाद मंगलनाथ मंदिर हरिसिद्ध क्षिप्रा घाट पे तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि नदी के दाहिने किनारे जहाँ पे नगर स्थित है वहाँ बने ये घाट बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा गोपाल मंदिर है, गढ़कालिका देवी है, भृतहरि गुफा है, काल भैरव है, महाकाल लोक है, मतलब इतनी सारी जगहें एक साथ हैं और इतना कुछ है देखने के लिए। और उसके अलावा आप यहाँ के बारे में अगर कुछ पढ़ लिख के जाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दाल बाटी और दाल बाफले का स्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो पोहे समोसे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको कहते हैं अल्पाहार। और एक शब्द है स्व अल्पाहार, मतलब कि अगर कोई साथी मिले या ना मिले लेकिन आप अपने आप भी खा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको और भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए आप मुझे कहेंगे कि भाई आपने तो ये हमें बताया ही नहीं कि ये भी वहाँ पे बड़ा अच्छा मिलता है। अब आफ्टर ऑल कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होनी चाहिए जिनको आप ढूंढिए। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे उज्जैन की तस्वीर आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। fmgoldairdelhi@gmail.com पे हमें अच्छा लगेगा ये जान के कि हमने आपको कन्विंस तो कर ही दिया कि घूम के आइए, क्योंकि घूमना हमारी आदत है और इसीलिए हमारे पास पैर हैं ताकि हम चलते रहें बिल्कुल इस गाने की तरह। और अब होने वाले हैं 12, जो समय है समाचारों का। मैं मिलूँगी कल फिर से। टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्य पथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament were adjourned till 12 noon following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. In the Lok Sabha, when the house met at 11 a.m., the presiding officer N.K. Premachandran tried to take up the question hour, but opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over alleged police action during students' protests. In the Rajya Sabha, the ministers laid papers of their concerned ministry on the table of the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour, but due to continued sloganeering, the chairman adjourned the House till 12 noon. Proceedings have now resumed in both houses. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi emphasized that prestige is not gained merely by cutting ribbons, but by playing with the spirit of a young student or an aspiring athlete.
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भी खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
2: India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Vikasit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervour. Tiranga rallies were organised in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana. In Manipur, Chief Minister Yomnam Khemchand participated in the campaign from his residence. He urged the people to recognize themselves as Indians first, then a Manipuri. The gross merchandise value of the government e-marketplace GeM has increased from 422 crore rupees to over 1,55,000 crore rupees in the last decade. In a social media post, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said over 12 lakh micro and small enterprises, including more than 2 lakh led by women, and over 42,000 startups are registered on the portal. He added that GeM is emerging as a key driver of self-reliance that is also strengthening the foundation of a Vikasit Bharat. The Indian Navy, US Navy Explosive Ordnance Disposal, EOD, exercise 2026 will be conducted at Southern Naval Command Kochi from today till the 14th of this month. The Defence Ministry said the bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist diving

0: London. घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
1: और मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। और रश्मि जी, क्यों ना सबसे पहले हम अपने लिसनर्स को आज का सवाल बता दें। तो आपका आज का सवाल है कि किस स्वतंत्रता सेनानी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों, उसका जवाब हमें भीजिए ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com पे।
1: जी, अगस्त का महीना आ गया है और 15 अगस्त आने वाला है, तो आप पहले से ही उसके रंग में रंगी हुई है।
0: मैं सोचे हुई वही हमारा
1: लेकिन मैं एक और रंग जो सावन का रंग है, आज सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार है, और इस सुहाने मौसम और भोलेनाथ की भक्ति से सजे इस पावन सोमवार की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सावन का दूसरा सोमवार और श्रद्धा वातावरण में हरियाली और चारों ओर गूंजता हर हर महादेव का जयकारा, और भगवान शिव आपके जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए और आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। और जुड़ जाइए हमारे साथ सावन की इस खूबसूरत सुबह को और भी खास बनाने के लिए।
0: तो चलिए शुरू करते हैं मनोरंजन और जानकारी से भरे इस शो को, और सावन के आज के सोमवारी को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना पुराना मंदिर फिल्म से। और दोस्तों, आजादी तो मिल गई थी लेकिन देश को आगे बढ़ाने का असली सफर अब शुरू हुआ। यानी टूटे हुए ढांचे को मजबूत बनाना था, नई पीढ़ी को शिक्षित करना था, विज्ञान में आत्मनिर्भर बनना था और समाज को नई सोच देनी थी। इस सफर में भारत की अनेक बेटियों ने ऐसी मिसालें कायम की जिनकी बदौलत आज का भारत खड़ा है। आप क्या सोचती हैं रश्मि जी?
1: जी बिल्कुल, ऐसी ही कुछ महान महिलाओं के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर, और एम्स की स्थापना में उनकी निर्णायक भूमिका रही। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नर्सिंग शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव रखी उन्होंने।
0: और उसके बाद डॉक्टर कमला सोहनी, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें विज्ञान में PhD प्राप्त हुई। उन्होंने पोषण विज्ञान पर शोध किया और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नई राह खोली।
1: जी, और डॉक्टर असीमा चटर्जी भारत की अग्रणी महिला रसायन वैज्ञानिकों में शामिल है और कैंसर और मलेरिया की दवाओं पर उनका जो शोध है वो भारतीय विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
0: डॉक्टर दर्शन रंगनाथन प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक, जटिल जैविक अणुओं के निर्माण और रसायन विज्ञान में उनके शोध ने भारतीय वैज्ञानिक जगत में नई पहचान बनाई।
1: और कैप्टन दुर्गा बनर्जी, इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट, उन्होंने उस दौर में विमान उड़ाया मंजुला जब ये क्षेत्र एकदम पूरी तरह से पुरुषों के लिए माना जाता था।
0: और MS सुब्बलक्ष्मी को हम कैसे भूल सकते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व मंच तक पहुंचाने वाली महान गायिका, वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार।
1: जी, और कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय हस्तशिल्प करघा और रंगमंच के पुनर्जागरण की अग्रदूत, उन्होंने स्वतंत्र भारत में कारीगरों और पारंपरिक कलाओं को आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: महादेवी वर्मा, हिंदी साहित्य की महान स्तंभ, उनकी लेखनी ने नारी चेतना, शिक्षा और संवेदनशील समाज की नई दृष्टि दी।
1: जी, और आजादी का पर्व हम मनाने जाएंगे और याद करें लक्ष्मी सहगल को, आजाद हिंदू फौज की पहली की वीर सेनानी और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने चिकित्सक और समाज सेवी के रूप में अपना जीवन आम लोगों की सेवा में समर्पित किया।
0: विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की अग्रणी महिला राजनयिकों में शामिल और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष।
1: जी, और स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दुर्गाबाई देशमुख, और योजना आयोग से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक उनका योगदान उल्लेखनीय है।
0: और अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी, उन्होंने प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के लिए रास्ता खोला और ये साबित किया कि देश की शासन व्यवस्था में महिलाएं भी नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं।
1: जी, और रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम याद कर रही हूँ, भरतनाट्यम जो नृत्य की कला है उसको पुनर्जीवित करके उन्होंने विश्व भर में सम्मान दिलाया। महान नृत्यांगना और कला क्षेत्र की स्थापना कर भारतीय कला को नई पहचान दी। तो मंजुला, क्यों ना एक गीत जो है, मुझे लग रहा है नृत्य पर हम सुना दे अपने सुनने वालों को।
0: बिल्कुल।

किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना जुगनू फिल्म से। और देखिए रश्मि जी, भारत के मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं होते हैं, बल्कि वे विज्ञान, गणित, वास्तुकला और अभियंत्रण के ऐसे अद्भुत उदाहरण भी है जिन्हें देखकर आज भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं ऐसे चार मंदिर जहाँ इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम दिखाई देता है।
1: और मंजुला, सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर की। यहाँ का जो प्रसिद्ध झूलता हुआ स्तंभ सदियों से लोगों को चकित करता आ रहा है। ये जो स्तंभ है ना, इसके नीचे से आज भी कपड़ा या कागज आसानी से निकल जाता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पूरे मंदिर की अत्यंत सटीक जो ये भार वितरण प्रणाली होती है ना, यानी कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कमाल है। और पूरे मंदिर का भार मंजुला इस प्रकार संतुलित किया गया है कि एक स्तंभ जमीन को पूरी तरह छुए बिना भी भाई वाह संरचना एकदम मजबूती के साथ खड़ी है।
0: बहुत बढ़िया। और अब चलते हैं तमिलनाडु के मीनाक्षी अम्मन मंदिर की ओर। यहाँ के कुछ पत्थर के स्तंभों को हल्के से थपथपाने पर अलग अलग प्रकार की मधुर ध्वनियां सुनाई देती है।
1: अच्छा।
0: इन्हें संगीतमय स्तंभ भी कहा जाता है। और एक ही पत्थर से बने इन स्तंभों से अलग अलग स्वर निकालना उस समय के ध्वनि विज्ञान या पत्थर की गुणवत्ता और अद्भुत शिल्प कला की गहरी समझ को दिखाता है।
1: और तमिलनाडु से चलते हैं उड़ीसा की ओर, कोणार्क के सूर्य मंदिर की ओर। सूर्य के रथ के रूप में बने इस मंदिर के 24 विशाल पत्थर के जो पहिए हैं ना, वो केवल सजावट नहीं है, इन्हें इस प्रकार बनाया गया है कि ये सूर्य घड़ी यानी सन डायल की तरह समय का बताने का काम करें। और सूर्य की जो छाया है इन पहियों पर पड़कर समय का संकेत देती है। ये उस युग के खगोल विज्ञान, गणित और सौर ज्यामिति की अद्भुत समझ का प्रमाण है।
0: ऑसम। और अंत में तमिलनाडु का भव्य बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर के शिखर पर लगभग 80 टन वजन का एक विशाल कम पत्थर स्थापित है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि लगभग 1000 साल पहले बिना आधुनिक क्रेन के इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया। तो माना जाता है कि इसके लिए कई किलोमीटर लंबा ढलानदार मार्ग बनाया गया है जिसके सहारे इस विशाल पत्थर को ऊपर पहुंचाया गया। और यह उस समय की सिविल इंजीनियरिंग और तकनीक का अद्भुत मिसाल है।
1: तो मंजुला, ये जो भारत के सुंदर मंदिर है, ये हमारी केवल आस्था में ही नहीं बल्कि विज्ञान, गणित, ध्वनि विज्ञान, खगोल विज्ञान और अभियंत्रण के भी अत्यंत जो है उन्नत की जी उदाहरण है। और यही कारण है कि ये धरोहरें आज भी पूरी दुनिया के लिए शोध और प्रेरणा का विषय बनी हुई है। तो मंजुला, आज तुम ये बताओ, मैं तुमसे प्रश्न पूछती हूँ, तुम सबसे प्रश्न पूछती हो कि इनमें से यदि एक मंदिर देखने का अवसर मिले तो आप सबसे पहले कौन से मंदिर में जाना चाहेंगे?
0: मैं सबसे पहले तमिलनाडु के मीनाक्षी टेम्पल में जाना चाहूंगी। और वैसे भी मंदिर का भ्रमण बहुत ही खूबसूरत
1: और मन भी तो एक मंदिर है ना मंजुला।

0: अभी हम सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म तेरे मेरे सपने। और रश्मि जी, ऐसा लग रहा है कि आप मेल्स पढ़ रही हैं।
1: देखिए, सबसे पहले नवीन भाटिया जी का हमेशा की तरह मेल आ गया है मोती नगर से। कहते हैं शहीद भगत सिंह, क्योंकि उनके बचपन से ही देश प्रेम मिला था।
0: और गौरी शंकर जी लिखते हैं, बेटा आप दोनों को राम राम। वैसे तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक से बढ़कर एक हुए हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की, लेकिन उनके फेवरेट सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी मैथ कैसे हुई, तो उनका फेवरेट सुभाष चंद्र बोस है, जो मेरे भी फेवरेट हैं।
1: जी, और आदित्य मुद्गल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो मेरे पसंदीदा जो जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, वो जो क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं निर्भीक थे और देश पर वो कुर्बान हो गए, बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने।
0: और ऐना लिखती हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।
1: वाह। और संदीप राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी और लंबी मेल उन्होंने लिखी है, कि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीति नेताओं और शिक्षित वर्ग तक नहीं, बल्कि करोड़ों आम भारतीयों का जन आंदोलन बना दिया। सत्याग्रह की विचारधारा को विकसित किया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों को चलाया, और विभिन्न वर्गों जो थे, किसान हो, मजदूर हो, महिलाओं हो, उनको जोड़ा। साथ में स्वदेशी आंदोलन और दांडी मार्च का वो जिक्र कर रहे हैं, अहिंसा का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत उनकी प्रतिबद्धता रही, और कई वर्ष उन्होंने जेल में बिताए, सादा जीवन

0: और उच्च विचार का आदर्श दिया। नैतिक उद्देश्यों के लिए उपवास और व्यक्तिगत त्याग को भी प्रभावी माध्यम के रूप से इस्तेमाल किया।
1: बहुत बढ़िया मेल। और अनन्या लिखती हैं कि मैं भगत सिंह से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, और क्योंकि कम उम्र में उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया और उनके साहस, जो अदम्य साहस से उन्होंने फाइनली देश पे अपनी जान कुर्बान दी
0: जी। और अवनीश कुमार जुड़ गए हैं, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ सुभाष चंद्र बोस को बहुत पसंद करता हूँ और भगत सिंह का भी नाम ले रहे हैं। भाई वाह, जो ये क्रांतिकारी हैं, ये शहीद हैं, जो देश पर कुर्बान होने वाले हैं, इनके ये हमारे दिलों में बसते हैं, इनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। मंजुला,
1: और जब बात हो ही रही है स्वतंत्रता सेनानी की, तो हमारा भी यही सोचना है कि जो पेरेंट्स होते हैं रश्मि जी, वही बच्चों में इस तरह का जो भावना है वो डेवलप कर सकते हैं। यानी बच्चे सुनते कम है, देखते ज्यादा है, इसलिए माता पिता जो करते हैं वही बच्चों का सबसे बड़ा पाठ बन जाता है। तो हम बात करेंगे कि घर परिवार में देशभक्ति के संस्कार देने में माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है। जरा सोचिए रश्मि, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बच्चे को सबसे पहले राष्ट्रगान किसने सिखाया, तिरंगा का सम्मान करना किसने सिखाया, देश के वीरों की कहानियां किसने सुनाई, तो आपका जवाब क्या होगा?
0: भाई मैं तो कहूंगी कि ये घर से संस्कार पहले मिलते हैं, और सभी की जो घर में सबसे पहले जो माँ होती है वो पहली गुरु होती है। यही सच भी है, क्योंकि देशभक्ति की शुरुआत किसी किताब से नहीं, परिवार से होती है। बच्चों को केवल ये कहना कि देश से प्यार करो, ये काफी नहीं है मंजुला, उन्हें ये भी दिखाना होगा कि प्यार कैसे किया जाता है देश से।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और केवल सीमा पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, समय पर टैक्स देना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानून का पालन करना और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये भी सच्ची देशभक्ति है। एक छोटी सी आदत पूरे परिवार का माहौल बदल सकती है।
0: तो सप्ताह में एक दिन बच्चों के साथ किसी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी पढ़िए, उनसे पूछिए अगर तुम उस दौर में होते तो देश के लिए क्या करते। भाई जो 15 अगस्त 26 जनवरी को केवल छुट्टी के रूप में नहीं मनाइए, बल्कि जो घर में जो तिरंगे का महत्व है, संविधान की मूल भावना है, हमारे जो राष्ट्र प्रतीक है उनके बारे में भी चर्चा कीजिए।
1: और दादा दादी या नाना नानी के जीवन के अनुभव भी बच्चों तक पहुंचाइए। परिवार की ऐसी बातें बच्चों के मन में अपने देश के प्रति अपनापन और गर्व जगाती है। तो याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जो घर में देखते हैं। इसलिए हम अगर चाहेंगे कि अगली पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक बने, तो शुरुआत हमें अपने से करनी होगी।
0: भाई वतन की मोहब्बत किताबों से नहीं आती, ये वो घर की परवरिश से, दिल से उतर जाती है। और माता पिता जो संस्कारों का जो दीप जलाते हैं, वही बच्चे आगे चलकर देश का मान बढ़ाते हैं।
1: क्या बात है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी राजा और रंग। और रश्मि जी, भारत को जानना है तो सिर्फ उसकी सड़कों और शहरों को मत देखिए, उसकी किताबों के पन्नों को भी पलटिए, क्योंकि इस देश की असली कहानी, उसके इतिहास, संस्कृति और उसकी सभ्यता उन परतों में छिपी है जिन्हें पढ़े बिना भारत को पूरी तरह से समझना मुश्किल है
1: जी। और इसी में एक जो किताब है वो है भारत एक खोज, जो नेहरू जी की लिखी हुई किताब है।
0: ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी था ना, याद है
1: जी। ये इस पर एक दूरदर्शन का जो धारावाहिक बना है वो मुझे लगता है बहुत हमारे श्रोताओं ने देखा होगा। और ये जो किताब है भारत के अतीत की एक व्यापक यात्रा कराती है, प्राचीन सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक, इतिहास, दर्शन, संस्कृति और भारतीय समाज को समझने की एक कोशिश करती है। इसे पढ़ेंगे ना मंजुला तो आपको महसूस होगा कि आज का भारत अपने अतीत से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और दूसरी किताब उतनी ही यूनिक है, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के चार अध्याय। यह किताब हमें बताती है कि भारतीय संस्कृति केवल एक परंपरा का नाम नहीं है, सदियों के संवाद, संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इसे आकार दिया है। दिनकर ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में अलग अलग सभ्यताओं और परंपराओं के योगदान को समझने की कोशिश की है
1: जी। और ये जो तीसरी किताब है ये है हरिदत्त वेदालंकार की भारत का सांस्कृतिक इतिहास। अगर आप भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को अपेक्षाकृत व्यवस्थित ढंग से समझना चाहें तो ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। भाई भारतीय परंपराओं, सामाजिक जीवन, कला और सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए बहुत अच्छा, जिसे ये कहते हैं ना, इन्फॉर्मेटिव आधार देती है ये किताब।
0: और एक और किताब है ए.एल. बाशम की अद्भुत भारत। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह पुस्तक प्राचीन भारत की सभ्यता, समाज, कला, साहित्य, धर्म और जीवन पद्धति के अनेक पहलुओं से परिचित कराती है। तो अगली बार रश्मि जी कोई अगर जानना चाहे भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा, तो उनको हम यही कहेंगे इंटरनेट पर छोटी छोटी जानकारियां खोजने की बजाय एक अच्छी किताब उठाइए, क्योंकि किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसके वर्तमान में नहीं होती, उसके जड़ें, उसके इतिहास, उसके सभ्यता में भी होती है।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म जिगरी दोस्त।
1: और हमारे पास कुछ मेल्स आ गई हैं मंजुला। आप हैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप कह रहे हैं कि महात्मा

0: गांधी ने हमें बहुत इंस्पायर किया है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। भाई वाह, और
1: बढ़िया। सुदर्शन मुखी जी का भी आया है कि हम तो शहीद भगत सिंह जी के बहुत बड़े फैन हैं, मतलब उनसे प्रभावित हैं। तो भगत जी के फैन बहुत नजर आ रहे हैं। रश्मि जी, आप किन को पसंद करते हैं?
0: मैं तो, हम तो ये कहेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं वो हमारे हमारे सर माथे पर हैं, उनके दिए हुए बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में बेफिक्री के साथ सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता का जिसे कह रहे हैं, जो उन्होंने जो मेहनत की थी उसकी, उसका जो फल है हम उसको, तो हम किसको कम कहें, किसको ज्यादा कहें, सभी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और भाई चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, और राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो, उधम सिंह हो, मंगल पांडे हो, वीर अब्दुल हमीद हो, और साथ में महिला क्रांतिकारी जैसे दुर्गा भाभी, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त, बीना दास, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, ये सभी हम कहेंगे हमारे लिए खास है। और इसके साथ अनगिनत ऐसे भी बलिदानी क्रांतिकारी
1: हैं जिनका नाम हम जानते
0: जी, जिन जो कि अनकहे हैं, अनसुने हैं, उनके बलिदान जो है वो भारतीय इतिहास में दर्ज हैं। उनके लिए भी हम, उनको भी, उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं एफएम गोल्ड के स्टूडियो से।
1: और अब रश्मि जी फिर से चलते हैं बारिश की ओर। बारिश का मौसम आते ही, मानसून आते ही, बरसात हो ना हो, लेकिन हमारे बाल और हमारे जो त्वचा है वो थोड़ा सा उनका रख रखाव करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में तेल, क्रीम या दूसरे सौंदर्य उत्पादों के साथ अपने खाने पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत क्यों ना फ्रूट से करते हैं।
0: भाई आजकल तो देखो जामुन है, पपीता, नाशपाती, अमरूद है, अनार, सेब, इनमें से जो भी फल आपके आसपास आसानी से मिल रहे हैं उन्हें रोज की थाली में जगह दीजिए। अमरूद में विटामिन सी होता है जो त्वचा में कोलेजन बनाने में मदद करता है और शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बालों की बात करें मंजुला, तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, जैसे दाल, चना, पनीर हो गई, दही हो गई, और दूसरे प्रोटीन खाद्य पदार्थ जो है वो नियमित रूप से लेने चाहिए। आजकल जो सावन का महीना चल रहा है तो सिर्फ बालों पर ही कुछ लगाना काफी नहीं, बल्कि बालों को मजबूत बनाने के लिए शरीर को अच्छा भोजन भी तो चाहिए।
1: बिल्कुल सही। और हमारी रसोई की एक छोटी सी लेकिन काम की चीज है करी पत्ता। इसे सिर्फ तड़के तक सीमित क्यों रखें, चटनी, पोहा, उपमा या दाल में डालिए। करी पत्ते में कई विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत काम के होते हैं। और अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के, सीड्स के। अखरोट, अलसी, कद्दू के बीज और तिल थोड़ी सी मात्रा में रोज या नियमित रूप से इन्हें खाने की आदत डालिए। इसमें बहुत ही अच्छे वाले फैट होते हैं और दूसरे पोषक तत्व होते हैं।
0: हाँ, और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। भाई बालों में झड़ने का ये कारण हो सकती है, इसलिए भाई जो चना है, दालें हैं, तिल है, कद्दू के बीज हैं, ड्राई फ्रूट जो से मंजुला कह ही रही थी, इसको भोजन में शामिल कीजिए। और एक आसान नियम याद रखिए, भाई आयरन वाला अगर भोजन लेते हैं ना तो विटामिन सी वाला भोजन जरूर लें, जैसे चने के साथ थोड़ा सा नींबू ले लें या भोजन के बाद अमरूद ले लें।
1: और मानसून में पानी पीना मत भूलिए। बादल देखकर शरीर की पानी की जरूरत कम नहीं हो जाती दोस्तों। तो इस मौसम अपनी खूबसूरती के लिए सिर्फ आईने के सामने नहीं, खाने की मेज पर भी थोड़ा सा समय दीजिए। मौसमी फल, पर्याप्त प्रोटीन, मेवे और बीज, आयरन वाले खाद्य पदार्थ और रोज का संतुलित भोजन, यही है प्राकृतिक खूबसूरती की अच्छी शुरुआत।
0: क्योंकि भाई मंजुला एक अच्छा जो सौंदर्य उत्पाद है वो आपको बाहर से संवार सकता है, लेकिन भाई सही भोजन अगर आप लेते हैं तो वो आपके शरीर को भीतर से पोषण देगा।

0: और अभी कुछ मेल्स और आ गए हैं रश्मि जी, मैं देख रही हूँ कि आप उसको पढ़ना चाह रही हैं,
1: तो तुम ही पढ़ दो पहले।
0: हाँ, तो अनिल जी लिखते हैं, अनिल मेहता इनका नाम है, भगत सिंह की अतुलनीय देशभक्ति और उनके साहस की वजह से प्रभावित हूँ। मात्र 30 साल की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेना उनकी असीम राष्ट्रभक्ति को दिखाता है।
1: और उमेश कुमार खयाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मेरे जो प्रिय नेता हैं वो है सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी जो है उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ।
0: और डॉक्टर राजेश्वर राव भी लिख रहे हैं कि लाल बाल पाल उनके जो फेवरेट पावरफुल इंस्पिरेशन जो हैं वो थे, उनमें से एक फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने किया। और भी बहुतों का नाम लिखा है, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, फटाफट
1: जल्दी से एक और मेल पढ़ देते हैं। हनी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो प्रेरणा लेता हूँ भगत सिंह से, और क्योंकि जो उनकी जो उम्र थी बहुत कम थी जब उन्होंने फांसी का फंदा चूमा, और कहते हैं कि मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई इतने किसी के अंदर इतनी निर्भीकता भी हो सकती है। और क्योंकि ये मैं अनुवाद चलते चलते कर रही हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में ये मेल लिखा हुआ है और कहते हैं उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और एक और मेल मैं पढ़ देती हूँ, सुगंधा राव, वो कह रहे हैं भाई भगत सिंह का फिर नाम आ गया, वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रही हैं।

0: अभी आप सुन रहे हैं आशा भोंसले की आवाज में ये गाना इसी खूबसूरत गीत के साथ। आज का सफर को हम यही विराम देते हैं। दीजिए मंजुला और
1: रश्मि को
0: इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में हम याद करेंगे एक ऐसे संगीतकार को जो हिंदी फिल्म संगीत में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए। ये वो हैं कि जिनके सिखाए हुए आर्टिस्ट और कंपोजर्स ने खूब नाम कमाया हिंदी सिनेमा में। दोस्तों, आज का जो संगीत है वो बहुत ही अलग होने वाला है। आज के जो गाने हैं वो आपको एक अलग ही एरा में लेकर जाएंगे, बहुत बहुत बहुत बहुत पीछे। सुनिए जरा।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना महल फिल्म से, जिसका संगीत तैयार किया था खेमचंद प्रकाश ने, जिनकी आज हम बातें करने वाले हैं कलाकार बेमिसाल में। दोस्तों, इस प्रोग्राम को करने से पहले मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी। मैंने कहा काफ़ी पुराने एरा के गाने मुझे सुनाने हैं और इस एरा के गाने मैं कम ही सुनती हूँ, पता नहीं कैसे लगने वाले हैं हमारे लिसनर्स को। तो मेरी वो दोस्त भी प्रेजेंटर हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को आप सुनना शुरू करेंगी ना, 40s और 30s के जो सिंगर्स रहे हैं, तो एक अलग ही सुकून मिलेगा, एक अलग ही आपको रूहानी सी फीलिंग आएगी। तो वाकई में ये जो गाना मैंने सुना ना महल फिल्म का, ये मुझे कुछ ऐसा ही फील दे गया। शायद आप इत्तेफाक रखते हो मेरी बात से। तो दोस्तों, चलिए लौट चलते हैं उसी बात की तरफ जो मैं आज करने वाली थी आपसे। आज हम याद करने वाले हैं खेमचंद प्रकाश को। दोस्तों, खेमचंद प्रकाश एक बहुत ही मशहूर संगीतकार रहे हैं अपने ज़माने के। खेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता राजस्थान के शाही दरबार में ध्रुपद गायन किया करते थे और कथक डांसर हुआ करते थे। खेमचंद प्रकाश को संगीत की प्रेरणा अपने परिवार से ही मिली, अपने पिता से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और 13-14 साल की उम्र रही होगी उनकी। पहले वो बीकानेर राजघराने में गायक के तौर पर जुड़ गए, फिर नेपाल राजघराने के लिए गाने लगे।

KL सहगल साहब के जो दीवाने हैं उनके लिए तो आज का जो प्रोग्राम है वो ट्रीट की तरह है ना। KL सहगल साहब की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, फिल्म का नाम है भंवरा, और इस गाने को तैयार किया था, इसका संगीत दिया था खेमचंद प्रकाश ने। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत के लिए काम करना खेमचंद प्रकाश के लिए एक इत्तेफाक ही था। वो किसी काम से कोलकाता आए और यहीं के होके रह गए। कोलकाता में उन्होंने न्यू थिएटर्स ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें नए रास्ते मिले अपनी मंजिल से जुड़ने के लिए। कोलकाता में ही उनकी मुलाकात संगीतकार तिमिर बारन से हुई, जो उस वक्त देवदास, जो 1935 वाली है देवदास, उस पर काम कर रहे थे। खेमचंद की जो संगीत को लेकर जानकारी थी और डेडिकेशन था, उसने तिमिर को बहुत प्रभावित किया, और फिर उन्होंने खेमचंद प्रकाश को अपने पास असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर रख लिया।

0: दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना खुर्शीद की आवाज़ में, और डीएन मधोक ने इस गाने को लिखा था और खेमचंद प्रकाश ने इस गाने को संगीत दिया था। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं 40 और 50 के दशक के गाने। जी हाँ, सैगल साहब के ज़माने में आपको लेकर गए हैं आज हम। और आज हम बातें कर रहे हैं संगीतकार खेमचंद प्रकाश की, जो कि हिंदी सिनेमा के सबसे शुरुआती दौर के बड़े संगीतकार थे।

महल फिल्म का ये गाना आपने सुना राजकुमार की आवाज़ में, और ये जो फिल्म है ये 1949 में रिलीज़ हुई थी। शायद आप जानते हों कि महल जो फिल्म है ये हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म मानी जाती है, और इस फिल्म में नज़र आए थे मधुबाला और अशोक कुमार। इस फिल्म की बहुत ही ख़ास बात रही इसका संगीत, जो कि खेमचंद प्रकाश ने कंपोज़ किया था। लेकिन एक बड़ी ही अफसोसनाक, एक बड़ी ही दर्द भरी कहानी है इस फिल्म के संगीत की, जो मैं आपको प्रोग्राम में थोड़ा आगे सुनाऊंगी। उससे पहले खेमचंद प्रकाश के करियर के शुरुआती दिनों की बात करते हैं। दोस्तों, खेमचंद प्रकाश ने करियर के शुरुआती दिनों में एक दो गाने भी गाए हैं, जैसे कि स्ट्रीट सिंगर फिल्म आई थी 1938 में। इस फिल्म के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक कॉमेडी जो गाना था उसको आवाज़ दी थी, और बहुत ही जल्द खेमचंद प्रकाश मुंबई के कुछ लोगों के कांटेक्ट में आ गए। उन्होंने वहाँ जाने का मन बना लिया। ये साल 1939 की बात है। उनको अपनी पहली फिल्म भी बहुत जल्दी मिल गई, हिंदी फिल्म वहाँ पर, जिसका संगीत उन्होंने अकेले कंपोज किया था। इस फिल्म का नाम था मेरी आंखें। इसके साथ ही उन्होंने एक और फिल्म साइन की इसी साल, जिसका नाम था गाजी सलाउद्दीन। ये दोनों ही फिल्म्स रंजीत मूवी टोन फिल्म स्टूडियो की थी। इस स्टूडियो का खेमचंद के करियर में बहुत बहुत बड़ा योगदान माना जाता है।

तानसेन है फिल्म का नाम जिसे सुना आपने, ये गाना खुर्शीद की आवाज़ में, और इस गाने को कंपोज किया था खेमचंद प्रकाश ने। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के सबसे शुरुआती और बड़े स्टूडियो में से एक माना जाता था रंजीत फिल्म स्टूडियो। इनके साथ काम करना उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, और रंजीत स्टूडियो और खेमचंद प्रकाश का जो साथ था वो बहुत ही लंबा और कामयाब रहा। दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद के अलावा आइकॉनिक फिल्म तानसेन, जिसका मैंने अभी आपको गाना सुनाया, जो कि 1943 में आई थी, ये कुछ कामयाब फिल्में रहीं इस प्रोडक्शन हाउस की। और तानसेन के तो आप जानते ही हैं, लगभग सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ही ख़ास फिल्म रही है। ये केएल सहगल की ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़ास रही, और ये जो फिल्म है ये खेमचंद प्रकाश के करियर में भी बहुत ही ख़ास स्थान रखती है। वैसे फ़िलहाल मैं आपको एक और ऐसे गायक की आवाज़ सुनाना चाहती हूँ जिनके गाने आपने बहुत कम सुने होंगे। इनका नाम है खान मस्ताना, और सावन आया रे फिल्म का ये गीत है उनकी आवाज़ में, जिसे कंपोज किया है खेमचंद प्रकाश ने। आइए सुनते हैं।

चमकता हो रात ही ना।

इस गाने को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि ये गाना आपने नए जमाने में भी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है। हाँ, वो एक गाना बहुत साल पहले आया था, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा ज़माना याद आता है, तो कुछ कुछ कुछ कुछ ऐसा सा लग रहा है मुझे ये गाना, है ना। तो जो पुराने गाने हमारे हुआ करते थे ना, उन्हीं गानों से बहुत सारे गाने इंस्पायर्ड हुए आगे जाके और पुराने गानों को भुला दिया गया। लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको उस एरा में लेकर चलती हूँ जिस एरा के गाने बहुत ही ख़ास हुआ करते थे। दोस्तों, खान मस्ताना की आवाज़ में ये गाना आपने सुना, खेमचंद प्रकाश का ये कंपोज़ किया हुआ गाना है। और खेमचंद प्रकाश को इसलिए भी ख़ास तौर से याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत के कई बड़े सितारों को लॉन्च किया था। और इन बड़े सितारों में दो नाम ख़ास तौर से लिए जाते हैं, एक है किशोर कुमार और दूसरा नाम है लता मंगेशकर। दोनों को उन्होंने वो गाने दिए जिनके बाद दोनों का करियर आगे बढ़ा। साल 1948 में खेमचंद प्रकाश ने बॉम्बे टॉकीज़ की जो फिल्म थी ज़िद्दी, इसके गाने कंपोज किए थे और किशोर कुमार को एक बड़ा ब्रेक दिया था। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये किशोर दा का पहला गाना है। इस गाने के बाद किशोर कुमार को पहचान मिली थी और अच्छे गाने मिलने शुरू हुए थे। चलिए ये गाना सुनाती हूँ, वैसे पहचान में बहुत कम आएगी उनकी आवाज़ आपको।

0: जिद्दी फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना और इस गाने को कंपोज किया था खेमचंद प्रकाश ने। और भी बातें होंगी उनके बारे में, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन आपको यहीं पर रहना है रेडियो के पास। हाँ
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं गुजरे जमाने के एक बहुत ही मशहूर कंपोजर खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम जिद्दी फिल्म की बात कर रहे थे। जिद्दी में लता मंगेशकर ने भी एक बहुत ही खूबसूरत गाने को आवाज़ दी थी, चंदा रे चंदा रे। लेकिन उनके लिए भी जो टर्निंग पॉइंट है वो खेमचंद प्रकाश ही लेकर आए। जी हाँ, खेमचंद प्रकाश एक बहुत ही खूबसूरत गाना लेकर आए थे महल फिल्म में, और ये गाना इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि उसके बाद लता मंगेशकर बहुत बहुत लोकप्रिय हो गई। गीत के बोल आएगा आने वाला, ये जो है ना, ये महल के जो रिकॉर्ड्स हैं, जब उसका पहला लॉट आया था तो इसमें, इस गाने के रिकॉर्ड्स में जो डिटेल दी गई थी सिंगर की, उसमें लिखा था कामिनी, मतलब क्रेडिट में कामिनी लिखा हुआ था। अब जब ये गाना पहली बार आकाशवाणी पर सुनाया गया तो ढेरों लेटर्स और फ़ोन कॉल्स आए कि भाई गायिका का नाम बताओ, किसने गाया है इस गाने को, ये एकदम

सेंसेशन बन गया उस वक्त, बहुत ज़बरदस्त इस गाने को पसंद किया गया, फिर आकाशवाणी की तरफ से गायिका का नाम मंगवाया गया, रिकॉर्ड कंपनी ने लता मंगेशकर की डिटेल्स दी और उसके बाद आकाशवाणी पर लता मंगेशकर के नाम से ये गाना बार बार बार बार सुनाया गया। उफ क्या गाना है। चलिए, इतनी सारी तारीफें की हैं तो इस गाने को सुनाती हूँ आपको।

दोस्तों, ये लता मंगेशकर का तो पहला सुपरहिट गाना था ही। इसके अलावा खेमचंद प्रकाश के करियर की भी एक बहुत बड़ी वाली सुपरहिट फिल्म थी महल। एक बहुत ही अफसोस की बात ये रही कि घर घर मशहूर हुए महल के गीतों की जो कामयाबी है, इसे देखने के लिए खेमचंद प्रकाश नहीं रहे। 10 अगस्त 1950 को एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया से उन्होंने अलविदा ले ली, लेकिन अपने गीतों के जरिए वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा।

0: ने अपनी अपनी वजारतों से मुतालिक दस्तावेजात ऐवान की मेज़ पर पेश की। पार्लिमानी कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की गईं, जिनमें खजाना, हाउसिंग और शहरी उमूर, रेलवे, समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात से मुतालिक कमेटियां शामिल थीं। इसके बाद सदनशीन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सिफर शुरू किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से झारखंड कानून साज असम्बली की जानिब मार्च शुरू कर दिया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी में इस्लाहात से मुतालिक मंच की क्यादत में तलबा का एहतजाज आज 17वें रोज में दाखिल हो गया है। एहतजाज कर रहे तलबा बाज इम्तहान खासतौर पर जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने और मुबैना बेजाबतगियों की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। इस दौरान हुकूमत ने दावा किया है कि तलबा के 98% मुतालबात मान लिए गए हैं। अपोजिशन रहनुमा बाबूलाल मरांडी और रियासती सदर आदित्य साहू समेत बीजेपी के रहनुमाओं को वजीर आला हेमंत सोरेन की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज के दौरान हिरासत में लिया गया है। पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा तहरीक जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया। इनमें बीड़, थाने और बुल्दाना शामिल हैं। उधर मणिपुर में वजीर आला युमनाम खेमचंद ने अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी तस्वूर करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में जोश खरोश के साथ शामिल हों और विकसित भारत की तामीर की समत अपना रोल अदा करने की खातिर अपने इज्तिमाई अज़्म की तजदीद करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी शान है और मुल्क के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए तरगीब का एक मुस्तकिल वसीला है। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि इस साल कोशिशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं और वो भी एक ऐसे वक्त के जब हम कौमी गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। चीन के हुकाम ने शदीद तूफान डॉल्फिन के आने के तनाजुर में शंघाई समेत मशरकी चीन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। खित्ते में शदीद तूफान के नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई और ट्रांसपोर्ट निजाम में खलल पड़ गया। आज शंघाई में तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख की गईं। चीन के हुक्काम ने इससे पहले डॉल्फिन तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था, जो इस साल वहां आने वाला सबसे शदीद तूफान है। बब्बर शेरों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में एशियाटिक लायन के मस्कन और इसकी रेंज में उसत के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का तहरीर करदा मजमून शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लोगों को की मजबूत शमूलियत के साथ बब्बर शेरों को महफूज रखने के सरकार का पुख्ता अज़्म मुल्क के जंगली जानवरों का तहफ्फुज़ करने की एक बाइस से तरगीब मिसाल है। माहौलियात, जंगलात और आब हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव के तहरीर करदा मजमून में कहा गया है कि 11 जिलों में 2020 में तकरीबन 30,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके से बढ़कर बब्बर शेरों का मस्कन अब तकरीबन 35,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गया है। वजीर आजम ने मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर दौलत मुश्तरक खेलों में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों से मुतालिक अपने तजर्बात शेयर किए। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वक़ार सिर्फ फीता काटने से हासिल नहीं होता, बल्कि एक नौजवान तालिबे इल्म या उभरते हुए खिलाड़ियों के जज्बे के साथ खेलने से हासिल होता है।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भी खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
0: آخر میں خاص خاص خبریں. ایک بار پھر کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی. لوک سبھا میں ٹرائبونلز اصلاحات بل 2026 سمیت 4 بل پیش کیے گئے. مذکورہ بل کا مقصد ٹرائبونلز کے کام کاج میں شفافیت اور صلاحیت میں بہتری لانا ہے. جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے والے طلبا نے ریاستی اسمبلی کی جانب اپنا مارچ شروع کر دیا ہے. پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہر گھر

0: कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना।

0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। देश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ है आप सभी का स्वागत है संगीत.com में। दोस्तों, अमूमन हिंदी गानों को बनाने का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। गीत लिखे जाते हैं, धुनें बनती हैं, संगीत संयोजन होता है, गायन होता है, लेकिन हर एक गाने के तैयार होने की अपनी एक कहानी होती है। जी हाँ, और उस कहानी में बहुत सारे किरदार होते हैं और उन किरदारों में एक हीरो होता है और वो हीरो होता है संगीतकार जो उस गाने को बनाता है। तो ऐसी कुछ कहानियाँ हर गाने से जुड़ी हुई, बहुत सारे गाने आपको सुनाने वाली हूँ जिन गानों से जुड़ी हुई कहानियाँ भी आपके सामने होंगी। तो सुनते रहिए संगीत.com। फिर से स्वागत है आप सभी का।

उत्तम सिंह ने इस गाने को कंपोज किया था और इस गाने का जो इस गाने की के जो बोल हैं वो कैसे आए, किस तरह से आए, ये मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़ में, उदित नारायण की आवाज़ में आपने इस गाने को सुना और ये रिलीज़ हुई थी 1997 में। दोस्तों, दिल तो पागल है उस साल की सबसे कामयाब फिल्म थी और इसके सुपरहिट होने में सबसे बड़ा जो रोल था इसके गीत संगीत का था, ये तो आप भी जानते होंगे। बहुत बहुत ही आम सी बात मैंने बताई आपको, है ना। और एक बात शायद आप ना जानते हो, ये बहुत ही खास बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो गाना मैंने आपको सुनाया है इसकी जो धुन है वो उत्तम सिंह ने जब फिल्म मेकर यश चोपड़ा की टीम को सुनाई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। जी हाँ, यही वाली धुन, अरे रे अरे ये क्या हुआ, ये वाली जो धुन है इस धुन को रिजेक्ट कर दिया था। और एक बार नहीं बल्कि 50 बार ऐसा हुआ। आखिरकार उत्तम सिंह बड़े परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे यश चोपड़ा साहब से बिल्कुल एकदम आमने सामने मिलना है। यश चोपड़ा साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने समझाया कि ये सादगी भरी धुन है, लोगों को पसंद आएगी, आप एक बार सोचिए इस बारे में। बस यश चोपड़ा साहब तो मशहूर ही थे कुछ नया करने के लिए, उन्होंने हाँ कर दी और कमाल कुछ इस तरह से हुआ कि ये जो गाना है, ये वाला गाना पूरी की पूरी एल्बम में सबसे ज़्यादा कामयाब रहा था। तो ऐसे ही होती है गानों से जुड़ी कहानियाँ। एक बहुत ही प्यारा सा गाना और सुनाती हूँ आपको, जुड़े रहें आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ।

0: कटी पतंग फिल्म का ये गाना है दोस्तों, जो आपने सुना बिल्कुल अभी। 1971 में फिल्म रिलीज हुई थी और इस गाने को आवाज दी थी किशोर दा ने। इसे कंपोज किया था आर डी बर्मन साहब ने। आप तो जानते हैं कि आर डी बर्मन साहब को उनकी अनोखी कंपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत उनका नाम लिया जाता है। ग्लास, सोडा बॉटल, झाड़ू, कोई भी चीज वो इस्तेमाल कर लेते थे संगीत की धुनें निकालने के लिए। उनके बारे में आज बहुत सारी कहानियां मेरे पास हैं जो मैं सुनाने वाली हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड। मिलते हैं बिल्कुल छोटे से ब्रेक के बाद।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। संगीत.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और बातें हो रही हैं गानों के पीछे की कहानियों की। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि संगीत कंपोज करने के मामले में आर.डी. बर्मन साहब, जिन्हें प्यार से पंचमदा भी कहा जाता है, उनका एक अलग ही मुकाम रहा है। आर.डी. बर्मन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को ख़ास बना दिया करते थे। ऐसे हज़ारों किस्से हैं जो साबित करते हैं कि बहुत ही अनोखे थे पंचमदा। अब जैसे कि बारिश के मौसम से जुड़ी एक याद है पंचमदा की। वो इतनी आगे की सोच रखा करते थे कि एक बार बारिश की बूंदों की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए वो घंटों खिड़की के पास बैठे रहे, ताकि अपने गानों में असली वाली बारिश की आवाज़ डाल सके। जी हाँ, और बारिश पर तो उन्होंने एक से बढ़कर एक कई गाने कंपोज किए, जैसे कि 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये वाला गीत।

1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसका संगीत कंपोज किया था आर डी बर्मन साहब ने और इस गाने को आवाज़ दी थी कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति ने। दोस्तों, हम बातें कर रहे थे किशोरदा और आर डी बर्मन साहब की। किशोरदा अक्सर कहा करते थे कि पंचम अकेले ऐसे संगीतकार हैं जो उनके दिमाग के पागलपन यानी कि दीवानगी को समझ सकते थे। यही वजह रही कि दोनों जब भी साथ बैठते तो कुछ ना कुछ लीक से हटकर और बेहतरीन बना दे। अब जैसे कि एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। उन दिनों पंचम दा अपने पिताजी यानी कि एस डी बर्मन साहब को असिस्ट कर रहे थे और किशोर दा पंचम दा को अपने कॉलेज का एक किस्सा सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि कैंटीन वाला एक हुआ करता था जिसके 5 रुपये 12 आने किशोर दा पर उधार थे और वो अक्सर गाने के स्टाइल में मांगा करता था। ऐसे बोलता था, ए किशोर, मेरे 5 रुपये 12 आना दे। तो किशोर दा ने ये लाइन जो है वो पंचम दा को मस्ती में गाकर सुनाई। अब पंचम दा को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि रात भर बैठ गए और इस लाइन पर पूरे के पूरे गाने की एक धुन अपने दिमाग में क्रिएट कर ली और ये आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे ज़्यादा मज़ेदार गानों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस फिल्म का संगीत एस डी बर्मन साहब ने तैयार किया था, लेकिन कई ऐसी धुनें हैं जो पंचम दा ने उनके साथ बैठकर तैयार करवाई थी। चलो इस गाने को सुन।

आशा भोसले और किशोर दा की आवाज़ में चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। और दोस्तों हम बातें कर रहे थे अभी आर डी बर्मन साहब की, और अब बातें हम करते हैं एक बहुत ही ख़ास गाने की। गीतों में आज़ादी इन दिनों हम मना रहे हैं दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास गाने के बारे में आपको बताती हूँ आज। ये गाना 27 जनवरी 1963 को पहली बार गाया था लता मंगेशकर ने। इस गाने को पहले आशा भोसले गाने वाली थी, लेकिन कुछ पर्सनल वजह की वजह से, पर्सनल कारणों की वजह से उन्होंने मना कर दिया था। फिर ये गाना दिया गया लता मंगेशकर को और उन्होंने इसे ऐसा गाया कि ये पूरे देश का गाना बन गया। जो भी इसे सुनता भावुक हो जाता। ये गाना तैयार किया गया था युद्ध के शहीदों के लिए और इसे कवि प्रदीप ने लिखा था, सी रामचंद्र ने इसका संगीत दिया था और इस गाने की रॉयल्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध में शहीद हुए परिवार, जो हमारे सैनिक हैं उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए दिया गया था। आइए सुनते हैं इस गाने को।

तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम संगीत.com. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. फिर मिलते हैं आपसे, बने रहें आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: छात्र

0: आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: लोकसभा से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर 2:15 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल सदन की कार्यवाही जारी है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। 3 जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में श्री वीवी गिरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. assuring that

आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। आपके साथ आज के मन भावन कार्यक्रम में मैं हूं नईम अख्तर। और इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आप हमारे कार्यक्रम में कैसे शामिल हो सकते हैं, आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा पहले। जी हाँ, एक सवाल का जवाब। तो बताइए, एक सवाल मैं करूँ? करती हूँ। असल में सवाल करने के पीछे मकसद यह है कि देखिए, हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी वर्षगांठ आने ही वाली है अब से महज 4 दिन बाद, 5वें दिन 15 अगस्त को। और सभी जानते हैं कि 15 अगस्त जो है वो हमारे स्वतंत्रता की वो निशानी है जिसे हम साल दर साल मनाते आ रहे हैं। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1947 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि आज जो 2026 का साल चल रहा है, इस साल में जो 15 अगस्त अब से 5 दिन बाद, 4 दिन बाद 5वें दिन आने वाला है, उस 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2026 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस पड़ेगा? भारत के स्वतंत्रता दिवस का आप ये लिख करके भेजिए कौन सा स्वतंत्रता दिवस इस बार पड़ेगा, कौन सी वर्षगांठ हम मनाएंगे। आप हमें ये लिख के भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9868867535, यानी 9868867535 पर। तो आपके सवालों, हमारे सवाल के आपके जवाबों का हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ जवाब नहीं भेजना है, आप चाहें तो जवाब के साथ साथ अपनी पसंद का गीत भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी पसंद का गीत और आपका सही जवाब हम शामिल करेंगे अपने इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है मन भावन, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जब आज़ादी का जिक्र कर ही दिया है तो क्यों ना आज़ादी के जज्बे से लबरेज किसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:19 40 सेकंड हुए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्यक्रम मन भावन में आप शामिल हो सकते हैं अपने सिर्फ फरमाइशों के साथ नहीं बल्कि अपनी उन जवाबों के साथ भी जो सवाल हम पूछेंगे उसका जवाब आप हमको बताएंगे। अभी कुछ देर पहले हमने आपसे इस गीत से जस्ट पहले हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि ये बताइए कि इस साल हम आज़ादी की कौन सी सालगिरह मना रहे हैं और उसका जवाब आपको व्हाट्सएप करके भेजने के लिए कहा था। और हमारे साथ एक लिसनर अभी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि वो सही जवाब जानते हैं या नहीं। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं सुरेंद्र मोहन मित्तल हूँ, लॉयर हूँ और काफी अर्थ से जुड़ा हूँ AER से।
0: अरे वाह,
1: बहुत उम्दा प्रोग्राम आपका है ये, 80वां स्वतंत्रता दिवस रहेगा और सबको देशवासियों को मुबारक। हम सब अपना देश के प्रति कर्तव्य पूरा करें।
0: जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुन के जवाब भी भेजा और अपने जवाब को हमारे साथ साझा भी किया। तो आप ये बताइए कि आपने क्योंकि जवाब सही दिया है तो हम आपको ये मौका देते हैं कि आपकी पसंद का गीत हम आपके साथ साथ अपने सभी श्रोताओं को सुनवाएं। तो क्या अपनी पसंद का गीत बताएंगे आप हमें?
1: देखिए आप फिर सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, अगर मुमकिन हो तो सुनवा दें सबको।
0: अरे सरफरोशी की तमन्ना तो हर भारतीय के दिल में है, क्यों नहीं सुनवाएंगे।
1: अच्छा मौका।

0: है तो सुनवाइए
1: जी, ठीक है,
0: मेरी तरफ से शुभकामनाएं
1: जी। बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं, आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। और आपका गीत सुनवाने से जस्ट पहले हम अपने श्रोताओं से थोड़ा,
0: थैंक यू, धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ अभी फोन लाइन पर हमारे वो श्रोता जिन्होंने हमें सही जवाब दिया, जिनका नाम था राजेंद्र मित्तल जी, सुरेंद्र मित्तल जी। तो सुरेंद्र मित्तल जी का जवाब जिस तरह हमारे पास आया, उसी तरह आपका जवाब भी हमारे पास आ सकता है। आपको ये बताना है हमें कि हमारा जो ये तिरंगा झंडा है, जिसे हम सिर्फ अपने घरों पर, अपने दफ्तरों पर नहीं फहराते, बल्कि जो हमारे दिलों में लहराया जाता है हर वक्त 24 घंटे 12 महीने हम अपने दिलों में तिरंगा लिए घूमते हैं, उस तिरंगे को भारत में 15 अगस्त 1947 को पहली बार लहराने से पहले उसको कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा तिरंगे को अपनाने की तारीख आपको हमको बता रही है। और तारीख बताने का तरीका वही है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868868753 पर, यानी 9868868753। इस नंबर पर आप हमें अपना जवाब भेजिए और अपनी पसंद का गीत भी भेजिए। कोशिश करेंगे कि हम आपको भी आपकी आवाज़ के साथ, आपके जवाब के साथ इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। और अभी जैसा कि हमने वादा किया था अपने उन श्रोता से जिनका नाम है सुरेंद्र मित्तल, जिन्होंने हमें सही जवाब दिया, उनके पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए-ए-क़ातिल में है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री
2: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:25:59 कार्यक्रम मन भावन में आपकी पसंद के न सिर्फ गीत हम तक पहुंच रहे हैं, बल्कि

0: आपका जवाब भी हम तक पहुंच रहा है। एक सवाल हमने आपसे ये पूछा था कि ये बताइए कि हमारा जो तिरंगा है उस तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, और इसका जवाब हमने आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाया था। जवाब हम तक पहुंच चुका है और उस जवाब को देने वाले हमारे श्रोता भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू।
0: अरे वाह, क्या बात है। मतलब स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ आई नहीं और आपने अभी से हमें और हमारे साथियों को लड्डू खिलाने शुरू कर दिए।
1: हाँ जी।
0: चलिए दिलावर खान जी, अच्छा आप मुझे को ये बताइए कि हमने जो अभी सवाल पूछा था हमारे सभी श्रोताओं से, उसका जवाब बताएंगे कि संविधान सभा द्वारा तिरंगे को अपनाने की सही तारीख क्या है?
1: ये थी जी 22 जुलाई 1947 में जो संविधान सभा थी ना।
0: जी जी,
1: संविधान सभा ने ये तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका दिलावर खान जी, आपने बहुत
1: स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराया जाता है।
0: फहराया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है हमारे बाकी सभी श्रोताओं के लिए, लेकिन वो सवाल हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं उससे पहले आप ये बताइए कि आप मन भावन के माध्यम से आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मेरे को ना फिल्म का नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, गाना है बहुत वो देशभक्ति पे नहीं है, गाना है सैया झूठों का बड़ा सर ताज निकला।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, दो आंखें बारह हाथ फिल्म का गाना, वो
1: दो आंखें बारह हाथ मेरे दिमाग पे नहीं आ रही।
0: ये तो फिल्म ही पूरी देशभक्ति पर आधारित थी, मतलब जरूरी नहीं है कि स्वतंत्र
1: गाना जो मुझे ये ज्यादा दिल को छूता है।
0: बहुत खूबसूरत गाना है, इसका म्यूजिक बहुत ही जानदार कमाल का। जी वसंत जी,
1: पहले जो गलियों में जो वो लेते घूमती थी ना जो बच्चों के खिलौने,
0: जी हाँ,
1: आज हमारे के बिल्कुल मतलब म्यूट हो गए, हमारे तो दिखाई नहीं देते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने भी वो बहुत बजाते, शायद एक तारा बोलते थे या क्या बोलते थे उसको,
1: तारा नहीं वो गाड़ी सी होती थी दो पहिए की और उसमें ट्रेन वो
0: ट्रेन ट्रेन बोलते हुई जाती थी, हाँ आगे से वो पकड़ कर ये खींचती थी और पीछे ढप ढप ढप ढप ढोलक सी। जी जी,
1: वो जमाने चले गए,
0: लेकिन कोई बात नहीं, हम आज उस जमाने को एक बार आपके माध्यम से फिर से ताजा करने वाले हैं।
1: सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, जो समझी थी मैं वो तो चालबाज निकला।
0: कोई बात नहीं, थोड़े से लिरिक्स आगे पीछे हो गए लेकिन वाकई कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया, वसंत देसाई का ये म्यूजिक है, हम इस गीत को सुनवाते हैं और आपने जो हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है जी,
0: वालेकुम अस्सलाम। और श्रोताओ, जिस तरह से दिलावर खान ने अभी अपनी पसंद का गीत भी बताया और सही जवाब भी बताया कि संविधान सभा द्वारा तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को पहली बार अपनाया गया था और 1947 में 15 अगस्त को पहली बार आजाद भारत के रूप में उसको तिरंगे के रूप में लहराया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस तिरंगे को लहराया था, ये सही जवाब था। अब एक और जवाब आपसे हम पूछ लेते हैं, सवाल हम पूछ रहे हैं, जवाब आप बताएंगे, वो भी तिरंगे झंडे से, हमारे प्यारे तिरंगे झंडे से ही जुड़ा हुआ है। ये बताइए कि ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले अभी तो हमने कहा कि आज़ाद भारत यानी कि 15 अगस्त 1947 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लहराया था, लेकिन उनसे भी पहले ऐतिहासिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इस झंडे को लहराया था, क्या आप उसकी तारीख या उस जगह का नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868868753 यानी 9868868753 पर। आपके जवाब का और आपके पसंद के गीत का हमें है इंतज़ार, और आपको इंतज़ार होगा उस गीत का जो अभी दिलावर खान जी गुनगुना के गए हैं।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज 3:34:38 कार्यक्रम आप ही का अपना मन भावन। और आज तो आपके मन को कुछ ज्यादा ही भारा होगा क्योंकि आज सिर्फ आपकी पसंद के गीत नहीं है बल्कि आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट हो रही है। आपका आईक्यू लेवल देखा जा रहा है कि आपको कितनी चीजें याद हैं जो आपने स्कूल कॉलेज के जमाने में पढ़ी थी और अपने देश से आप कितनी मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, आपके लिए इस अनोखे तरीके को आपके साथ बांट रही हूँ मैं नईम अख्तर। कार्यक्रम मन भावन 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड। और सवाल हमारा जो था वो ये था कि ऐतिहासिक रूप से 15 अगस्त 1947 से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे पहली बार कब और कहां फहराया था। और आपकी पसंद के गीत को हम तक पहुंचाने के लिए आपने हमें मैसेज तो किए, जवाब भी आपके हमारे पास आए। एक श्रोता भी हमारे साथ हैं जिन्होंने सही जवाब हमें लिख भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो पहले उनसे बात करते हैं और उन्हीं की जबान से सुनते हैं इस सवाल का सही जवाब। हेलो
1: हेलो, नमस्ते नईम जी, मैं अनिल मोहन पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से बोल रहा हूँ।
0: जी अनिल मोहन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, लेकिन आपने व्हाट्सएप पर सिर्फ अपना नाम तो लिख कर नहीं भेजा था, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी आपके घर वालों के साथ।
1: चलिए चलिए, और आप कैसे हैं? एफएम गोल्ड का मैं नियमित श्रोता हूँ, बहुत समय से आपको सुन रहा हूँ।
0: जी आपका बहुत शुक्रिया,
1: बहुत पसंद है।

0: जैसे हमको गिफ्ट कार्यक्रम
1: आप ही की वजह से तो हम लोग यहाँ आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं 24 घंटे 12 महीने। खैर आपने अपने घर वालों के नाम नहीं लिया, हम बता देते हैं, अनिल मोहन के साथ आपने अपने नाम के साथ आपने लिख के भेजा था, उषा मोहन, टिल्लू और मधु का भी नाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए अब सही जवाब बता दीजिए हमें कि सही जवाब क्या है जो आपने हमें लिख के भेजा। हेलो
0: हेलो
1: जी जवाब बताइएगा। हेलो हेलो
0: जवाब है नईम जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजादी मिलने से पहले 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कहीं और भी फहराया था नेताजी ने ये झंडा आजादी से पहले?
0: ये अप्रैल में फहराया था, ये जगह का नाम मेरे अभी कहीं से निकल गया।
1: कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
0: अभी आ रहा था, मैं कह रहा था कि कई बार क्या होता है कि जुबा पे आते आते शब्द रुक जाते हैं।
1: बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो पहला जवाब बताया वो बिल्कुल सही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को ये झंडा लहराया था और उनकी आजाद हिंद फौज ने 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर में ये झंडा लहराया था। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब अपनी पसंद का गीत भी बता दीजिए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: इस समय मेरे जहन में आ रहा है गीत किशोर कुमार ने गाया इस गीत को फिल्म आसुमन से, देखो वीर जवानों अपने फोन पे इल्जाम ना है।
1: क्या बात है, मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारी सारी श्रोतागण, हमारी सारी जनता इस गीत को सुने और उस एहसास को अपने अंदर महसूस करे जो हमारे देश के वीर जवानों के दिलों में हर वक्त हमारे देश के लिए रहते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नेम जी आपसे बात करने
1: जी,
0: के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नील मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद का गीत अभी हम सुनवाते हैं आपको और बाकी सभी श्रोताओं से वही कहेंगे कि आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी पसंद का गीत और हमारे सवाल का जवाब। फोन नंबर है 9868, ये फोन नंबर नहीं व्हाट्सएप नंबर है, 9868686853 यानी 9868686853। अब आप कह रहे होंगे नईम ने नंबर तो बता दिया, ये भी कह दिया कि अपनी पसंद का गीत हमें बताओ, सवाल नहीं पूछा, इस बार सवाल पूछ लेते हैं, ऐसी क्या बात है। देखिए हमने आपको आपसे ये बात शेयर की कि आज़ादी, भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहली बार किन्होंने झंडा लहराया, आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने कहाँ झंडा फहराया, अब हमारी उस जगह का नाम भारत से निकल कर ही कहीं और चलते हैं, हम बात कर रहे हैं भारत के अलावा विदेशों की। तो ये बताइए कि हमारे देश की वो कौन देशभक्त महिला थी जिन्होंने सबसे पहले, चलिए नाम हम बता देते हैं, वो उनका नाम था भीकाजी कामा। तो भीकाजी कामा ने विदेश में सबसे पहले भारतीय ध्वज कब और कहाँ फहराया था, जानते हैं आप? जानते हैं तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, व्हाट्सएप कीजिए हमें और व्हाट्सएप करके हमारे पास अपना जवाब भी भेजिए, अपनी पसंद का गीत भी भेजिए और अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपसे बात भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम सुन लेते हैं वो गीत जो अनिल मोहन जी ने अभी अभी बताया, आक्रमण फिल्म का, जो फिल्म 1975 में प्रदर्शित हुई थी।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:46:53 कार्यक्रम मन भावन। मन भावन में आप और हम साथ साथ कुछ सवाल जवाबों और कुछ गीतों के माध्यम से आपसे एक सवाल हमने पूछा था कि विदेश में सबसे पहले आजाद, हमारे भारत के आजाद होने से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले विदेश में कौन महिला थी, वो देशभक्त महिला जिनका नाम आज भी हमारे भारत के इतिहास में नहीं बल्कि दिल्ली में भी शामिल है। और फिर वो जवाब हमने खुद ही दे दिया था, मैडम भीखा जी कामा। पर हमारा सवाल आपसे ये था कि ये भीखा जी कामा जो थी, इन्होंने विदेश में सबसे पहले कौन सी तारीख को और कौन सी जगह पे भारतीय ध्वज, तिरंगा झंडा फहराया था। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच चुका है और जिन्होंने ये जवाब हमें भेजा है, हम उन्हीं की जबान से इसका जवाब सुनने की कोशिश करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम स्नेहा है।
0: जी आप स्नेहा हैं। जी स्नेहा, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: नहीं, दिल्ली तो ठीक है, समझ में आता है हमें, पर दिल्ली भी तो अपने आप में बहुत बड़ी है ना। दिल्ली में
1: किस जगह?
0: जी
1: भजनपुरा की तरफ से, यमुना विहार पिंक लाइन।
0: अच्छा अच्छा, यमुना विहार भजनपुरा की तरफ से आप बोल रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: अच्छा, वैसे मेरा एरिया जोधपुर में लगता है।
0: अच्छा, चलिए खुशी हुई जानकर के कि हमारे हर तरफ दिल्ली में श्रोता मौजूद हैं। वैसे तो आप खैर ऐप के माध्यम से, आकाशवाणी के ऐप के माध्यम से सारी दुनिया में हमारे कार्यक्रमों को सुना जाता है, लेकिन
1: मैम मेरे नाना तो बहुत सुनते हैं।
0: अच्छा,
1: मैं भी बहुत सुनती हूँ। मेरे यहाँ मतलब लगभग पूरे दिन थोड़े बहुत देर न्यूज चलते हैं, तो पूरे दिन ऐसा।
0: क्या बात है, आप जैसे श्रोताओं की ही वजह से तो आज तक हम इतने बरसों से एफएम गोल्ड से जुड़े हैं, क्योंकि हमें पता है इतने प्यारे श्रोता और कहीं नहीं मिल सकते हमें। खैर, हमने आपसे पूछा ये था कि ये बताइए कि भीखा जी कामा ने विदेश में। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको?
1: हाँ जी मैम।
0: जी सवाल जो पूछा था हमने, भीखा जी कामा जी ने सबसे पहले विदेश में भारतीय झंडा, तिरंगा झंडा कब और कहाँ फहराया था, जवाब दीजिए।
1: मैम 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में।
0: क्या बात है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपके जवाब से हम मुतासिर हुए। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहेंगी?
1: हाँ जी मैम, पूरा वो पश्चिम फिल्म का गाना है, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
0: क्या बात है, आपने भारत का रहने वाला हूँ का हक अदा कर दिया, आपने सही जवाब भी बताया। और सबसे बड़ी बात ये कि आपसे बात करना हम खत्म करें, आपको बाय बाय कहें उससे पहले
1: हम,
0: नहीं नहीं हाँ एक सेकंड, हमारा संदेश सुन लीजिए। अपने नाना जी को भी हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीजिएगा और हाँ एफएम गोल्ड से जुड़ने के लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्नेहा। तो दोस्तों ये थी स्नेहा, आप भी हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं हमारे सवालों का जवाब देकर और अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाकर। बस तरीका वही है, आप कीजिए हमारे सवाल का जवाब हमें व्हाट्सएप। और क्योंकि आज़ादी की बात चल रही है, तो भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमें पूरी तरह से मिली थी, पूरी तरह से इसको मिलने से पहले यूँ तो नहीं हुआ होगा ना, कोई भी समझ सकता है कि अचानक से जाकर के भारतीयों ने ब्रिटिश से कहा कि भाई हमें आजादी दे दो, उन्होंने कहा लो जी आजादी, और उस दिन 15 अगस्त 1947 था। ना ना, ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ कानूनी लिखत पढ़त से हुआ था। तो ये आज़ादी हासिल करने से पहले एक लंबी कानूनी लड़ाई चली थी और उसके लिए एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी ब्रिटिश सरकार को, उस वक्त की ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया था। ये जो अधिनियम था ये 1947 में पेश किया गया था। तो आपको बताना यह है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश शाही सरकार से स्वीकृति कब मिली थी, जिस पर आधारित 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, भारतीय स्वतंत्र

अधिनियम 1947 को ब्रिटिश स्वीकृति कब मिली थी, ये आपको हमें बताना है 9868868753 पर मैसेज भेजकर। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और साथ ही अपनी पसंद का गीत भी लिखना मत भूलिए। और जहां तक बात रही स्नेहा की पसंद के गीत का और उनके नाना जी की पसंद के गीत का, तो चलिए उनकी दिल के एहसास के साथ अपनी एहसास को हम मिलाते हैं और इस गीत के सुर के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए अपने आप को पूरी तरह से भारतीयता के रंग में रंग लेते हैं।

जी, आपका हमारे पास जवाब तो बहुत सारे आए, और उन बहुत सारे जवाबों में हमारे पास जो सही जवाब आए उनको दो श्रोताओं को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक की बात है एक श्रोता का तो हमारे पास नंबर ही नहीं लगा, उनको बहुत कोशिश की हमने, और दूसरे श्रोता का फ़ोन ऑन एयर जाते के साथ ही कट गया। तो अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम आपको उनका दोबारा फ़ोन मिला करके उनसे बात करवाने की कोशिश करें, लेकिन बस जल्दी से जवाब बता देते हैं। जवाब यह है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार की अनुमति मिली थी, और इसके लिए जो हमारे पास सही जवाब आए उन सही जवाबों में हमें जो पहला जवाब लिख करके भेजा था वो मधु बेगम, इनका फोन नंबर लगा ही नहीं हमारे पास। इन्होंने सूरत न जाने कहां से, नहीं इन्होंने जगह का नाम लिखकर नहीं भेजा है, इन्होंने कहीं से हमारे पास लिख करके भेजा था। और एक और हमारे पास मैसेज आया था, ये हैं अनु बड़जात्या, इन्होंने मुंबई से हमारे पास मैसेज भेजा था। दोनों का जवाब बिल्कुल सही था, और हमने इनसे गीत भी पूछ लिए थे इनकी पसंद के। तो चलिए हम इस गीत के साथ जो अनु की पसंद का गीत है हम कार्यक्रम को तमाम करते हैं, और अभी नईम आपसे इजाजत चाहती है। सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य

0: की मांग की।
1: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: लोकसभा से अधिग्रहण सुधार विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिग्रहण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल राज्य का नाम बदलने के लिए केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर 2:15 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल सदन की कार्यवाही जारी है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आज से 4 दिन की मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत द्वारा मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। यात्रा के दौरान वे मॉरिशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे और समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण और सैन्य सहयोग जैसे पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करेंगे। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस सुरीले सफर को और आगे बढ़ाने के लिए मैं हूं नईम अख्तर, आपके लिए लेकर कुछ और फिल्मी नगमे। तो चलिए आगाज करते हैं सोने जैसे इस चैनल

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: तो ये था आपका फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप और हम सुन रहे थे कुछ फिल्म संगीत। और अब वक्त हुआ है कि नईम फिल्म संगीत से अभी आपसे इजाज़त ले। आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM गोल्ड। अब से चंद ही पलों में होंगे रोजगार समाचार यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।
3: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
4: Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal, Ministry of Education, Government of India invites applications for the post of a director, IISER Bhopal. The position carries a fixed pay scale of 2,25,000 per month. The director, being the principal academic and administrative head of the institute, should have a strong background in teaching, research, administration, research guidance and PhD level and proven leadership abilities. The appointment will be on contractual tenure of 5 years or until attaining the age of 70, whichever it is earlier. Eligible candidates may apply online through the NITSER Council website. The last date for applications is 23/8/2026. Detailed advertisement and further information is available on the website, that is at www.nitcouncil.org.in, or you could also go on to www.dst.gov.in. National Institute of Sowa Rigpa, NISR Leh, Ministry of Ayush, Government of India, invites applications in the prescribed format from eligible candidates for appointment to various Group A and Group B posts on direct recruitment, deputation or short-term contract basis. The vacancies include Assistant Professor Grade 2, Sowa Rigpa, Medical Specialist, Modern Medicine, Pathologist, Medical Officer, Sowa Rigpa, Hospital Superintendent, Administrative Cum Accounts Officer, Research Officer, Sowa Rigpa, Research Assistant and Private Secretary at different pay levels ranging from pay level 5 to pay level 10. Detailed vacancy information, eligibility criteria, general instructions and application forms available on the website. Kindly apply within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up the website at www.sowarigpainstitute.in. I repeat, it is www.sowarigpainstitute.in. Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush, Government of India, invites applications for the post of an administrative cum accounts officer on deputation or short-term contract basis. The post carries pay level 10 as per the 7th CPC. Eligible Indian citizens meeting the prescribed qualifications and experience criteria may apply. Detailed eligibility requirements, terms and conditions and the prescribed application format is available on the CCRYN website. Kindly apply within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up the website at www.naturopathy.in. The Income Tax Appellate Tribunal, ITAT, Ministry of Law and Justice, Government of India, has invited online applications from Indian citizens for filling up vacancies for Senior Private Secretary and Private Secretary, Group B, gazetted in various ITAT benches across India. The vacancies include 22 posts of Senior Private Secretary and 20 posts of Private Secretary. The posts carry pay level 8 for Senior Private Secretary and pay level 7 for Private Secretary. Candidates must possess a degree from a recognized university, speed of 120 words per minute in English shorthand and working knowledge of computers including MS Office, Excel and related software. The maximum age limit is 35 years with relaxations as per government rules. Selection will be through written examination, skill test and personnel interview. For details, kindly look up the website at www.itat.gov.in. I repeat, it is www.itat.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
5: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय पैकेजिंग संस्थान दिल्ली में अस्थाई और संविदागत रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं प्रोफेसर प्रौद्योगिकी एमेरिटस एक पद, प्रोफेसर प्रबंधन एक पद, सह प्रोफेसर प्रबंधन एक पद, सहायक प्रोफेसर प्रबंधन तीन पद, सह प्रोफेसर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पैकेजिंग एक पद, सहायक प्रोफेसर AI एक पद, सहायक प्रोफेसर एक पद, सहायक प्रोफेसर पैकेजिंग डिजाइन एक पद, सहायक प्रोफेसर प्रिंटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन एक पद, लेक्चरर कम्युनिकेशन स्किल एक पद, अकादमिक काउंसलर एक पद, युवा वृत्तिक प्रशासन दो पद, युवा वृत्तिक इंस्ट्रूमेंटेशन दो पद, युवा वृत्तिक लाइब्रेरी एक पद, प्रयोगशाला परिचर दो पद और पैकेजिंग डिजाइनर दो पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान की वेबसाइट www.iip-in.com। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तकनीकी एक रिक्ति, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तकनीकी एक रिक्ति। वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा, दिनांक रहेगा 27 अगस्त 2026 और समय रहेगा सवेरे 9 बजे। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना और आवेदन पत्र रेलटेल की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.railtel.in/careers। वेबसाइट पर जाकर आप करंट जॉब ओपनिंग सेक्शन के अंतर्गत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

0: भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को आवश्यकता है प्रशासनिक अधिकारी, उपनिदेशक, लेखा सहायक, आशु लिपिक ग्रेड टू और प्रवर श्रेणी लिपिक की। आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप, पात्रता की विस्तृत शर्तें और ऑनलाइन आवेदन आदि के लिए देखिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.icssr.org। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल को आवश्यकता है प्रधान वैज्ञानिकी तकनीकी अधिकारी, प्रधान छात्र गतिविधि और खेलकूद अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा सहायक पंजीयक की। विस्तृत विज्ञापन, योग्यताएं, अनुभव, वेतन आदि की जानकारी उपलब्ध है वेबसाइट पर, जिसका पता है nitw.ac.in/staff-recruit। आवेदन ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 19 अगस्त 2026। राष्ट्रीय बाल भवन में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने संबंधी सूचना। राष्ट्रीय बाल भवन में वेतन स्तर 7 में सहायक लेखा अधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए भरने संबंधी एक विज्ञापन 2 मई 2026 को रोजगार समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया था। इन पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तय की गई थी 30 जून 2026, लेकिन इसे अब 30 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये 30 दिन अतिरिक्त गिने जाएंगे इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के। रोजगार समाचार पत्र जो 8 से 14 अगस्त 2026 का है, उससे 30 दिनों के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड को आवश्यकता है एक मुख्य मानव संसाधन अधिकारी की। तैनाती का स्थान दिल्ली रहेगा, रिक्ति संख्या है 1, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.aiesl.in तथा www.aiahl.in। समेकित मासिक वेतन रहेगा 1,65,000 रुपए। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेशमा तिवारी। हेलो रेशमा।
4: हेलो जया, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज। आई एम रेशमा तिवारी एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट जया भारती। वी बिगिन विथ द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
3: जी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें।
4: 4 bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals.
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च।
4: हर घर तिरंगा मूवमेंट गेन्स मोमेंटम एज तिरंगा रैलीज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द नेशन।
3: पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट।
4: एंड वर्ल्ड लायन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया स्क्रिप्टेड सक्सेसफुल कंजर्वेशन जर्नी फ्रॉम 523 लायंस टू 891 इन लास्ट 10 ईयर्स। And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about World Biofuel Day and World Lion Day. World Biofuel Day has been observed in India since 2015 by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The day also commemorates an important moment in energy history when Rudolf Diesel successfully demonstrated an engine running on peanut oil in 1893.
3: बिल्कुल, और बायोफ्यूल ऐसे रिन्यूएबल फ्यूल हैं जो बायोमास से बनते हैं, जैसे कि पौधे, खेती से बचा हुआ कचरा, पशुओं के वेस्ट, शैवाल और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल। ये कई तरह के होते हैं। इनमें बायो इथेनॉल शामिल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाया जा सकता है। बायो डीजल भी होता है जिसे वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी और इस्तेमाल किए हुए कुकिंग ऑयल से बनाया जा सकता है। और फिर बायो सीएनजी है जिसे मवेशियों के गोबर, खाने के वेस्ट, सीवेज और खेती से निकले कचरे जैसे सोर्स से बनाया जाता है।
4: एंड दिस इज वेयर इंडियाज स्टोरी बिकम्स पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, बिकॉज फॉर अ कंट्री एज लार्ज एंड डाइवर्स as India, energy is not merely about switching on a light or filling up a vehicle. It is also about energy security.
3: और भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए हम नवीकरणीय स्रोतों से देश में जितनी ज्यादा ऊर्जा सृजित कर सकेंगे, आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता उतनी ही कम हो सकेगी।
4: India has been taking several steps in this direction. The National Policy on Biofuels has set targets including 20% ethanol blending in petrol and 5% biodiesel blending by 2030. The ethanol blending program has encouraged the use of ethanol with petrol.
3: और इसके बाद PMG1 योजना है जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, और एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया आता है, गोबर धन। हाँ, इसके नाम से ही इसका मकसद पता चलता है कि इस योजना का मकसद, यानी कि इस योजना का उद्देश्य मवेशियों के गोबर और खेती से निकलने वाले कचरे को बायोगैस और बायो सीएनजी जैसी उपयोगी प्रोडक्ट्स में बदलना है।
4: That is the circular economy in a very Indian, very practical form. And there is another initiative that may make you look at your kitchen waste differently. It is called RUCO, Repurpose Used Cooking Oil. The idea is to collect used cooking oil and convert it into biodiesel.
3: बिल्कुल, तो श्रोताओं, समोसे, पकौड़े या पूरियां तलने के बाद बचे तेल को फेंकना जरूरी नहीं है। इसे ईंधन के तौर पर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक और बात है जो भारत के बायोफ्यूल सफर को दिलचस्प बनाती है। इस कहानी में हमारे किसान सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, वे एनर्जी इकोनॉमी में पार्टनर बन सकते हैं।
4: एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज एंड अदर नॉन फूड बायोमास कैन क्रिएट एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज, एंड व्हेन एग्रीकल्चरल वेस्ट गेट्स अ प्रोडक्टिव यूज, इट कैन ऑल्सो हेल्प एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रेसिड्यू बर्निंग।
3: और बायोफ्यूल पर आमतौर पर पीढ़ियों के आधार पर चर्चा की जाती है ना रेशमा? जैसे पहली पीढ़ी के बायोफ्यूल गन्ने, मक्के और वनस्पति तेल जैसी खाद्य फसलों से बनाए जाते हैं।
4: यस, एंड सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स मूव टुवर्ड्स नॉन फूड बायोमास, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, फॉरेस्ट वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर मटेरियल्स।
3: इसके बाद तीसरी पीढ़ी के बायोफ्यूल आते हैं, खासकर वे जो शैवाल से बनाए जाते हैं, और चौथी पीढ़ी की तकनीकें इस सोच को और आगे कर जाती है जिसमें उत्पादन को ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए एडवांस्ड तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
4: बट बायोफ्यूल्स आर नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन विदाउट चैलेंजेस। देयर आर क्वेश्चंस अबाउट वाटर कंजम्पशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फीडस्टॉक, प्रोडक्शन कॉस्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल कंपैटिबिलिटी एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग एथेनॉल फ्रॉम शुगर कैन रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर।
3: और इसलिए जैसे जैसे भारत साफ सुथरे ईंधन की ओर बढ़ रहा है, चुनौती सिर्फ ज्यादा बायोफ्यूल बनाने की नहीं है, असली चुनौती इसे कुशलता से, टिकाऊ तरीके से और जिम्मेदारी के साथ बनाना है, क्योंकि विकास

0: और टिकाऊपन दो अलग अलग बातें नहीं हो सकती, उन्हें साथ साथ चलना होगा।
1: And World Biofuel Day asks us to rethink something we use every single day, that is fuel. Where does it come from? How much do we import? What does it cost our environment? And can we build a cleaner, more self-reliant energy future using resources that India already has?
0: और इसका जवाब है कि किसी एक ईंधन, एक टेक्नोलॉजी या सरकार की किसी एक योजना से नहीं मिलेगा। यह इनोवेशन किसानों, वैज्ञानिकों, इंडस्ट्रीज, पॉलिसी बनाने वालों और हाँ, हम सभी उपभोक्ताओं से मिलेगा। और यही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की भावना है।
1: एंड जया, टुडे इज आल्सो द वर्ल्ड लायन डे। We are observing that too, and there is some encouraging news from India's conservation story. Union Environment Minister Bhupendra Yadav has highlighted that India's Asiatic lion population has increased from 523 in 2015 to 891 in 2025, a significant achievement in wildlife conservation.
0: बिल्कुल रेशमा, अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि शेरों के रहने की जगह और उनका दायरा बढ़ रहा है। यह दायरा 2020 में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर था, जो अब बढ़कर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है, और इसमें 11 जिले शामिल हैं।
1: The minister credited this progress to the efforts of forest officials, conservationists, local communities and everyone involved in protecting the species.
0: तो संदेश स्पष्ट है कि भारत का अनुभव दिखाता है कि विकास और प्रकृति संरक्षण साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं।
1: On World Lion Day, the focus is on carrying this conservation success forward and ensuring that the Asiatic lion continues to thrive for generations to come.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
1: या एंड वी विल फर्स्ट गो टू लद्दाख। चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख इज विटनेसिंग द वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ इट्स रिच नोमैडिक हेरिटेज विद अ ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट थ्रू द एनुअल टूरिस्ट प्रमोशनल इवेंट। चांगथांग नोमैडिक फेस्टिवल इज एनुअल इवेंट ऑफ लद्दाख एंड इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड सिंस 2021 टू प्रमोट टूरिज्म अक्रॉस लद्दाख। अ रिपोर्ट।

0: करोड़ों भारतीयों में आजादी का जोश भरने वाले इस अमर झंडा गीत को लिखने वाले श्यामलाल गुप्त जी की आज पुण्यतिथि है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के नरवल गांव में जन्मे पार्षद जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। प्रकृति ने उन्हें कविता करने की क्षमता सहज रूप से प्रदान की थी। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने यह कविता लिखी थी, परोपकारी पुरुष मुहिम में पावन पद पाते देखे, उनके सुंदर नाम स्वर्ण से सदा लिखे जाते देखे। वे केवल एक कवि या संगीतकार नहीं थे बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आजादी के बाद भी पार्षद जी ने किसी पद या प्रतिष्ठा की लालसा नहीं की, वे बेहद सादगी से जिए। साल 1973 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: And now we'll remember Khemchand Prakash. He was a music composer in the Hindi film industry. He had few peers in 1940s, the decade for Indian film music, which started with K.L. Sehgal, very active on the scene, and ended with Lata Mangeshkar, firmly established in the industry. Lata had fruitful association with him in films Asha, Ziddi and Mehel when she started making a name for herself.
0: Aaj Punitithi hai Bharatiya Cinema.

की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी की। आज से करीब 90 साल पहले जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना भी गुनाह माना जाता था, तब एक सरस्वती देवी जी ने पूरे देश को अपनी धुनों पर नचाया। साल 1912 में मुंबई के एक सम्राट पारसी परिवार में जन्मी इस बेटी का असली नाम खुर्शीद मीनू खर होमजी था।

0: जो गाना अभी आपने सुना उसे भारतीय सिनेमा का पहला ब्लॉकबस्टर गीत माना जाता था। फिल्म थी अछूत कन्या। इस गाने की धुन सरस्वती देवी ने ही तैयार की थी। उन्होंने अशोक कुमार और देविका रानी जैसे कलाकारों को, जो पेशेवर गायक नहीं थे, हफ्तों रिहर्सल कराया और अमर गायक बना दिया।
1: एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू बर्थ एनिवर्सरीज। टुडे इज Prem Adib's birth anniversary. He was an actor. He was acclaimed as one of the top Bollywood actors of the 1940s, along with the likes of Pahari Sanyal, Ashok Kumar, P.C. Barua, and Master Vinayak.
0: बिल्कुल, और भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग के प्रसिद्ध अभिनेता अगर हम कहें तो प्रेम अदीब थे। वे एक संभ्रांत कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखते थे। चेहरे पर गजब का आकर्षण और आवाज में कमाल का ठहराव था। अभिनय का शौक उन्हें 1930 के दशक में माया नगरी बॉम्बे ले आया। और प्रेम अदीब को 1940 के दशक में आई प्रकाश पिक्चर्स की कालजयी फिल्म राम राज्य में भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है।

प्रेम अदीब ने राम के किरदार को इतनी शिद्दत और पवित्रता से जिया कि लोग सिनेमा हॉल के बाहर अपनी चप्पलें उतार कर अंदर जाते थे। अदीब और शोभना समर्थ की जोड़ी वाले कैलेंडर और पोस्टर घर घर में मंदिरों की शोभा बन गए। ऐसा नहीं था कि प्रेम अदीब सिर्फ धार्मिक भूमिकाओं तक ही सीमित रहे। उन्होंने भरत मिलाप, रामबाण जैसी पौराणिक फिल्मों के साथ साथ अंगूठी, अनोखी अदा और दर्शन जैसी सामाजिक और रोमांटिक फिल्में भी की और अपने अदाकारी का लोहा मनवाया। उन्होंने बाद में फिल्में भी प्रोड्यूस की, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था और सिनेमा के ये चमकते सितारे महज 42 साल में इस दुनिया को अलविदा कह गए। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। परिक्रमा का यह अंक आज हम यही समाप्त करते हैं। अनुमति दीजिए जया भारती और रेशमा तिवारी को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने बैंक कार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंक कार बही से संबंधित साक्ष्यों के लिए एक कानून बनाने और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंक कार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे सुधारों के अंतर्गत लाया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि नागरिकों को तथ्यों को जानने का अधिकार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण ये अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news, read by Nishit Kumar. Parliament has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill, which aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with the contemporary digital banking practices. The bill also has a provision that an electronic or digital record of the banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Meanwhile, the Rajya Sabha has taken up the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 for consideration and return. The bill seeks to amend the Payment and Settlements Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill. Earlier, Upper House witnessed multiple adjournments following uproar by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET matter. The Lok Sabha has passed the Tribunals Reforms Bill 2026. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. When the House reassembled after the second adjournment at 2 p.m., Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill amid ruckus by the opposition members. Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal

स्टूडियो से तो मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लग रहा है कि बाहर शायद बहुत अच्छी वाली या तो बारिश पड़ रही है या बारिश नहीं है तो रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं। लेकिन अभी भी हमें पता चला है, हमारे कुछ खबरी जो दिल्ली भर में घूम रहे हैं उनमें से कुछ ने बताया है कि कहीं बारिश हो रही है और कहीं पर बारिश नहीं हो रही, पर मौसम जो है वो बड़ा सुहावना बना हुआ है। कुछ ने बताया है कि बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी से छुटकारा नहीं है, बहुत ह्यूमिडिटी है और गर्मी अब भी बरकरार है। तो ये मौसम जो है ना, बड़ा अजीब सा मौसम है और इस मौसम का ही मज़ा लेने के लिए हम आज गाते गुनगुनाते कुछ ऐसे गीतों को लाएंगे जो आप और हम दोनों मिलके गाएंगे भी, गुनगुनाएंगे भी, मौसम का भी मज़ा लेंगे और

आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़े भी रहेंगे। 5:11:52 हुए हैं और ये वक्त है गाते गुनगुनाते कार्यक्रम का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूँ नईम अख्तर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम लाएंगे कुछ ऐसे गीत जो मौसम का मज़ा आपको और हमको देंगे, तो मौसम के इस लुत्फ को उठाने के लिए आइए

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड पर मजा लीजिए उस कार्यक्रम का भी जिसका भी अभी आपने जिक्र सुना, हेलो फार्मर्स। लेकिन अभी हमारे पास कुछ वक्त बाकी है उन गीतों के लिए जो 80 और 90 के दशक के कुछ मौसम से जुड़े हुए गीत हैं। तो 80 और 90 के दशक के इन मौसम से जुड़े हुए गीतों को आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। आप सुनते रहिए, मौसम का मजा लेते रहिए। 1993 की फिल्म अनाड़ी का एक गीत आपके लिए है जो पिक्चराइज्ड तो है ही करिश्मा कपूर पर, लेकिन ज़्यादा इसकी म्यूज़िक में मज़ा है। पंछियों की चहचहाहट से जो शुरू होता है तो मौसम का मजा दुगुना हो जाता है।

जी, मौसम का तकाजा तो ये भी है कि सिर्फ मौसम को देखिए मत, बारिश का मजा मत लीजिए, साथ में चाय भी पीजिए और गर्मा गर्म पकौड़े भी खाइए। चलिए आप गर्म गर्म पकौड़ों का और गर्मा गर्म चाय का मजा लीजिए, लेकिन साथ ही वक्त का भी एक तकाजा है जो कह रहा है कि नईम जाओ, अभी और भी कार्यक्रम है। आरती आ चुकी है स्टूडियो में जो आपके लिए लेकर आई है हेलो फार्मर्स। तो अभी नईम अख्तर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: हेलो फार्मर्स, जी हाँ, आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ शुरू हुआ आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फार्मर्स। जी हाँ बिल्कुल, देखिए पसंदीदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ और हमें पता चल गया आपके संदेशों के माध्यम से कि कितना आपने इसको पसंद किया है।
2: हाँ बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और आज जो हम जिक्र करेंगे वो करेंगे सतत कृषि विकास के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर RS बाना जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और हम जानते हैं आरती के जो हमारी ज़मीन है, किसान है, उनको जब वो फसल उगाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी उसको लगातार मिलता रहे। फसल को बिना पानी के जीवन मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। जिस तरह से हमें पानी की ज़रूरत होती है उसी तरह से हमारी फसलें भी बिना पानी के नहीं चल सकती। और अब लगातार हम देखते हैं कि वर्षा का वितरण अनियंत्रित है, कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि जब हम ज़मीन में पानी का इस्तेमाल करें वो किफ़ायत से करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी मिलता रहे। अब बात ये नहीं है कि हम पानी कहाँ से लाएंगे फसलों के लिए, बल्कि ज़रूरी है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी मिले।
1: और इस

0: लिए जरूरी है कि हम पानी का संरक्षण करें।
1: बिल्कुल ठीक निरंकार आपने, और देखिए किस तरह से पानी का बचाव करना है, लेकिन कि हम सभी जानते हैं कि बचाव करना बहुत जरूरी है, जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या तकनीक होनी चाहिए, क्या क्या विधियां होनी चाहिए, ये हमें कोई विशेषज्ञ ही बता सकता है। और जैसे कि आपको बता चुके हम, डॉक्टर आर एस बानर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आज हमको बताने वाले हैं कि किस तरह से कृषि विकास के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता है और किस तरह से हम कर सकते हैं। और साथियों फोन इन कार्यक्रम है ये, इसमें जुड़ सकते हैं आप सीधे, तो कॉल करें हमें और जानें डॉक्टर आर एस बानर्जी से कि क्या कुछ आप कर सकते हैं अगर जल संरक्षण करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारे कुछ आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप फोन नंबर नोट करें, हमारे फोन नंबर हैं 011 दिल्ली का एसटीडी कोड, इसके बाद आप डायल करें 2342 1081। एक बार फिर से नंबर दोहरा देती हूँ 2342 1081। और एक और फ़ोन नंबर आपके लिए हमने आज लाइन रखी है 2342 1083। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और सीधे जुड़ सकते हैं। और डॉक्टर साहब जब तक हमारे कॉलर्स के कॉल आना शुरू होते हैं और वो हमसे पूछताछ करना शुरू करते हैं या जानना शुरू करते हैं कि किस तरह से वो जल संरक्षण कर सकते हैं, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं, हम अहमियत सब जानते हैं कि किस तरह से जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, किसानों के हित से देखें, तो किस लिए जल संरक्षण का महत्व क्या हो जाता है, कितना बढ़ जाता है?
2: जी देखो, हमने खूब सुना है कि जल ही जीवन है
1: जी।
2: और खेती की बात करें तो जल ही कृषि का आधार है, जल के बिना बिन पानी सब सून वाली बात हो जाती है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारतीय कृषि के योजनागत विकास के बावजूद अब भी लगभग 44-45 कृषि क्षेत्र ऐसा है 45% के करीब जिसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, असिंचित या बारानी खेती की जाती है। साथ ही जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध भी है वहां पर भी सीमित हैं, सभी जितना पानी चाहिए उतना आवश्यक नहीं है कि हो। और जो हमारा सबसे सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करें, पंजाब की, हरियाणा की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो इन क्षेत्रों में भी भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। एक मोटे अनुमान के तौर पर इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग 1 फीट से लेकर 1 मीटर तक भी भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है और इस पर एक राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक है। और इसमें कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसान ही जल संरक्षण करे, हर नागरिक और हर सरकार और हम सब लोग मिलकर यदि साथ में जुड़ेंगे तब ही सही मायने में हम जल संरक्षण कर पाएंगे। अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है और जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के दौर में हमने ज़्यादातर ये देखा कि जो बरसात होती है वो एकदम भारी बरसात हो जाती है, फिर कई दिनों तक लगातार सूखा पड़ा रहता है, बरसात नहीं हो रही है। बहुत सारे क्षेत्र इस वर्ष विशेषकर जब अलनिनो वर्ष बोला जाता है जिसमें बरसात अनियमित होने की संभावना और बढ़ जाती है और कम रहने की संभावना, जैसे कि मौसम के पूर्वानुमान भारत मौसम विभाग जारी कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में जल संरक्षण का महत्व और बढ़ जाता है, ताकि जो हमारी इतनी 140 करोड़ की आबादी है उसको अनिश्चित काल तक हम सुचारू रूप से खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकें। और उसके लिए जरूरी है जल का जो हमारे संसाधन है उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें। लगभग 64% के आसपास ऐसा क्षेत्र है हमारे सिंचित क्षेत्रों में जिसमें भूजल से सिंचाई का उपयोग होता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस बात पर भी चर्चा चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि भूमि का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, इसके कारण क्या हैं, ताकि हम समझ सकें कि उस पर अगर हम चेक करेंगे तो वो कम हो पाएगा।
2: जी, इसके प्रमुख कारणों की अगर बात कर रहे हैं तो हालांकि हम इस साल दुनिया में सबसे बड़े चावल उत्पादक देश बन गए हैं, परंतु चावल जैसी फसलें हैं उनमें भी जो दीर्घ अवधि वाली और जो पारंपरिक रूप से चावल की खेती कर रहे हैं उसमें काफी पानी उपयोग होता है। इसी तरह से पारंपरिक सिंचाई विधियां हैं
1: जी,
2: जिसमें पूरा खेत को भर देते हैं जितने पानी की फसल को आवश्यकता नहीं होती है, और जब तक बिजली मिलती है या जब तक ट्यूबवेल में पानी है चालू रहता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट और उस सोच से हमें बाहर आने की जरूरत है।
0: ये रहता है कि ज्यादा पानी देंगे तो अच्छी फसल होगी,
2: जो कि एक गलत है, एक मिथ है। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना होगा कि कम पानी चाहने वाली फसलों का उपयोग करें, कम पानी चाहने वाली किस्में, अल्प अवधि वाली किस्में जो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दें उनका उपयोग करें। धान की बिजाई में भी सीधी बिजाई वाला धान आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है जिसमें लगभग 25-30% या उससे भी अधिक जल

0: की बचत हो जाती है, सिंचाई के आधुनिक साधन अपने अपनाने होंगे
1: जी।
0: और जो खेत का पानी है वो खेत में ही रहे, गांव का पानी गांव में रहे, उस सोच को आगे बढ़ते हुए हमें उस ध्यान रखना है कि जल संरक्षण हो।
1: बिल्कुल, जल संरक्षण के लिए और बहुत सारी चीजें क्या क्या हम कर सकते हैं, चाहे शहरी लोग हों चाहे गांव के लोग हों, क्या कुछ नहीं कर सकते, सारी बातें होंगी। फटाफट आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का प्रोग्राम हेलो फार्मर्स में। जी हाँ साथियों, फोन नंबर आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 011 दिल्ली का स्टडी कोड है 2342 1081। एक फोन लाइन है, एक और फोन लाइन है 2342 1083। जो हमारे लिसनर्स हैं, जो वो सभी जानते हैं फोन लाइन इन नंबर्स को, और क्योंकि कॉल्स भी आना बहुत शुरू हो चुकी है तो डॉक्टर साहब जान लेते हैं कौन से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानना चाह रहे हैं वो। हेलो।
4: हेलो
3: जी, नमस्कार सर, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप।
4: नमस्कार मैडम, मैं भगवानलाल धनकर बोल रहा हूँ, रतलाम मध्य प्रदेश से।
3: जी सर, पूछिए अपना प्रश्न।
4: कृषि के बारे में जानकारी लेना है मुझे, जैसा कि आज विषय है जल का संरक्षण करने के लिए, काफी अच्छा विषय है मैम, तो इसके बारे में मुझे जानकारी लेना थी थोड़ा कि वैसे तो हम जल का पूरा उपयोग करते हैं, बचाते हैं उसको, स्प्रिंकल विधि है अपने, ड्रिप विधि है, खेतों में यूज करते हैं इसका, तो इससे कम से कम पानी यूज करते हैं और इस साल थोड़ी बारिश भी कम हो रही है, तो मुझे जानना है मैम कि ऐसी मध्य प्रदेश में ऐसी कोई योजना चल रही है जिसमें तालाब हो, जैसे तालाब बन जाए जिसमें पानी अपन स्टोर कर ले और उसके बाद उसको कृषि के लिए उपयोग कर ले। इसमें सोच रहा हूँ मैं कि तालाब भी हो जाएगा और साथ में मछली पालन भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा मैम, और पानी कृषि के लिए भी उपयोग हो जाएगा।
3: जी जी सर।
5: आप मोहनलाल जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न ही नहीं पूछा है, एक सुझाव दिया है। मैं आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से पूरे देश को के किसानों को ये आह्वान करूंगा कि हाँ, आप सबको इतना जागरूक होना है कि आपका जो बरसात का पानी है वो बहकर बाहर नहीं जाए, फार्म पॉन्ड अपनाएं। फार्म पॉन्ड के लिए सरकार की योजनाएं भी है, सब्सिडी भी दी जाती है, हर राज्य के लिए वो अलग अलग होती है क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, तो हर राज्य की अपनी योजना है, तो उसके लिए अपना जो जिला कृषि अधिकारी है उससे संपर्क में रहें और उनसे पता करें कि आपके यहाँ पर क्या योजना है। पर अधिकतर राज्य में जितना मुझे पता है ये योजना है जिसमें आप फार्म पॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं, और फार्म पॉन्ड की अगर हम बात करें तो आपके जमीन का लगभग 20 से 25वां हिस्सा है उसमें एक पॉन्ड का निर्माण करें ताकि आप पूरे क्षेत्र में अच्छे से सिंचित खेती कर सकें और जो आपकी न केवल आमदनी दुगनी की तरफ जो हम प्रयासरत हैं वो कर सकें, बल्कि हम जो पर्यावरण सुरक्षा है वो भी करेंगे और उत्पादन तो हमें गुणवत्तापूर्ण मिलेगा ही। तो ये, और इसमें साथ में आपको ये करना है कि जो आपने जिन सिंचाई विधियों का जिक्र किया उनको अपनाते हुए, यानी कि जो ड्रिप और स्प्रिंकलर, ताकि जो आपकी हर बूंद है उसका उपयोग हो, मोर क्रॉप पर ड्रॉप की जो अवधारणा है वो सही साबित हो। इसके अलावा आजकल रेनगन भी आती है जिसमें आपका ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई कम पानी से आप कर सकते हैं, तो इस तरह की जो विधियां हैं उनको आप अपना कर और फार्म पॉन्ड का निर्माण करके, और राजस्थान में तो ऐसे हजारों हजार एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें किसान फार्म पॉन्ड बनाकर, जो बारानी खेती थी जहां पर एक बूंद पानी की सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं होती थी, उनमें उन्होंने रेगिस्तान को नखलिस्तान, डेजर्ट इन ओएसिस वाली कहावत चरितार्थ कर दी और हरियाली वाला क्षेत्र बना दिया। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए।
6: डॉक्टर साहब, हम इरीगेशन सिस्टम में बात करते हैं, स्प्रिंकलर की बात करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई की बात करते हैं, तो ये किस प्रकार से जो हमारे पारंपरिक तरीके से जो हम करते हैं सिंचाई, उसके मुकाबले में कितना ज़्यादा हम इससे फायदा ले सकते हैं, और साथ साथ ये जो इस तरह की सिंचाई के सिस्टम हैं वो किन किन फसलों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: जी डॉक्टर साहब, इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर आप दीजिएगा, लेकिन कॉलर्स भी जुड़े हैं उनसे भी जान लेते हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर क्या परेशानियाँ चल रहे हैं इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हेलो।
7: हेलो
3: जी, नमस्कार सर।
7: नमस्ते, मैं मुकेश चौरान बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, मैंने बीटेक किया हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में।
3: जी जी मुकेश जी,
7: मैं ये एक सोलर पैनल से वाटर पंप से जो है धरती से पानी निकालने के लिए सिंचाई के लिए मैंने शुरू करवाया था देश में।
3: जी,
7: लेकिन ये तो सिर्फ बिजली का समाधान है, अगर पानी के समाधान के लिए, जैसे नदियों में इतनी बाढ़ आती है तो इनका पानी भूजल बढ़ाने के लिए क्यों नहीं किया जाता?
3: जी जी सर, बिल्कुल इन्हीं सभी विषयों को लेकर आए हैं, इन्हीं सब विषयों पे बात हो रही है कि किस तरह से जो भूजल संरक्षण है वो किया जाए ताकि किस तरह से इन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सके।
5: जी, मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में देना चाहूंगा। मुकेश सिवरान जी, किसान, सरकार और हम सब उस दिशा में प्रयासरत हैं जहां पर आपके पानी का सदुपयोग करना है। जैसे कि ये जो पूर्व आपके श्रोता थे जिनका प्रश्न आया था फार्म पॉन्ड का निर्माण करके, हाँ बहुत सारे किसान हैं और हजारों की तादाद में हैं जिन्होंने फार्म पॉन्ड करके और वो जो नदियों में पानी बहकर चला जाता था उसको रोका है उन्होंने, और जो बाढ़ आ जाती थी कई सारे क्षेत्र उससे प्रभावित होते थे उसको रोका है। फार्म पॉन्ड, चेक डैम, मेड़बंदी, समोच्च जो खेती है वो करके आप निश्चित तौर पे जो बरसात का जल है उसको बहकर बाहर जाने से बचा सकते हैं। और जो बेड पर प्लांट, बेड प्लांटर्स आजकल मशीनरी का जो दौर है तो बेड प्लांटर आ रहे हैं। बेड पर खेती करने से क्या होता है, एक बार तेज बरसात आती है तो वो फसल तक नहीं पहुंच पाती, ऊपर होती है और उससे जल उपयोग दक्षता में भी वृद्धि होती है। साथ ही जब जो जल भराव होता है उससे भी जो जल के प्रति संवेदनशील फसलें हैं जैसे कि दलहन वर्गीय फसलें हैं, मक्का की फसल है, तो उनको बेड पर लगाने से ये होता है कि वो पानी का उनमें भराव नहीं होता, जड़ों में वायु संचार उनका ठीक बना रहता है और जो साथ में वो जो खूड होती है उसमें पानी भर के और वो नीचे बाद में चला जाता है तो फसल को भी दीर्घ काल तक काम में आता रहता है।
6: तो साहब हम पूछ रहे थे कि जो पारंपरिक सिंचाई है उसके मुकाबले में स्प्रिंकलर से हम कितनी बचत कर सकते हैं और किन किन फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
5: जो पारंपरिक सिंचाई है उसकी तुलना में अगर हम स्प्रिंकलर, ड्रिप और रेनगन की बात करें तो सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। यदि एक मोटा मोटा अनुमान के तौर पर स्प्रिंकलर इरिगेशन आप एक हेक्टेयर क्षेत्र में खेत जितना पानी उपयोग करते थे पारंपरिक तरीके से, स्प्रिंकलर में 2 से 2.5 हेक्टेयर में उसमें आप कर सकते हैं, यानी कि लगभग दुगुना से भी अधिक क्षेत्र में आप सिंचाई करके और उसका लाभ ले सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन और जो सब सरफेस ड्रिप आई है आजकल उसमें तो जल उपयोग दक्षता एक तरह से आमतौर पर ऐसे कहने लग गए कि 100% कर दी जाएगी थोड़े दिनों में ही, यानी कि हर बूंद आपकी काम में आने वाली है, तो इतनी ज़्यादा उपयोग दक्षता है तो उसमें आपका बहुत ही कम पानी में आपको ज़्यादा आप खेती कर सकते हैं। और साथ ही फसलों की बात करें तो ड्रिप और स्प्रिंकलर अब तो धान में भी करने की बात आ रही है और बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं जो धान जैसी ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल है उसमें भी ड्रिप इरिगेशन से खेती की जा रही है। साथ ही जो भी अपनी अन्य धान्य वर्गीय फसलें हैं या दलहन वर्गीय फसलें हैं उनमें भी ड्रिप इरिगेशन, और जब से ये सब सरफेस ड्रिप आया है उसके बाद से तो ड्रिप इरिगेशन इनमें भी संभव है। साथ ही जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स थी, हमारे बागान थे, जो फ्रूट और चार्ट थे, उनमें तो ड्रिप इरिगेशन पहले से ही सफल रही है और काफी हद तक इसको अपनाया भी जा रहा है। पर सिर्फ ड्रिप और स्प्रिंकलर और इनके साथ आपको यदि मल्च के साथ भी चले जाए, यानी कि नमी को उड़ने से बचाना है, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण से जो नुकसान हो रहे हैं उनसे नमी और जो एंटी ट्रांसपेरेंट जो वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ होते हैं जैसे कि केवोलिन, जो खड़िया मिट्टी पहले घरों की पुताई करने में काम में आती थी, वो कोई रसायन भी नहीं है, उसका यदि 5 से 6% का घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं तो पौधों का वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, मल्चिंग करने से वाष्पीकरण रुक जाता है और ड्रिप एक एक बूंद बूंद सिंचाई से, यानी कि आपकी लगभग 100% जल उपयोग दक्षता की तरफ आप जा सकते हैं यदि आधुनिक तकनीक से खेती करें। और वो अब ऐसा कोई हमारे पास अब ऑप्शन नहीं रहा है बल्कि जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है और हम जल का दोहन करके और काफी नुकसान कर चुके हैं तो वो सारी तकनीकें अपनानी है।
3: जी बिल्कुल, बहुत सारी तकनीकें अपनानी है। 45% लगभग क्षेत्र में सिंचाई साधन नहीं कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, लेकिन किस तरह से लेवल बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से फ्यूचर को संवारने के लिए, संभालने के लिए कोशिशें की जा सकती हैं, ये सारी बातें हो रही हैं आज हेलो फार्मर्स में।
8: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: जी हाँ साथियों, हेलो फार्मर्स आप सुन सकते हैं हर सोमवार को 5:30 से लेकर 6 बजे तक। ये प्रोग्राम फोन इन रहेगा जिसमें आप शिरकत कर सकते हैं, और आज के प्रोग्राम में भी आप कर रहे हैं। एक प्रोग्राम और बताते हैं आपको, फार्म टू सिटी। जी हाँ बिल्कुल, आपके लिए प्रोग्राम FM रेनबो पे आएगा 102.6 MHz पर हर संडे को आएगा ये, ठीक है। ये भी 5:30 से 6 बजे तक रहेगा, लेकिन हर संडे को आएगा ये FM रेनबो पे। तो आप इसे जरूर सुनिए। ये जो प्रोग्राम्स हम लेकर आ रहे हैं हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, ये सारे प्रोग्राम्स आपके लिए, जितनी भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है ना अगर आप खेती कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको इसके जवाब बहुत आराम से मिलने वाले हैं। आप पूछ सकते हैं, फोन नंबर से आपको लगातार हम दोहरा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में, और जिस तरह हम बात करें कि किस तरह से जल संरक्षण की आवश्यकता है और किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम फसलों के चुनाव की बात करते हैं तो हमारे जो किसान मित्र हैं उनको किस तरह की फसलों को या कहीं किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिससे पानी की खपत कम हो, क्योंकि ये भी एक जल संरक्षण का हिस्सा है।
5: बिल्कुल, अगर हम जल संरक्षण की बात करें तो फसल विविधीकरण की तरफ सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो सरकारी संस्थान है या हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, उनका भी जो फोकस है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल विविधीकरण पर काफ़ी है। अगर हम खरीफ के मौसम में बात करें तो जो धान की फसल है उसकी बजाय सीधी बिजाई वाला धान और कम अवधि वाली जैसे कि पूसा 1509 है, ऐसी जो किस्में हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं ताकि आपका कम पानी में आप धान उत्पादन कर सकें। साथ ही धान के रिप्लेसमेंट की अगर हम सोचें तो जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है जहाँ पर बासमती का बेल्ट है, उसमें मक्का से बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और कॉटन जैसी फसलें हैं। इसके अलावा दलहन वर्गीय फसलें हैं। पिछले सालों में हम देखें तो दलहनी फसलों का जो MSP है, सपोर्ट प्राइस है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है और उनका बाजार मूल्य भी किसानों को मिल जाता है। तो ऐसी फसलें हैं जिनसे धान का फसल विविधीकरण की तरफ हम सोच सकते हैं, और ये सब कम पानी चाहने वाली फसलें होती है। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो वो तो बहुत ही कम पानी चाहने वाली होती है और आमतौर पर बारानी क्षेत्रों में हो जाती है। तो इनकी जो कम अवधि वाली फसलें हैं उनको लेने से और भी कम अवधि में कम पानी में आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है। अगर हम रबी के मौसम की बात करें तो रबी में भी हमें डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण की सोचनी है। जो सूखा रोधी किस्में हैं उनका उपयोग करना है। साथ ही जैसे गेहूं में ज़्यादा पानी देना होता है तो उसकी बजाय जौ की फसल है या चना है या सरसों है आदि फसलों से हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन वो भी टिकाऊ सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन की बात करते हैं तो पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में धान के बाद जो खेत खाली रहते थे उनमें अब हम सरसों जैसी फसलें और चना और मसूर जैसी फसलों को करके और फसल संघनन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो फसलें हैं कम अवधि वाली फसलें हैं उनको हम हमारी फसल प्रणालियों में समावेश करते हैं तो निश्चित तौर से हम जल का भी कम उपयोग करेंगे और जो खाद्य सुरक्षा और जो पोषण सुरक्षा है उसको भी निरंतर बनाए रख सकते हैं। और जो दलहनी फसलों का फसल चक्रों में समावेश करने से जो मृदा की उर्वरा शक्ति है उसमें भी वृद्धि होती है, जो जैविक और भौतिक और रासायनिक संरचना है मृदा की उसमें भी सुधार होता है।
6: डॉक्टर बाना, हम ये तो बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम फसलों को बदल के उसका नया चयन करके फसलों का हिसाब से पानी को बचाएं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल जैसे बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, पानी बह के समुद्र में जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमारे किसान भाई क्या साधारण उपाय क्या कर सकते हैं?
5: हाँ, बहुत साधारण उपाय है, वहाँ से हमें शुरू करना होता है। खेतों में मेड़बंदी, बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती आपके खेतों में, आपको मेड़ बनानी है। दूसरा, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि बेड प्लांटिंग करेंगे तो भी आपका रुकेगा। मल्च यदि आप बिछा देते

0: है तो आपकी जो पानी पानी बहकर जाने की जो स्पीड है वो भी रुकती है और नमी भी नहीं उड़ेगी। इसके अलावा संरक्षण खेती जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की आजकल बात चल रही है, जिसमें बिना जुताई किए खेतों में फसलों को अदल बदल कर बोते हुए आपको पूर्व जो फसलें हैं उनके अवशेषों को खेत में बनाकर रखना होता है, और जो भी दीर्घकालिक प्रयोग हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, उनमें पाया गया है कि बिना जुताई के भी आप खेती करके जो जुताई वाली खेती है उससे अधिक उत्पादन ले सकते हैं, मृदा का जो जीवांश पदार्थ है, जैविक कार्बन है, उसमें वृद्धि कर सकते हैं, और जो मृदा में सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो जो मित्र कीट हैं उनकी संख्या बढ़ने से आपकी एक तरह से जो प्राकृतिक रूप से जो पौधे हैं वो मजबूत होते हैं, कीटों और रोगों से रोधिता में वृद्धि होती है, और एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक बड़ा अच्छा माध्यम हो सकता है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे कहा जाता है कि ये जो समय होता है जब बारिश का समय होता है ये जो जल संरक्षण के लिए एकदम वरदान साबित होता है अगर सही से कर लिया जाए।
0: जी
1: तो भाई बारिश का समय है, रिमझिम बारिश जो है बदल रही है, हर तरफ बारिश ही देखने को मिल रही है, तो ये जो सावन का महीना है अगर गीतों के साथ इसकी खूबसूरती को सुना जाए तो और भी कहीं आनंद आ जाता है मौसम में, क्यों नहीं रंका?
2: बिल्कुल, तो देर किस बात की, सुनते हैं एक गीत।
3: सावन का महीना पवन करे सोरू,

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: जी हाँ, हमें भी पता है आपका चेहरा बिल्कुल ऐसे झूम रहा होगा, इतना अच्छा सा मौसम हो रखा है, उसके साथ साथ ये प्रोग्राम हेलो फार्मर्स, क्या कहें, क्या बात है ना। और देखिए बिल्कुल बात हो रही है किस तरह से जल संरक्षण किया जा सकता है और उसकी आवश्यकता क्यों है, सारी बातें हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि वाटर लेवल की बात की थी कि किस तरह से वो लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन इसको संभालने की भी बहुत ज़रूरत है, किस तरह से इसको रिचार्ज किया जा सके, ये सारी ज़रूरतें भी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से सुझाव देंगे, क्या करें किसान और आम इंसान भी?
1: देखो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि बरसात कम होती है, 1190 mm के आसपास बरसात होती है, तो अच्छी बरसात है, पर वो क्या है कि करीब करीब 4 महीने से भी कम समय तक होती है। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है 100 दिन के आसपास आप औसतन मान लीजिए, तो उसमें हो जाती है, सारा पानी बहकर चला जाता है। तो जो हमारा बरसात है, हर नागरिक को व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबको जागरूक होना है, पानी को वेस्ट तो नहीं करना ही है, साथ ही जो छत का पानी है उसको भी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स

0: ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएं, जो रिचार्ज वेल हैं उनका निर्माण करें। बहुत सारे शहर हैं जिनमें नक्शा ही तब पास होता है मकान का जब आप रिचार्ज के लिए स्ट्रक्चर या फार्म पॉन्ड वो जो उसका एक पॉन्ड का निर्माण करें ताकि उस पानी को आप उपयोग करें। तो जो भी जितना भी छत है हमारी राजकीय जो बिल्डिंग है स्कूल्स है सबका पानी आपको जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा करके ग्राउंड में जाने देना है ताकि भूजल रिचार्ज हो। रिचार्ज वेल्स आपको बनाने होंगे, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनानी होंगी। ऐसे ही अगर आप किसान हैं तो आपके खेतों का पानी आपके खेत से बाहर नहीं जाना है। गांव के स्तर पर पंचायत के स्तर पर अगर हम बात करें तो जो जोहड़ हैं उनका निर्माण करें तो पानी को बहकर जाने ही नहीं देना है ताकि आपका पानी वहीं रहे और रिचार्ज रहे।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने डॉक्टर आरएस बानाजी, और इतने सरल शब्दों में हमारे दोस्तों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: तो साथियों हेलो फार्मर्स अगले सोमवार वापस आपके पास आएगा और नई जानकारियों के साथ और नई चीजों के साथ, लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से निरंकार जी और साथी मैं आरती आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। सदन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर

0: चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Raj Sabha returning it to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill in the upper house. Replying to discussion, Ms. Sitharaman said the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on the UPI users. She assured that small merchants and consumers will not have to pay merchant discount rate charges on UPI. The Parliament has also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Replying to discussion on the bill, Finance Minister Sitharaman said that this bill is a very reformative step which will help the country move forward at a faster pace.
4: The bill, among various other things that it wants to do, provides for a technology-neutral legal framework for bankers' books. It recognizes electronic and digital banking records. It standardizes the certification process, facilitates the admissibility of electronic banking records. It permits authentication through manual, digital and electronic signatures. It also therefore strengthens the statutory protection.
3: The Lok Sabha has passed the Tribunals Reforms Bill 2026. The bill was passed without any discussion amid uproar by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET matter. As the pandemonium continued, the chair adjourned the house for the day. Besides, three other bills were also introduced in the Lok Sabha. Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussions on key bills. Mr. Birla was speaking during the Business Advisory Committee meeting held at Parliament House. Speaking to reporters at the parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition to allow the house to function so that Union Home Minister Amit

0: Mark in May, a statement about the students' protest and address all concerns raised by the opposition members. The student agitation in Jharkhand over alleged irregularities in recruitment examinations continued on the 17th consecutive day today. Police used water cannons as protesting students marched towards the State Assembly in Ranchi. The protesters are demanding cancellation of the JSSC CGL examination and a CBI probe into the alleged irregularities. The government claims that most of the students' demands have been accepted, but the protesters remain firm on their key demands. The 80th Independence Day celebrations this year will highlight Yuva Shakti and the contribution of young India towards building a Viksit Bharat by 2047, along with the commemoration of the 150 years of the national song Vande Mataram. Briefing media in New Delhi today, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh said the celebrations will be led by Prime Minister Narendra Modi from the historic Red Fort. The Prime Minister will unfurl the national flag and address the nation. For the first time, the national song will be sung from the ramparts of the Red Fort during the Independence Day ceremony. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi congratulated athletes for bringing glory to the nation, expressed confidence in their future victories.
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए, आगे भी आप विजयी होंगे।
0: The FIH Hockey Men's and Women's World Cup 2026 will feature a revamped competition structure with the traditional quarterfinal stage scrapped and the top two teams from each of the two crossover pools advancing directly to the semi-finals. Belgium and the Netherlands will jointly host the tournament from the 15th to 30th of this month. India's men have been drawn alongside England, Pakistan and Wales in Pool G, while the Indian women will face China, England and South Africa in their Pool D campaign. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, देश इस वर्ष 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसी के साथ देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो गया है। इस वर्ष ये अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और इस अभियान में भाग लेने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को मन की बात के 136वें एपिसोड में कहा कि तिरंगा सिर्फ हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उन वीरों के त्याग और बलिदान की याद भी दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने नागरिकों से इस वर्ष भी पूरे सम्मान और उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया।
4: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।

स्वतंत्रता दिवस के तैयारियों के साथ ही देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो चुका है। देश भर से लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इस बार अभियान देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी मनाया जा रहा है। आइए अब जानते हैं हर घर तिरंगा 2026 में क्या खास है और आप इसमें कैसे भाग ले सकते हैं।

0: फ्रांसिस को में समाप्त होगी। इसकी खास बात यह है कि यह यात्रा अलग अलग देशों में होने वाले सूर्योदय के क्रम के साथ आगे बढ़ेगी, यानी तिरंगे की ये डिजिटल यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से जोड़ेगी। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान कई तरह के कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। इनमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा सेल्फी स्थल, तिरंगा दौड़ और तिरंगा श्रद्धांजलि जैसे कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा तिरंगा और वंदे मातरम प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के विकास के साथ साथ वंदे मातरम के इतिहास और उसके महत्व को दिखाया जाएगा। श्रोताओं, हर घर तिरंगा अभियान में आप भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर भाग लेने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और देश जैसी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद तिरंगे को सम्मान के साथ फहरा कर उसके साथ एक साफ तस्वीर या सेल्फी लेनी होगी। इस तस्वीर को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। तस्वीर अपलोड करने के बाद वेबसाइट पर दी गई प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद भागीदारी का डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील के महत्व और हर घर तिरंगा अभियान के विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था और लोगों से आह्वान भी किया था और इस बार भी 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था और उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त से 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर से भी जोड़ा गया है। साथ ही सूर्य पथ तिरंगा के जरिए ये अभियान देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंचेगा। इस वर्ष के अभियान किन खास पहलुओं को किस तरह देखा जाना चाहिए, आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन से।
2: देश के हर जिले और ब्लॉक में स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेन ज़ी को बढ़ चढ़ कर लेने का मौका मिलेगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है, उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की भी बात है और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी।
1: वर्ष 2022 में इस अभियान के पहले संस्करण में 23 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया गया और करीब 6 करोड़ लोगों ने वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की। अगले संस्करण वर्ष 2023 में 10 करोड़ से अधिक सेल्फी अपलोड की गई। वर्ष 2025 में भी अभियान में बड़े स्तर पर लोगों ने हिस्सा लिया और 7 करोड़ 50 लाख से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देश भर में तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव की भावना को मजबूत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़ रहे हैं, लेकिन तिरंगे के प्रति सम्मान केवल उसे फहराने तक सीमित नहीं है। इसे फहराते समय उसके सम्मान और सही तरीके का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। आखिर तिरंगा फहराने के क्या नियम हैं? इसे किस तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं अगली रिपोर्ट में।
0: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, लेकिन तिरंगा फहराने और उसे प्रदर्शित करने के भी कुछ नियम हैं। ये नियम मुख्य रूप से भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर पर तिरंगा फहराने की। आम नागरिक अपने घर पर किसी भी दिन और किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। जुलाई 2022 के बदलाव के बाद घर या खुले में तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, तिरंगा सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए। फटा, मैला या अस्त व्यस्त झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगे का आकार कुछ भी हो सकता है।

0: होता है, लेकिन उसका अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए। और हाँ, केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। तिरंगे के ऊपर या उसके बराबर कोई दूसरा झंडा या झंडियों की लड़ी नहीं लगाई जा सकती। एक ही ध्वज दंड पर तिरंगे के साथ कोई दूसरा झंडा भी नहीं फहराया जा सकता। तिरंगे का इस्तेमाल सजावट के लिए, मेज ढकने या मंच पर लपेटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसे कपड़े की तरह पहनना या कुशन, रुमाल और नैपकिन जैसी चीजों पर छापना या काढ़ना भी सही नहीं है। और अगर आप अपनी कार पर छोटा सा तिरंगा लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ भी एक जरूरी नियम है, आम नागरिक अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा सकते। ये अधिकार ध्वज संहिता में बताए गए कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही दिया गया है। अगर तिरंगा किसी दूसरे देश के झंडे के साथ फहराया जा रहा है तो उसके लिए भी नियम तय हैं। सीधे क्रम में लगाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सबसे दाईं ओर होगा और दूसरे देशों के झंडे उनके अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम में लगाए जाएंगे। और अंत में अगर तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे भी सम्मान के साथ हटाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, हर घर तिरंगा सिर्फ तिरंगा फहराने का अभियान नहीं बल्कि आजादी के उन मूल्यों को याद करने का अवसर है जिनके लिए हमारे वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तिरंगे के प्रति हमारा गर्व, वंदे मातरम के प्रति हमारा सम्मान और देश को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प, यही मिलकर विकसित भारत की राह को मजबूत करते हैं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह।

प्रति हमारा गर्व, वंदे मातरम के प्रति हमारा सम्मान और देश को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प, यही मिलकर विकसित भारत की राह को मजबूत करते हैं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444 or 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Niharika Bhuvania with you this evening with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं, लेकिन आज सोमवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको भी किया करते हैं आमंत्रित हमसे सवाल पूछने के लिए. अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल यदि आप पूछना चाहते हैं तो डायल कीजिए 2331-4444-2331-0481 या फिर 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को या जो मोबाइल फोन से फोन करना चाहते हैं उन्हें दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करना होगा. बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं. हमसे खबरों के पर चर्चा के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी नमस्कार.
2: नमस्कार मनोज जी.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका.
0: वेल लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस फर्स्ट फॉर दिस इवनिंग. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट. सेंसेक्स एट 43 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,584. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI. And global crude oil prices rise.
1: बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए आज घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 43 अंक उछला. निफ्टी 24,584 दर्ज हुआ. संसद ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया आश्वस्त. कहा छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we move forward, a small note for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 43 अंक बढ़कर 78,542 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंक बढ़त के साथ 24,584 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की मांग में मिला जुला रुख दिखा है. एक और खरीदारी से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.6% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.3% की गिरावट भी हुई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड ऑन अ फ्लैट नोट टुडे. द सेंसेक्स रोज 43 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,542. द निफ्टी एडेड 13 पॉइंट्स टू सेटल

0: 24,584. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained over 0.6%, while the small-cap 100 index dipped nearly 0.3%. Earlier, the benchmark indices opened slightly up and briefly slipped into negative territory. However, the Sensex and Nifty recovered their initial losses and traded in positive zone for most of the range-bound session. Despite a slight pullback in the final hour of trading, both indices ended marginally higher following the closing auction session.
1: नजर डालें Sensex Pack के प्रदर्शन पर, तो 30 में से 19 कंपनियों को आज फायदा हुआ है. सबसे अधिक फायदा टाइटन कंपनी के शेयरों में देखने को मिला, जिसके भाव 3.1% बढ़कर बंद हुए. बजाज फाइनेंस को 1.9% का और बजाज फिनसर्व के शेयर 1.1% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए. उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही भारतीय स्टेट बैंक, जिसके शेयरों में 2.2% की कमी देखने को मिली. एटर्नल के शेयर 1.6% नुकसान में रहे. एनटीपीसी को 1.5% से अधिक का घाटा उठाना पड़ा.
0: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, realty advanced 1.6%, consumer durables rose 1.2%, and capital goods gained almost 0.5%. In contrast, PSU banks dipped 1.3%, housing finance shed 0.6%, and mid-small private banks' quality tilt lost over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,226 companies declined, 2,225 advanced and 194 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 8 पैसे कमजोर हुआ, 95.29 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में आज की गतिविधि पर यदि आपकी हम प्रतिक्रिया समझना चाहें तो बताएं कि क्या सब बाजार में रहा.
2: आज देखिए बाजार जो है थोड़ा फ्लैट रह रहा है. अगर आप देखें अर्निंग सीजन जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा. लेकिन ऑयल और जियोपॉलिटिकल जो अनिश्चितता बनी हुई है उस वजह से थोड़ा सा वो वे कर रहा है बाजार के ऊपर, तो ये इसीलिए थोड़ा फ्लैट दिख रहा है.
0: एंड विद दैट वी ऑल्सो हैव आवर फर्स्ट कॉलर दिस इवनिंग, डॉक्टर प्रफुल्लित बिश जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली. गुड इवनिंग डॉक्टर प्रफुल्लित, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
3: हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ मार्केट मंत्रा एंड इट्स इमेंस प्लेजर टू गेट द इनसाइटफुल नॉलेज. माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, आई एम अ न्यू इन्वेस्टर इन टर्म्स ऑफ एसआईपी. So I recently started 2,500 rupees ka 4 SIPs in sectoral this thing. The one is Nifty index funds, small index and mid cap and large cap. So is it the right strategy? Because I was reading about it. Someone said that this is not a right strategy to go, or maybe 10,000 in one SIP would have been a better choice. So what would you suggest me? What should I read so that, I'm looking at long time duration, for example 30 years or 35 years ke liye I'm trying to invest. Yeah, thank you ma'am.
2: Thank you Dr. Bisht, and a pleasure to have you on the show, and it's nice to know that you are a regular listener. See, we always advise investors to diversify, to have a very balanced portfolio. While like you've said, you have invested in 4 SIPs and you have tried to balance it out, but you also have to see there is a cost of investment involved. So if you're putting in small amounts in 4 SIPs, you are also incurring costs at 4 different places. So that also adds to your cost of acquisition. So you have to see how you can sort of balance it and whether it is more cost effective to do it at invest in 2 products or invest a consolidated sum in 4, in 1 product. But that is something you'll have to figure it out. It is advisable to have a balanced portfolio, but you also have to see the costs involved.
1: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमित. अमित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.

0: नमस्कार सभी को। शिखा मैडम से प्रश्न ये है मैम कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईटी कंपनी अभी भी अंडर प्रेशर में है, बट दिग्गज कंपनी है, नाम तो नहीं ले सकते प्रोग्राम में, ये आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है मैम, और वो पिछले दिसंबर 2025 से लेकर के जून तक वो 46% माइनस में थी, यानी कि डाउन चल रही थी, ठीक है मैम। हेलो
1: जी जी अमित जी, पूछिए अपना सवाल।
0: और जून के बाद उसमें अपने लोअर लेवल से 20% की रिकवरी हुई है, तो क्या हमारी आईटी कंपनी पूरी तरह एआई के जो चैलेंज से उभरने के लिए तैयार हो चुकी है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जो भी समस्या आ रही थी, तो क्या उसके जो है समस्या खत्म हो चुकी है या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं अभी भी? धन्यवाद
1: अमित जी। देखिए, टेक क्षेत्र जो है अभी उस पर ये अनिश्चितता जो एआई के वजह से हो गई थी, ये अभी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत क्लैरिटी आई है कि आगे कितना असर हो सकता है हमारी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये माहौल अब बन रहा है कि ये हो सकता है एक बहुत बड़ा बबल हो। हमारी जो कंपनियां हैं टेक क्षेत्र की, वो भी तैयारी कर रही हैं कि वो किस तरह से इस नई चुनौती को हैंडल कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि खतरे के बादल पूरी तौर से छट गए, क्योंकि अभी एआई का पूरा असर आया नहीं है। लेकिन हो सकता है कि एआई आने से हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, अगर वो अपने आप को तैयार कर लेती हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आए नई व्यवसाय के तहत।
2: यहाँ पर दीपशिखा जी थोड़ा समझना चाहेंगे श्रोताओं के नज़रिए से कि अक्सर जब कोई एक नई तकनीक आती है और ऐसी तकनीक जो समझ में ना आने लायक हो, तो थोड़ा सा भय होता है, आशंका होती है। जैसे कंप्यूटर का ही जब आगमन हुआ था तो चिंताएं थी कि कंप्यूटर नौकरी खा जाएगा, इसी तरह एआई बहुत सारे कामों को निश्चित रूप से आसान बना दे रहा है। तो यह रोज़गार के अवसर कहाँ दे रहा, कैसे इसका जो नया स्वरूप निकलेगा उसमें ये सहायक कैसे साबित होगा, आशंकाओं के बादल से निकलने के सूत्र के रूप में समझना चाहेंगे इसे।
1: मनोज जी देखिए, एआई जो है एक नया क्षेत्र आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें एआई जो है जिस तेजी से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, एआई खुद ही रेलेवेंट नहीं रहेगा, इतना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा चीज है कि एक कॉस्ट है एआई की, अगर आप ह्यूमंस को रिप्लेस करना चाहते हैं एआई से, तो वो कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है कंपनीज के लिए आज की तारीख में। हो सकता है वो कॉस्ट आगे चल के कम हो जाए, लेकिन ये जो मैनेज करना है एआई का इंटरफेस जो है कंपनीज के साथ या ह्यूमंस के साथ या जो भी अडॉप्शन है, उसके अडॉप्शन में भी आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो ये है कि ये एआई जो है हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए रोज़गार के अवसर पैदा करे। हम देख रहे हैं किस तरह टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ और उस तरह से व्यवसायों का जो चरित्र है वो किस तरह से बदल रहा
2: जी,
1: है
2: जी, जी।
1: तो उम्मीद की जाती है कि नए अवसर भी पैदा होंगे
2: जी।
3: And with that, let's take a look at the next story for this evening. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. The ordinance was promulgated with the objective of mitigating the impact of external economic shocks. The bill further exempts foreign institutional investors and the Bank for International Settlements from paying income tax on interest earned on investments in government securities. The bill further amends the Income Tax Act to exempt income earned by certain foreign companies from the sale of rough diamonds in a notified special zone. Replying to the discussion, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, "No merchant discount rate framework has been finalized." She assured that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI.
4: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. Let this be clear. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges.
3: So Deepshikha, a small comment from you on this. Given that UPI today has assumed massive proportions in the country, and even the smallest transaction requires UPI now, not requires maybe, but is the default go-to mechanism. And with that, the volume of transactions has also improved quite a bit. It has also increased multifold. So your comment on this bill, on this law, and how is it going to impact the economy overall?
1: Niharika, if you see, if you heard the finance minister, she's clearly saying that this is an enabling amendment, mm-hmm. which will enable the government to sort of pave the way for, imposition of MDR. Now, the thing is, MDR, why is it required? We've seen how digital payment industry, the entire sector has grown. It has grown in volumes. So how do the companies which support this growth or support these transactions also sort of survive? They also need to make some money on it.
3: Of course.
1: They also need to invest in technology to further improve, interface with customers. So which is what a levy of MDR will allow. And the government has assured that, smaller transactions, or smaller merchants, they would not face this charge. So this whole expansion which has sort of happened, you now have vegetable vendors or anyone even mm-hmm. taking small payments over, UPI or phones, that would still be facilitated. So government has assured that that would be taken care of. So I think that fear should not be there that, MDR will, sort of raise the cost of digital transactions. Not all transactions will attract it. Smaller ones will be sort of kept out, and traders would also, smaller traders would be spared.
3: Very well.
2: आइए आगे बढ़ाएं कार्यक्रम का सिलसिला और आमंत्रित करें अपने एक नए श्रोता नितिन जी को. नितिन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
5: नमस्कार सर.
1: नमस्कार नितिन जी.
5: जी दीपशिका मैडम को भी नमस्कार.
1: जी नमस्ते.
5: मैम, मेरा एक मार्केट के बारे में एक छोटा सा सवाल है. जैसे मतलब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करता है तो जो डीमैट अकाउंट जो भी प्रोसीजर है वो कर देता है, तो क्या इसके लिए मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करना पड़ता है इससे पहले, ऐसा कोई नियम है? जैसे मार्केट में एंटर करता है आदमी तो फाइनेंशियली एक्टिविटीज बढ़ती है, जैसे कैपिटल गेन्स हो गया, TDS वगैरह वगैरह, तो क्या ये जरूरी होता है? जो टैक्सेबल जो आदमी उसका इनकम टैक्सेबल नहीं है, ऐसे आदमी अगर मार्केट में एंटर करता है और अपना डिमांड अकाउंट खोल के चालू करता है तो क्या? थैंक यू मैडम.
1: नितिन जी देखिए, आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो तब आपको कोई ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है. लेकिन अगर आपकी आय नहीं भी है और आप बाजार में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसमें आपका ऐसा कोई गेन भी नहीं आया, आपका कर नहीं बन रहा है, देनदारी नहीं बन रही, तो भी आप एक नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है. लेकिन अगर आपके गेन्स हो रहे हैं, कैपिटल गेन्स हैं, तो उसके लिए तो आपको रिटर्न फाइल करना ही होगा.
2: हाँ, यानी जिस समय आप काम शुरू करने जा रहे हैं उस समय कोई औपचारिकता
1: नहीं है. जी.
3: And with that, let's move towards the next story for this evening. India's urban unemployment rate for persons aged 15 years and above rose marginally to 6.7% during the April to June quarter of current fiscal year, from 6.6% in the previous quarter. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, Periodic Labour Force Survey Quarterly Bulletin, unemployment rate in rural areas increased to 4.8% from 4.3% during the fourth quarter of the last fiscal year. Meanwhile, the female urban decreased to 8.7% in the current quarter from 9.1% in the last quarter. The data showed that sectoral distribution of employment continued to exhibit similar structural pattern, with the rural workforce predominantly engaged in the primary sector and the urban workforce concentrated in the tertiary sector.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजनाओं के अंतर्गत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय शुल्क भुगतान चालान जमा कराने की आवश्यकता को, यानी इसकी जो भौतिक प्रति होती है उसे जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 1 अगस्त या उसके बाद किए गए स्वैच्छिक शुल्क भुगतान के लिए निर्यातकों को प्राधिकरण बंद करने के लिए अपने आवेदन के साथ भौतिक रूप से चालान की प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से प्रक्रिया में तेजी आने, अनावश्यक पत्राचार कम होने और DGFT के क्षेत्रीय प्राधिकरणों में निर्णय लेने में अधिक एकरूपता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
3: The gross merchandise value of the government e-marketplace has increased from 422 crore rupees to over 1,55,000 crore rupees in the last decade. This was stated by Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal. In a social media post, Mr. Goyal said that over 12 lakh micro and small enterprises, including more than 2 lakh led by women, and over 42,000 startups are registered on the portal. He further said that the platform has made government markets more accessible to MSEs, startups, women entrepreneurs and others while championing the vision of Vocal for Local and Make in India.
2: यहाँ पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। इसे एक उत्साहजनक खबर माना जाए कि एक दशक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
1: बिल्कुल मनोज जी, देखिए जेम जो है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत सरकार खरीदी करती है। तो एक तो कागज़ और सारा जो पहले डिलेज होता था या पेमेंट्स में डिले होता था, अब आप ऑनलाइन जाइए, एक मार्केट प्लेस क्रिएटेड है, जिस डिपार्टमेंट को खरीदी करनी है वो वहाँ से खरीदी करता है। तो ट्रांसपेरेंसी और एफिशेंसी दोनों की तरफ ये एक कदम था और इसका अडॉप्शन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बढ़ गई है। ये अगर आप देखें जो नंबर मंत्री जी ने बताया है, तो जेम जो है सरकार में काफ़ी उसको अडॉप्ट किया जा रहा है।
2: जी जी जी।
3: And just a small reminder for our listeners at this moment, in case you have any market-related queries, you can reach out to us on 2331-4444 or 2331-0481 or 2371-7106. And of course, please add the code 011 before any of the numbers that you're dialing. You must also remember that we do not address stock or company-specific queries.
2: श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन हमारा फोन इन कार्यक्रम होता है, यानी आप हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा सवाल। आप हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में से जापान में लिवाली तेज रही है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक कारोबार के अंत में 2.1% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.6% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली। यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.3% ऊपर चल रहा था, जबकि लंदन के फुटसी 100 में 0.2% से अधिक की कमी देखने को मिल रही थी। यहां पर दीपशिखा जी, हम आपको यूरोपीय पूरी अर्थव्यवस्था की ओर समझना चाहेंगे कि यूरोप जिन कह लें कि उलझनों में उलझा हुआ है, युद्ध संबंधी जो आशंकाएं थी वो खत्म होने की जगह लगातार पक्ष प्रतिपक्ष की ओर से चल रहा है, उधर ईरान और अमेरिका के बीच में संघर्ष था वो भी चल रहा, इन सब से यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस रूप में प्रभावित हो रही है?
1: देखिए, एक तो संकट जो वहाँ पर चालू हुआ था वो अभी चल ही रहा है, उसका कोई सल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है। अर्थव्यवस्था जो है वहाँ की इम्पैक्ट हो रही थी काफ़ी हद तक। उसके बाद हमने देखा जो ईरान वाला संकट आया, उसकी वजह से भी क्रूड प्राइसेस बढ़े, सारी अर्थव्यवस्थाओं पे असर पड़ा, यूरोप पर भी असर पड़ा है। डिमांड का भी वहाँ पर इशू है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसका एक कहना चाहिए प्रभाव जो है वो वहाँ पर उनके बाजार पर, उनकी करेंसीज पर चारों तरफ वो नजर आ रहा है कुछ समय से।
2: यदि हम चीन को, चीन किसी समय में अमेरिका के बाद कह लें दुनिया का ग्रोथ इंजन दिख रहा था, अब चीन किस दिशा में जाता दिख रहा है, जो

0: हालात हैं उसमें, और विशेष रूप से जो ईरान और मतलब के साथ तनाव बढ़ा है, उसके बाद चीन की स्थिति, उसका जो निर्यात का बाजार है वो किस रूप में प्रभावित होता दिख रहा है, और हमारे लिए क्या अवसर बन रहे हैं इनसे?
1: देखिए, चीन का अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में चीन ने अपनी जो दिशा जो इस तरफ मोड़ी है, हाईटेक, एआई, रेयर अर्थ्स, चिप्स, ये सारे एक एआई के क्षेत्र में चाइना एक बड़ा फोर्स बन के आ रहा है। खुले तौर पर नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक वो बहुत डेवलपमेंट वहाँ चल रहा है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है। तो आगे चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो एक दिशा ले रही है, और वो दिशा जो है उसके लिए वो उन्होंने डायरेक्शनली उसको चेंज किया है, तो जिसका असर वो देखेगा। वो लो एंड जो एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, अब वो हाई एंड में जाना चाहते हैं, तो वो एक दिशा का बदलाव है अर्थव्यवस्था में। जो पिछले हमने देखा कुछ साल पहले जो बहुत संकट आया था अमेरिकी बाजार में, वो अनिश्चितता है उनके यहाँ, लेकिन ये जो डायरेक्शनल चेंजेस हो रहे हैं उसको काफ़ी वो उनकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद करेंगे।
0: यहाँ पर एक तथ्य और हम समझना चाहेंगे कि कोविड के बाद एक चाइना प्लस वन की नीति बनी थी, और भारत एक लंबे समय से कह लें कि उस गैप को भरने की दिशा में प्रधानमंत्री हमारे हैं लगातार आपदा में अवसर की बात कहते रहे हैं। उसके अलावा स्टार्टअप का हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। कुल मिलाकर हम चाइना प्लस वन में कहाँ खड़े दिखते वैश्विक परिदृश्य में अभी फिलहाल?
1: मनोज जी, कुछ कहना चाहिए चाइना प्लस वन से जो है, कुछ निवेश भारत में आया है, कुछ कंपनीज आई हैं, अगर आप देखिए टेलीकॉम में काफ़ी हुआ, लेकिन इस दिशा में और सप्लाई चेन्स के साथ प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी।
2: And with that, we have our next caller who joins us from Delhi as well. Premjeet is on call with us. Good evening, Premjeet. Please go ahead with your question.
3: Good evening, all of you, ma'am. My question to the respected Deepshikha ma'am in the regard of, ma'am, when I visited all these ports close to LPG and crude oil, I have seen, ma'am, in Texas, US built so many LPG terminals, new terminals. So, could we expect that the trade will be impact with our country and our region as well? Thank you, ma'am.
1: मेरा ख्याल है आप क्रूड ऑयल के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो क्रूड ऑयल में देखिए, काफ़ी समय तक अभी अनिश्चितता जो है और उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि जो मेन सप्लाई क्षेत्र रहा है क्रूड ऑयल का, मिडल ईस्ट, वहाँ पर जो है बहुत अनिश्चितता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और वो अनिश्चितता हट नहीं रही है। तो वो अनिश्चितता जब तक रहेगी तब तक क्रूड ऑयल पर हम प्रेशर देखेंगे कुछ समय तक।
2: So since we spoke of crude oil, it's time to take a look at the next story for this evening. Global crude oil prices edged higher today as Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai said that the Strait of Hormuz will not reopen until the US continues its naval blockade against Iran. Brent crude was trading 1.4% up at $84.72 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 1.1% higher at $79.02 per barrel when reports last came in.
0: श्रोताओं, आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य 0.7% की बढ़त के साथ 1,50,641 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी मामूली कमजोरी के साथ 2,31,373 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको दीपशिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: धन्यवाद मनोज जी। थैंक यू निहारिका।
2: मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे दीपशिखा ऑन मार्केट मंत्रा। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस फॉर आवर लिसनर्स। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट। सेंसेक्स एड्स 43 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 24,584। Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI. And global crude oil prices rise. And with that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. Take care.

0: एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्त और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और herghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। और खेलों में FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: नमस्कार। संसद में आज जिन विधेयकों पर चर्चा हुई, जिन्हें पारित कर दिया गया और जिन्हें आज इंट्रोड्यूस किया गया, हम इस पर चर्चा आज करेंगे। और इन विधेयकों में प्रमुख हैं न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 और बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन मौजूद हैं। अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम चर्चा करेंगे न्यायाधिकरण सुधार विधेयक यानी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पर, जिसे आज लोकसभा ने पारित कर दिया। सबसे पहले आप ये समझाएं कि दरअसल इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मौजूदा न्यायाधिकरण व्यवस्था में ऐसी कोई समस्याएं हैं जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है?
2: इस विधेयक की सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक पुराना लॉ है जो 2021 में पास किया गया था, रिलेटेड लॉ है, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट, जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और उस चैलेंज के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी। कोर्ट ने यह कहा था कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इस लॉ के माध्यम से ज्यादा नजर आ रहा है, शॉर्ट टेन्योर्स का मामला है जो चेयरपर्सन हैं ट्राइब्यूनल्स के, तो अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रहता है तो काम करने का जो इंडिपेंडेंस है ट्राइब्यूनल्स का वो कम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक ऑर्डर पास किया था, उन्होंने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये ट्राइब्यूनल्स क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये इच्छा जाहिर की थी कि इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को हटाकर इसको डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और यही हिदायत दी गई थी उस जजमेंट में कि एक नया लॉ लेकर आया जाए, ऐसा लॉ जो इनएफिशिएंसी ट्राइब्यूनल्स की, वजह बहुत सारी हैं उसकी, वजह यह भी है कि वैकेंसीज बहुत रहती हैं, उनको भरने में बहुत वक्त लगता है, दूसरा चेयरपर्सन के टेन्योर्स को लेकर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, अलग अलग ट्राइब्यूनल में अलग अलग समय सीमाएं हैं, तीसरा ये है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा है। उन सब चीजों के मद्देनजर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए अब ये नया बिल लिया है जो पुराने लॉ को रिपील करता है और एक पूरा नया मसौदा तैयार करता है।
1: यही वजह है कि सरकार ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी NTC भी बनाने का प्रस्ताव किया है।
2: सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने कहा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया जाएगा। वो जो कमीशन है वो तय करेगी जो यूनिफॉर्मिटी अपॉइंटमेंट्स में होती है, जो चेयरपर्सन हैं, 16 ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे देश में, उसके चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स की

0: को सिलेक्ट करेगा। एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, और कमीशन को यह भी हक होगा कि वो एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करें, एम्पैनल करें इस सर्च और सिलेक्शन कमेटी में। उससे क्या होगा कि एक वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन और एक वाइड रेंजिंग प्रोसेस के बाद अच्छे और जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।
1: और साथ में ये भी चर्चा अक्सर होती रहती है, बल्कि शिकायत होती रहती है कि मामले जो हैं बहुत लंबे समय तक ट्राइब्यूनल्स में भी लंबित रहते हैं। क्या इस विधेयक से न्यायाधिकरणों में मामलों के निपटारे में गति आएगी?
0: इस विधेयक से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने जा रही है कि एक कमीशन पूरा का पूरा बन जाएगा, तो जो सरकार को वक्त लगता है वैकेंसीज भरने में, चेयरपर्सन अपॉइंट करने में, मेंबर्स बनाने में, वो पूरा का पूरा काम एक डेडिकेटेड कमीशन आगे से करेगी। उससे क्या होगा कि वैकेंसीज भरने में आपको बहुत विलंब नहीं होगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड आपने अपैरेटस बना दिया जिसके माध्यम से ये सब चलेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि डेफिनेटिव टेन्योर्स होंगे
1: जी।
0: जैसे सब जगह तय कर दिया गया है कि हर जो ट्राइब्यूनल है उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स ऑफ सर्विस होंगे चेयरपर्सन के भी और मेंबर्स के भी। उससे चेयरपर्सन और मेंबर्स को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ मिलती है, चेयरपर्सन को, किसी भी कमीशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। इसके पीछे मंशा ये है। और तीसरी बात जो है कि अकाउंटेबिलिटी का एक स्टैंड अलोन मैकेनिज्म क्रिएट हो गया है, क्योंकि नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन ही जितनी भी इंक्वायरीज अभी तक, कंप्लेंट्स भी आपको पता है ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ बहुत आती हैं, मेंबर्स के खिलाफ आती हैं, फिर वो लिटिगेशन में चला जाता है जिसकी वजह से केसेस लंबित हो जाते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ जाता है। तो इन सब चीजों के निपटारे के लिए भी नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन को अधिकृत कर दिया गया है। इससे ये उम्मीद है सरकार को कि ना सिर्फ केसेस बहुत जल्दी निपटारे हो जाएंगे, बल्कि क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया है ट्राइब्यूनल्स की पूरी फंक्शनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, चेयरपर्सन सिलेक्शन से लेकर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म तक, तो चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती चली जाएंगी।
1: बिल्कुल, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 यानी न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 आज लोकसभा से पारित हुआ। और जैसे कि हमने चर्चा की, इस विधेयक से तेज न्याय, स्वतंत्रता और जवाबदेही, इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित होगा और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल पाएगा। इसके साथ ही अदिति, खान एवं खनिज यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 ये आज लोकसभा में पेश किया गया। भारत के खनिज संसाधन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के जरिए सरकार खनन क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव लाना चाहती है?
0: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, और इस बिल की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम सब जानते हैं कि माइंस और मिनरल डेवलपमेंट का बहुत सारा जो हक है या राइट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हैं। जो माइन रिच, मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनको अभी तक ये अधिकार रहता है कि वो किसी भी तरीके का टैक्स इम्पोज कर सकें मिनरल डेवलपमेंट पर या यू नो माइनिंग राइट्स पर। उसकी वजह से ऐसा महसूस हुआ है, मतलब लंबे समय से ये एक्सपीरियंस केंद्र सरकार का रहा है कि टैक्स बर्डन जो है इस इंडस्ट्री पर वो बढ़ गया है। टैक्स बर्डन के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि एक डिसइंसेंटिवाइजेशन हो रही है सेक्टर की, लोग इसमें आने से घबरा रहे हैं, पैसा लगाने से घबरा रहे हैं। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब केंद्र सरकार ने ये प्रपोज किया है इस बिल में कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, इसका अधिकार लेगी, और जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है टैक्स रेजिम्स में मिनरल डेवलपमेंट में वो खत्म हो जाएगी। मतलब कहने का है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। आपने अभी कहा कि क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है, जैसे हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। हम कितना इम्पोर्ट डिपेंडेंट रह सकते हैं, हमें अपने देश में ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। उसके लिए सरकार को ये लगा है, इसी वजह से ये विधेयक आया है कि थोड़ा सा अधिकार जो इस वक्त टैक्स इम्पोज करने का स्टेट्स के क्षेत्र में वो खुद वो ले लें।
1: तो जैसा अदिति आपने बताया कि आज भारत कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों से उसे आयात करने पर निर्भर है, तो क्या आपको लगता है कि इस विधेयक के बाद भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा ये कदम साबित होगा?
0: देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम साबित होने जा रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए जो चार बड़े मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जिनका जिक्र आजकल स्ट्रेटेजिकली भी होता रहता है, लिथियम हो गया, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है, यूरेनियम है
1: जी।
0: हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। हमने ग्रीन एनर्जी के इतने बड़े बड़े गोल्स सेट किए हुए हैं, यू नो हम कार्बन एमिशन फ्री होना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारा जो मिनरल डेवलपमेंट का सेक्टर है उसको एक तरीके से एनर्जाइज किया जाए। इस महत्वपूर्ण विधेयक का एक जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर मुझे लगता है वो ये है कि एक माइनिंग लीज के तहत अब

0: बहुत सारे मिनरल्स अब कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि माइनिंग लीज होल्डर्स जो हैं, वो एक ही लीज में अलग अलग एडिशनल मिनरल्स को माइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधा अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में नहीं है
1: जी।
0: हर एक नए मिनरल के लिए आपको एक नया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये जो ईज ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट दी है, इससे बढ़ावा मिलेगा मिनरल डेवलपमेंट को।
1: और अभी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एक तरीके से आप कहें कि 6 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं है, क्या इस विधेयक के बाद इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आएगी और निजी क्षेत्र का निवेश भी आएगा?
0: हाँ बिल्कुल, इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही ये बोल दिया गया है कि इसका जो पर्पस है वो है माइनिंग सेक्टर को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, ज़्यादा निवेश अट्रैक्ट करना और ज़्यादा इक्विप्ड बनाना हमारी कंट्री की बढ़ती हुई क्रिटिकल मिनरल्स की नीड्स के साथ अलाइन करने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि एक देखिए सरकार का ओवरऑल अप्रोच भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह ईज ऑफ बिजनेस के लिए बहुत से ऐसे विधेयक लाए गए हैं जिसमें नीडलेस कानून जो हैं उनको या तो हटा दिया गया है या बहुत हद तक डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है या डीरेगुलेट कर दिया गया है। ये जो बिल है ये उसी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण आगे जाने वाला बिल है और इसमें क्रिटिकल मिनरल माइनिंग के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, जैसे कि हमने जो 4 मिनरल्स का जिक्र किया और गोल्ड और सिल्वर उसमें जोड़ दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि जो लीज होल्डर्स हैं उनको कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टिंग लीज में इन मिनरल्स को माइन करने के लिए। कौन से मिनरल्स? लिथियम ग्रेफाइट, निकल कोबाल्ट, गोल्ड और सिल्वर, इनके लिए ये स्पेशल इंसेंटिव दिया गया है। ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ही देश में क्रिटिकल मिनरल माइनिंग को इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं।
1: आपको क्या लगता है सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच कैसे संतुलन स्थापित करेगी?
0: इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए और रूल्स और रेगुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वही एग्जिस्टिंग माध्यम से ही सारे के सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक बहुत रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है। तो उम्मीद यही रहती है हर नए विधेयक से कि जहां ये डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा वहीं हमारी प्रकृति को बहुत हार्म नहीं करेगा।
1: साथ ही एक और बिल है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026, हिंदी में कहें तो बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026, ये आज संसद से पारित हो गया, आज राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। क्या है ये कानून, क्योंकि ये 135 साल पुराना है, 1891 का कानून है, इसे बदलने की जरूरत अब क्यों महसूस की गई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: इंडिया पूरे विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर पूरे दुनिया में हो रहे हैं तो वो इंडिया में हो रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है बैंकिंग बुक्स को लेकर, उसमें प्रावधान ये है कि लीगल फ्रेमवर्क में सपोज कोई बैंक का मैटर कोर्ट में चला जाए तो इस वक्त के प्रावधानों के हिसाब से सिर्फ मैनुअल डॉक्यूमेंट्स जो बैंकिंग सिस्टम में है वही लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में
1: जी।
0: ये जो बिल है इसको बदलने जा रहा है। हम आपने कहा कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जब माननीय राष्ट्रपति इसको असेंट दे देंगे तो ये लॉ बन जाएगा। उससे क्या होगा कि वर्चुअल और डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं, जो डिजी बैंकिंग का हिस्सा है, उनको भी अब लीगल मान्यता मिल जाएगी। इसका ये लिमिटेड पर्पस है।
1: वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड के मामले भी बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या नया कानून ऐसे मामलों की जांच और अभियोजन को और तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेगा?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स आप देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम से सारा कुछ रिलेटेड है और डिजिटल बैंकिंग से ज्यादातर रिलेटेड है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम में वर्चुअल रिकॉर्ड्स हैं, वो सब लीगल फ्रेमवर्क के तहत आ जाएं, ताकि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, अभी तो उनको प्रैक्टिकली फ्री रन मिला हुआ है क्योंकि उनको पता है कि मैनुअली डॉक्यूमेंट आएगा कोर्ट में, केस लंबित रहेगा क्योंकि अभी स्ट्रक्चर ही नहीं है, लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है। तो वो सब जो गैप्स हैं सरकार ने आज इस बिल के माध्यम से भर दिए हैं और साइबर फ्रॉडस्टर के लिए ये एक नेचुरली एक चैलेंज के रूप में काम करेगा।
1: अगर आम बैंक ग्राहक की दृष्टि से देखें तो क्या इस नए कानून का एक बड़ा व्यवहारिक फायदा उनको मिलने जा रहा है? अगर हाँ तो वो कौन सा फायदा है?
0: सबसे इम्पोर्टेंट फायदा तो ये है कि आपको अपने इंटरनेट या अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो सर्टिफिकेशन आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाले जो सर्टिफिकेट्स आप सेल्फ अटेस्ट करते हैं वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य होंगे। अभी आप जानते हैं कि कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी नोटरी के पास जाइए, कभी उसको वेरीफाई कराइए, ऑथेंटिकेट कराइए, ये सारा का सारा जो बिजनेस है इसको खत्म करके सब कुछ आप अपने हाथ से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
1: इसमें कहीं कोई एक किसी आम ग्राहक के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि उसे डरने की जरूरत है या संभाल कर चलने की जरूरत है ताकि कोई फ्रॉड ना हो पाए वित्तीय?
0: नहीं, मुझे लगता है ये तो साइबर फ्रॉड का जो पूरा एक पैटर्न चल रहा है इस वक्त उसको एक तरीके से एड्रेस करेगा, ना कि अदरवाइज, क्योंकि अभी आपको पता है कि लीगल फ्रेमवर्क में डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड्स मान्य ही नहीं है। तो अभी तो सारा का सारा साइबर बुलिंग, या आपने सुना है कितनी बार अभी जो डिजिटल अरेस्ट का सारा माध्यम चला है, उससे डील करने की पावर मिलेगी अपना साइबर पुलिस को भी मिलेगी और आम जनता को भी मिलेगी।
1: बिल्कुल, तो हम अपने श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि आज संसद ने बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026 जो पारित किया, जो अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ जल्द ही कानून बन जाएगा। अदिति, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सांस ढली आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। साथियों 10 अगस्त की खूबसूरत शाम है, सावन का महीना है और ऐसे मौसम में दिल कहता है फिर सावन ऋतु की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए, फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। और दिल ये भी गाता है फिल्म मेला का ये गीत।

रुत है मिलन की, सावन का महीना है और ये सावन जहां हिंदी फिल्मी गीतों में खूब बरसा है तो वहीं सावन थीम पर कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सावन भादो, सावन की घटा और प्यासा सावन। फिल्म प्यासा सावन में एक गीत है जिसमें सुरेश वाडेकर की गायन प्रतिभा सबसे बेहतर ढंग से निखर कर आई है। जितेंद्र और मौसमी चटर्जी पर फिल्माए इस गीत में बारिश के मेघों से नायक और नायिका बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं, आइए हम भी सुनें।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है सांझ ढले, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। ये सावन का महीना और शहरी दिल्ली की शाम, जैसे गाती है कोई नगमा या देती है जिंदगी का पैगाम। बारिश की बूंदों से लरजती हैं हवाएं, उठती है कसक, यूं लगता है जैसे आ रही हो पहले पहले प्यार की कोई दस्तक। पहले प्यार पर एक गीत है फिल्म CID में, जिसमें मोहम्मद रफ़ी के सुरों के साथ सुर मिलाती हैं शमशाद बेगम। शमशाद बेगम की आवाज़ को संगीतकार OP नैयर टेम्पल बेल कहा करते थे, यानी मंदिर में बजने वाली घंटियाँ, इसमें कोई शक नहीं। चलिए सुनकर देख लेते हैं।

इस गीत को लिखने वाले गीतकार मजरू सुल्तानपुरी अपने एक शेर में लिखते हैं कि देख जिंदा से परे रंगी चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। जिंदा का मतलब है कैद खाना, जेल। रंगी चमन यानी बगीचे की सुंदरता। जोशे बहार का मतलब है वसंत का उत्साह। रक्स का अर्थ है नृत्य। जंजीर का मतलब तो आप भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, है ना? तो अपने इस शेर के जरिए मजरूह कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदगी का आनंद लेना है, अपने सपनों को जीना है, तो बंधनों, मजबूरियों या कठिनाइयों में मत उलझो। अपनी बेड़ियों या जेल की दीवारों को देखने के बजाय उसके बाहर वसंत की रंगीन दुनिया को देखो। कितना खूबसूरत मतलब है ना इस शेर का। मजरूह की कलम न केवल हौसलों को उड़ान देती है, बल्कि प्यार के राग को भी वो गीतों में बेहद खूबसूरती से उतारती है। फिल्म तेरे घर के सामने का ये गीत आपके लिए सुनकर देखते हैं, मजरूह की कलम को महसूस करते हैं।

0: इसी गीत के साथ ही सांझ ढली यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
7: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया और राजधानी दिल्ली में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत राजधानी के 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब तक 3000 से अधिक छात्राओं को निशुल्क साइकिलें पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 में पढ़ने वाली 1,40,000 से अधिक बेटियों तक ये सुविधा पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पूरी तरह उनके साथ खड़ी है।
8: ये साइकिल नहीं है, ये मेरी दिल्ली की बेटियों का आत्मविश्वास है। इसे दिल्ली सरकार मजबूत करना चाहती है, वो आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए, हर वो जरूरत जो हमारी इन बेटियों की है उसे हम पूरा करना चाहते हैं।
0: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इन साइकिलों के माध्यम से छात्राओं को मदद मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक समय दे पाएंगी।
9: 1,40,000 बच्चों को साइकिल बटेगी। मैंने लोकसभा के कार्यक्रम में बच्चियों को ये कहते सुना, इस साइकिल से हम ज्यादा समय पढ़ाई में दे पाएंगे। अगली बार मेहनत करके राज्य सरकार की लैपटॉप स्कीम में भी पुरस्कार पाने की कोशिश करेंगे और ये हमारा कंसिडर्ड व्यू है। हम खर्चा बच्चों को एम्पावर करने में करेंगे, फुल पेज विज्ञापन में नहीं करेंगे।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण दिल्ली सरकार के प्रति महिलाओं के उत्साह और भरोसे को दिखाता है। उन्होंने पिंक सहेली कार्ड योजना पर बल देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ राजधानी की हर महिला को मिलेगा, चाहे वो मूल रूप से किसी भी राज्य की रहने वाली हों।
10: दिल्ली राज्य में रहने वाली एक एक बहन, चाहे वो किसी और राज्य की भी है परंतु दिल्ली की निवासी है, हर बहन को पिंक कार्ड मिलेगा, क्योंकि दिल्ली राज्य का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली राज्य के लोगों की सुविधाओं के लिए ही खर्च कर सकी है। तो पिंक कार्ड लगातार बन रहे हैं और दिल्ली की हर बहन के लिए है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज एक निजी मीडिया चैनल द्वारा आयोजित शक्ति अवार्ड 2026 में शामिल हुई। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उद्यम से नई पहचान बना रही महिला उद्यमियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की सोच को नई दिशा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मेरठ, गाजियाबाद और जयपुर से साइबर अपराध कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
11: मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर इस गिरोह से संबंधित करीब 19 शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये शिकायतें महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा सहित कई राज्यों से मिली हैं। इन मामलों में करीब 65 लाख रुपए की ठगी की गई है। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, करीब 52 मोबाइल फोन, 70 डेबिट कार्ड, 145 सिम कार्ड, 6 पॉइंट सेल POS मशीन, 13 बैंक पासबुक और 4 लाख रुपए नकद बरामद किए। दिल्ली पुलिस को संदेह है कि आरोपी विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से बिना सिम कार्ड का इस्तेमाल किए बैंक खातों तक पहुंचकर लेनदेन कर रहे थे। पुलिस इस तकनीकी पहलू की आगे जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश के बहाने लगभग 5 लाख की धोखाधड़ी कर चुका था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के अंतर्गत रोहिणी क्षेत्र से लगभग 41 मामले दर्ज किए हैं और 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। संवाददाताओं से बातचीत में अपर पुलिस उपायुक्त सतीश कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य अवैध हथियारों पर रोक लगाना, सड़क पर होने वाले अपराधों को कम करना और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को जेल भेजना है।
12: ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य है अवैध हथियारों पर अंकुश लगाना, सड़क अपराध को रोकना और जो भी इलीगल गतिविधियों में शामिल हैं उनको जेल के भीतर करना। टोटल हमारी जो रिकवरी है वो 15 फायरआर्म हमने रिकवर किए हैं, 10 चाकू, 26 लाइव कार्ट्रिज, 18,000 क्वार्टर इलिसिट लिकर, 15 किलोग्राम गांजा और 800 ग्राम हेरोइन। तो हमने आर्म्स एक्ट ही नहीं, एक्साइज एक्ट के तहत भी एक्शन लिया है, NDPS एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत भी।
0: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में दिल्ली भाजपा द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। चांदनी चौक के टाउन हॉल से हौज गाजी तक निकली इस यात्रा का नेतृत्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने कहा कि तिरंगा भारत का सम्मान और गौरव है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि और नमन है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दी।
13: ये जो तिरंगा यात्रा है ये स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति सम्मान है। मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ लोग देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हुए, सभी शहीदों को नमन कर रहे हैं।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी के भारत मंडपम में बुधवार से आयोजित होने वाले भारत व्यापार महोत्सव के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
14: यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़ के समय में मथुरा रोड और भैरव मार्ग का उपयोग न करने की सलाह दी है। इन मार्गों पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक गाड़ी रोकने और पार्क करने पर रोक रहेगी। यातायात पुलिस ने बताया कि वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रिंग रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं यात्रा की योजना पहले से बना लेने और यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर चलने को कहा गया है। यातायात पुलिस ने ISBT

0: रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाने की सलाह दी है। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली देहात विकास मंच के प्रतिनिधि और NH-5 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों से मुलाकात की। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया के लिए 2574 करोड़ रुपए की एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायता प्राप्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों और घरों तक पानी पहुंचाने वाली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नल के पीछे का पूरा सिस्टम मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज शून्यकाल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए और विधायी कार्यों में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की 19वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट सदन में पटल पर रखी। विशेष उल्लेख के दौरान भाजपा विधायक डॉ अनिल गोयल ने सफाई का मुद्दा उठाया, वहीं भाजपा विधायक गजेंद्र यादव ने महरौली में अस्पताल शुरू करने का मामला उठाया। साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने पुराने दिल्ली के कई क्षेत्रों में लगने वाले जाम से लोगों को होने वाली परेशानी का मामला रखा। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने सदन में विपक्ष द्वारा अनुचित नारे वाले टी शर्ट पहनकर आने पर आपत्ति जताई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप पार्टी के विधायकों को सदन की गरिमा को बनाए रखने को कहा। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह एक प्रस्ताव लेकर आए। इस प्रस्ताव में कुलदीप कुमार, संजीव झा, जरनैल सिंह, अजय दत्त, प्रेम कुमार, सोमदत्त सहित 6 आप विधायकों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण सदन से बाहर करने को कहा गया था। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। इसी दौरान सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी किया गया। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली नागरिकों का समय पर और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली वासियों को सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में पारदर्शी और बिना अनावश्यक भागदौड़ के उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तुत किया। इसके बाद दिल्ली लक्ष्मी योजना पर कई विधायकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार को धन्यवाद देकर आभार जताया। आरकेपुरम से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने लक्ष्मी योजना पर कहा कि महिलाओं को सम्मान देना सरकार का मूल सिद्धांत है। वहीं आप पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि अधिकारियों के दबाव में ये योजना सही नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिससे जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिल सके। इसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में भूमिका के लिए राजनीतिक नेताओं की दोष सिद्धि पर अल्पकालिक चर्चा शुरू हुई। इस मुद्दे पर अभी चर्चा जारी रहेगी। सदन की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। और राजधानी दिल्ली में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभु शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबिदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है।

चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेन देन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ. अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ. धर्मशीला गुप्ता, डॉ. दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ. कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉ. के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा, ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक

और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में तीन अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन थे जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए।
हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मानसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत NCDC को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला NCDC एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। भारत ने 3 पदकों के साथ किया वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का समापन। मोहन बागान सीआईएसएफ को हराकर डूरंड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। बोधना शिवानंदन और श्रेयस रॉयल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। और एफआईएसयू विश्वविद्यालय स्कॉश चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेल विजेताओं से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। Always cheer for Bharat. Bharat Mata Ki. Bharat Mata Ki. Bharat Mata Ki.
0: मोदी ने कहा कि सम्मान केवल रिबन काटने से नहीं मिलता, बल्कि एक महत्वाकांक्षी खिलाड़ी के मन में जोश भरने से मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जीत आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
2: इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा।
3: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजुरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
2: बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने लवलीना बोरगोहेन की एकाग्रता की भी सराहना की।
2: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
4: सर उस दिन हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था, सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, तो उन्होंने बोला कि हम चेंज भी करेंगे। अभी चेंज भी हो गया सर।
2: नहीं, लेकिन ये इस विजय की परिस्थिति, एक खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
0: जादूमणि सिंह ने करगिल दिवस से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए।
2: करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
5: उस दिन करगिल डे था, वैसे जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया, हमारा इंडियन आर्मी का करगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
2: आपको यह याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं तो मैं जरूर मानता हूँ कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित कर, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, जिसको पराजित करना था उसी को किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए लगातार जीत हासिल करने में भारतीय खिलाड़ियों के समर्पित प्रयास और निरंतर सफलताएं विद्यार्थियों को प्रेरित करती हैं।
2: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में, अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
0: प्रधानमंत्री ने देश को गौरवान्वित करने के लिए पदक विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। और अब बात एथलेटिक्स पर। अमेरिका के यूजीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का अभियान 3 पदक के साथ समाप्त हुआ। नेशनल सीनियर रिकॉर्ड होल्डर पूजा सिंह महिलाओं की हाई जंप फाइनल में 7वें स्थान पर रही। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
6: वर्षीय पूजा इस साल की शुरुआत में 1.93 मीटर का नेशनल सीनियर रिकॉर्ड बनाने के बाद इस प्रतियोगिता में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उतरी थी। हालांकि फाइनल में वो केवल 1.84 मीटर ही पार कर सकी। इसके बाद वो 1.87 मीटर की ऊंचाई पार करने की तीनों कोशिशों में नाकाम रही और प्रतियोगिता से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की इजोबेल लुइसन रो ने 1.92 मीटर की ऊंचाई पार करके स्वर्ण पदक जीता। हंगरी की लिलियाना बाटोरे ने रजत और स्पेन की इताना अलोंसो ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस वर्ष पूजा ने मई में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.93 मीटर का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। वो सीनियर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मौजूदा चैंपियन भी हैं। भारत की महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वो फाइनल में आखिरी स्थान पर रही। भारतीय टीम में भूमिका नेहते, तहुरा खातून, तनु चौधरी और थिया अरुमुगम शामिल थी। अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण, ऑस्ट्रेलिया ने रजत और ग्रेट ब्रिटेन ने कांस्य पदक जीता। भारत ने चैंपियनशिप का समापन 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किया, जो वर्ष 2021 और 2022 के संस्करणों में जीते गए कुल पदकों की संख्या के बराबर है। आशीष यादव ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को टूर्नामेंट का पहला पदक दिलाया था। वहीं बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप में एक और सिल्वर मेडल जोड़ा, जबकि शहनवाज खान ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में कांस्य पदक हासिल किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित की जाएगी। विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: हॉकी विश्व कप के पारंपरिक क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। दोनों क्रॉसओवर पूलों से शीर्ष दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। नए प्रारूप के कारण टीमों के पास शुरुआत से ही गलतियों की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि पहले पूल चरण के परिणाम अगले चरण में भी लागू हो सकते हैं। भारत की पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत में प्रत्येक प्रतियोगिता की 16 टीमों को 4-4 टीमों के 4 पूलों में बांटा जाएगा। 15 से 20 अगस्त तक प्रत्येक टीम अपने पूल की अन्य टीमों के खिलाफ 3 मैच खेलेंगी और अंतिम रैंकिंग के आधार पर अगले चरण की टीमों का निर्धारण होगा। पूल ए और डी की शीर्ष दो टीमें पूल ई में प्रवेश करेंगी, जबकि पूल बी और सी की शीर्ष दो टीम

0: में पूल एफ में खेलेंगी। पूल ई और पूल एफ से शीर्ष दो टीम सीधे अंतिम चार में पहुंचेंगी। प्रतियोगिता के महिला वर्ग का समापन 29 अगस्त को, वहीं पुरुष वर्ग का अंतिम मुकाबला 30 अगस्त को खेला जाएगा। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात स्क्वैश पर। मुंबई में खेले गए FISU विश्व विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में पहली बार भारत ने स्वर्ण, मिक्स टीम चैंपियनशिप में रजत और व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीते। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: India secured 3 medals at the 2026 FISU World University Championship Squash, with Surat Kumar Chand winning the men's singles gold, India earning silver in the mixed team event, and Om Samwal sharing the men's singles bronze. India's Suraj Kumar Chand, a student of Somaiya Vidyavihar University, won the men's singles gold medal after defeating Hungary's Benedek in a thrilling 5-game final. Suraj thus became the first Indian ever to win the men's singles title at the FISU World University Championship squash in 16 years. Suraj is also part of the Indian squash squad for the upcoming Asian Games. India's Om Samwal and Francis Joshua shared the men's singles bronze medals after reaching the semi-finals, adding another podium finish to the men's singles event. India followed its strong showing in the singles events with a place in the team event final after overcoming Spain 3-1 in the semi-final. The final against Hong Kong China was closely contested, with both teams winning 2 rounds each. With the score tied at 2-2, the team event title was decided by game difference. Hong Kong China finished with 8 games won to India's 6, securing the gold medal while pipping India to the silver medal position. For SportsCan, this is S. Kishore from Mumbai.
1: स्वर्ण पदक विजेता सूरज कुमार चांद ने जीत के बाद अपने अनुभव साझा किए।
3: Really happy after winning this tournament and becoming the first Indian to win this. काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये टूर्नामेंट खेल के। लास्ट टाइम हमें ब्रॉन्ज मिला था टीम इवेंट में और मुझे पर्सनली ब्रॉन्ज मिला था इंडिविजुअल्स में, तो इस बार गोल्ड जीत के और सिल्वर जीत के काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मैं काफ़ी हैप्पी हूँ अपने रिजल्ट से।
1: चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। डूरंड कप फुटबॉल में मोहन बागान सुपर जायंट्स ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज CISF प्रोटेक्टर्स को 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं नेहा की ये रिपोर्ट।
4: बागान ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के नायक साहल अब्दुल समद रहे, जिन्होंने पहले हाफ में ही हैट्रिक जमाई। उन्होंने 17वें, 19वें और 37वें मिनट में गोल किए। उनके अलावा मनवीर सिंह ने 24वें, जेमी मैकलारेन ने 68वें और टेकचाम अभिषेक सिंह ने 73वें मिनट में गोल दागे। इससे पहले कल हुए ग्रुप डी के अपने आखिरी मैच में TRAUFC ने इंडियन नेवी को 2-1 से हराया। इस मैच में अफरीदी बुयामायूम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। बुयामायूम ने 16वें मिनट में एक शानदार कर्लिंग शॉट के साथ खाता खोला, लेकिन खेल फिर से शुरू होने के ठीक 16 सेकंड बाद खुल्ला कपम जहीर खान ने गोल कर मुकाबले को बराबर कर दिया। इसके बाद बुयामायूम ने 60वें मिनट में TRAU को फिर से बढ़त दिलाई और अपनी बढ़त बनाए रखी। इंडियन नेवी ने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा और 26 बार गोल करने की कोशिश की, जिसमें से 15 शॉट टारगेट पर थे, लेकिन TRAU के डिफेंस और गोलकीपर ताजुद्दीन ने उन्हें बार बार रोका। वहीं TRAU ने सिर्फ 8 शॉट लिए और 2 गोल भी दागे। इस नतीजे के साथ TRAU 3 मुकाबले में 4 अंकों के साथ ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही, जबकि इंडियन नेवी ने 3 अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। कोई भी टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सकी। पहली बार खेल रही FC रेंगदाई ग्रुप में शीर्ष पर रही और अंतिम 8 में जगह बनाई। इंडियन नेवी के लगातार अटैक के बावजूद वे बराबरी का दूसरा गोल नहीं कर सके और TRAU ने कड़े मुकाबले के बाद जीत हासिल की। इस जीत के साथ TRAU का डूरंड कप अभियान समाप्त हुआ। लंबे समय तक सेलर्स के दबदबे वाले इस मैच में बुयामायूम की फिनिशिंग और ताजुद्दीन की गोलकीपिंग ने आखिरकार निर्णायक भूमिका निभाई। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब बात शतरंज पर। भारतीय मूल के दो खिलाड़ियों ने ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 में इतिहास रच दिया है। 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन और 17 वर्षीय श्रेयस रॉयल ने कल ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। बोधना ब्रिटेन की अब तक की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियनशिप

0: ने का खिताब जीतकर महिला सिंगल्स में उन्होंने जगह बनाई थी। उन्हें उधर फाइनल में उन्होंने आयरलैंड की 14 वर्षीय त्रिशा कनेमाराला को रोमांचक रैपिड प्लेऑफ में हराया। वहीं दक्षिण पूर्व लंदन के श्रेयस रॉयल ने 9 दौर के बाद सबसे ज्यादा अंक हासिल कर ओपन ब्रिटिश खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इंग्लैंड के अनुभवी ग्रैंड मास्टर्स को आधे अंक से पीछे छोड़ा। ये उनका पहला ब्रिटिश खिताब भी है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
3: The bill, among various other things that it wants to do.
4: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
3: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
5: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता

0: दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
5: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगयांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
6: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत

0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
1: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नृत्य निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during Assembly March in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in the men's and women's Pool D. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to the Lok Sabha after discussions. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on the 5th of June this year. Replying to the discussion, Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
4: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
3: The Parliament also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister had moved the bill, which has a provision that an electronic or digital record of the banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Replying to discussion on the bill, Finance Minister Sitharaman said, "This bill is a very reformative step which will help the country move forward at a faster pace."
4: The bill, among various other things that it wants to do, provides for a technology-neutral legal framework for bankers' books. It recognizes electronic and digital banking records. It standardizes the certification process, facilitates the admissibility of electronic banking records. It permits authentication through manual, digital and electronic signatures. It also therefore strengthens the statutory protection.
3: After completing its business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha today passed the Tribunals Reforms Bill 2026. The bill was passed without any discussion amid uproar by opposition members after several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET matter. As the pandemonium continued, the chair adjourned the house for the day. Our correspondent brings a report on today's proceedings in both the Houses of Parliament.
5: Both the Houses of Parliament today faced repeated disruptions due to the opposition protest and uproar on various issues. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were both adjourned for 3 times due to the opposition ruckus. However, the Lok Sabha completed its legislative business by introducing 4 bills, of which one legislation, the Tribunals Reforms Bill 2026, was passed without discussion. The Rajya Sabha also completed its listed legislative business. The Bankers' Books Evidence Bill 2026 aimed at modernizing the banking system and bringing it in line with the requirements of the digital era was passed by the upper house. In addition, the house also discussed and returned the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 to the Lok Sabha. With Suparna Saikia, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the house and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee meeting held at Parliament House. He said the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this house. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Mr. Rijiju appealed to the opposition to allow the House to function so that Union Home Minister Amit Shah can make a statement about the students' protest and address all concerns raised by the opposition members.
6: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा
7: देयर कैन बी डिस्कशन ऑन द स्टूडेंट मूवमेंट इन दिल्ली एंड ऑल स्टूडेंट रिलेटेड मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस अक्रॉस द कंट्री माय रिक्वेस्ट टू द कांग्रेस पार्टी एंड आवर कलीग्स इन द अपोजिशन इज दैट सिंस द गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस द स्टूडेंट मूवमेंट यू शुड नॉट क्रिएट एनी रकस ड्यूरिंग द डिस्कशन एंड यू शुड लिसन टू द होम मिनिस्टर्स रिप्लाई एंड द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स इन फुल
6: सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे.
3: Leader of the opposition in the Rajya Sabha and Congress MP Mallikarjun Kharge demanded that Home Minister Amit Shah make a statement in Parliament on the action taken against students. Talking to media at Parliament premises, Mr. Kharge said the opposition's demand in both houses is for Home Minister to come to Parliament and make a statement on the issue. The BJP today accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of disrupting parliamentary proceedings and shifting the goalpost of discussions. Talking to media in New Delhi, BJP leader JP Nadda claimed that Mr. Gandhi's objective is not to engage in dialogue but to spread chaos. He said that the government has consistently expressed its willingness to hold discussions and Home Minister Amit Shah is ready to answer every question on every issue. In Jharkhand, protests have intensified over alleged irregularities in recruitment examinations after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. Our correspondent has the details.
8: Thousands of aspirants led by the JPSC-JSSC Reforms Manch marched towards the Vidhan Sabha and attempted to cross several barricades, following which police used water cannons and tear gas. The protesters are demanding an independent CBI probe into the GSSC CGL examination and comprehensive reforms in the JPSC-JSSC examination system. Meanwhile, the Jharkhand CID arrested former JPSC chairman El Kyante in connection with the alleged recruitment examination irregularities. Union Minister of State for Defence Sanjay Seth criticized the police action and reiterated the demand for CBI and ED probes. BJP MP from Hazaribagh, Manish Jaiswal, met Union Home Minister Amit Shah and raised the issue of alleged irregularities in the JPSC-JSSC examinations and the students' agitation seeking a CBI probe. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
3: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. The 80th Independence Day celebrations this year will highlight Yuva Shakti and the contribution of young India towards building a Viksit Bharat by 2047, along with the commemoration of 150 years of the national song Vande Mataram. Briefing media in New Delhi today, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh said the celebrations will be led by Prime Minister Narendra Modi from the historic

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चराग को रोशन कर दे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में न हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद।
2: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं हैं। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज़ भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यू जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आम तौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की ज़िंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, 2

0: लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
1: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
2: नमस्कार जी मनीष जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है, और दूसरा है ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
1: जी, तो आपने दो तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है, तो उसका जवाब आपको देंगे भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ डॉक्टर अनिल, कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
0: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में, जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए, या तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके, और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
3: जहाँ तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब ये होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा खराब हो गया हो, या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
1: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
4: जी जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश जी। और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते या न दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
1: अंग दान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
0: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है, तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
1: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिल ही गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है, चूंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं, तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने वो आप तक पहुँचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही खास एक ये स्थिति होती है कि अंगदान जो है, जहाँ तक बड़े शहरों की बात है,

0: देश की राजधानियां हैं या जो महानगर हैं, वहां पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
1: इसमें अंगदान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंगदान एक मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र एक मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूँ, 1-800-114770, 1-800-114770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है। कहीं से भी आप कोई अंगदान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंगदान करवाना चाहे तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है, तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा कर के कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है। 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फ़ोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हों तो।
0: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: जी जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, मतलब कि जो लोग अंगदान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंगदान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए, ऐसा है कि कोई भी अंगदान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंगदान नहीं हो सकता है।
0: जी, तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार सानी। जी विजय जी, कहिए। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, विजय जी।
4: हाँ मनीष जी।
0: जी
4: मनीष जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार।
4: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल यह है कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
0: अंगदान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानना चाहते हैं।
1: हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंगदान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, noto.mohfw.gov.in या नोटो भी लिखे।

0: तो ये वेबसाइट आ जाएगी, तो आप इस वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे, तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे, तो आधार नंबर के बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है, और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा 1 मिनट का। आपके उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे, और इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहाँ पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत ज़रूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये इसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पे कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत चाकड़े जी। श्रीकांत जी, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: हेलो,
1: जी,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: मैं
1: श्रीकांत।
2: जाकर बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है, रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? आई डोनेट करने वाला जो है।
1: जी, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश। जी,
3: जी, ऐसा है श्रीकांत जी कि आपका आपकी जो नज़र गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उसमें हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दा पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए, और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके, उसका इलाज करके आपकी नज़र को वापस ला सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 0112331048 और 2371-7117 तथा 2371-7106। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं, 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना, 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, बताइए क्या है आपका सवाल।
4: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्रदान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो, तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको

0: खबर देनी होगी। दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
1: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं। उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ़ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था वो
2: कैसे खबर करें,
1: हाँ पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था, वहाँ कर सकते हैं। और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
3: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कहिए क्या है आपका सवाल।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
3: नमस्कार
0: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो प्रोसीजर के बारे में पूछना था। जैसे कोई एक आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसमें क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है। थैंक यू।
2: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी 2 नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं ज़रूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हों। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फ़र्ज़ समझते हैं कि हमारी एक फ़र्ज़ है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएँ। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है, तो आप बताएं ज़रूर। ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूँ, 1800-11-4770, 2400 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी
3: जी, हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ये लिखा है, मोहम्मद कासिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
4: जी नमस्कार।
3: जी जी नमस्कार।
4: मेरा सवाल, 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो अबाउटेड क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
3: जी,
1: जहाँ तक आपने कहा क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आँख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है, और सही है या नहीं है।

0: तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफ्थाल्मोस में पुतली भी ख़राब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फ़ायदा नहीं होता है।
1: जी
0: जो
1: शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
2: नमस्ते
1: जी
2: सर,
1: नमस्कार। नमस्कार
2: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
0: आपको भी।
1: आपको भी
2: जी, मतलब दो छोटे छोटे सवाल। एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना परसेंट डोनेट कर सकते हैं अपन, प्लीज बता दीजिए।
1: जी, हमारा जो देखिए आज का विषय है और उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
3: जी, वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लिवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो लिवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है। एक दो लोब होते हैं लिवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है, या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30 से 40% और राइट होता है 50 से 70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज़ को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
1: जी, और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044, और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं, अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
0: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
1: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
3: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल, और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे आता है उनको अंगदान के इस नेक मुहिम के लिए आगे आने।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: शर्मा को। नमस्कार
1: नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
4: The bill, among various other things that it wants to do.
5: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
4: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
3: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड

0: Very heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. According to IMD, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Gujarat, Haryana, Chandigarh and Delhi will experience heavy rainfall at isolated places tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar, Akashvani se Vishw Darpan ke saath main Sir Firozi. पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से 47 लोगों की मौत और कई इमारतें गिरी। भारतीय राजदूत दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा। चीन के पूर्वी तट पर तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश और बाढ़ आई, लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तेल केंद्र तातारस्तान क्षेत्र में 13 लोग मारे गए और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। अब समाचार विस्तार से। कोलंबिया में आज 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से 47 लोगों की मौत हो गई और पश्चिमी हिस्से के शहरों में कई इमारतें ढह गईं। मलबे में लोगों के फंसे होने की खबर है और कई लोग घायल हैं। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र के सैन जोसे डेल पालमार में था। झटके पड़ोसी देश इक्वाडोर में भी महसूस किए गए। इंडोनेशिया के जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यहां शुष्क मौसम के दौरान आग फैल रही है और अब तक 1,07,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है। आग बुझाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों और हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। ब्रोमो टेंगर सेमेरू राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र का लगभग करीब 743 हेक्टेयर क्षेत्र जल चुका है। इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इंडोनेशिया के राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री दजामारी चानियागो ने कहा कि 18 अगस्त तक कृत्रिम वर्षा अभियान चलाना संभव नहीं होगा क्योंकि वर्षा के लिए उपयुक्त बादल मौजूद नहीं है। नेपाल ने 2021 से 2025 के बीच आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में 695 चीनी नागरिकों को देश से निर्वासित किया है। आव्रजन विभाग के आंकड़ों के अनुसार ये नेपाल से निर्वासित किए गए विदेशी नागरिकों में सबसे बड़ी संख्या है। एक रिपोर्ट।
2: इन 5 वर्षों के दौरान नेपाल ने कुल 2,267 विदेशी नागरिकों को निर्वासित किया, जिनमें चीनी नागरिकों की हिस्सेदारी 30.65% रही। इन 5 वर्षों में निर्वासित किए गए विदेशी नागरिकों में अमरीकी नागरिकों का दूसरा स्थान रहा। अमरीका के 191 नागरिकों को नेपाल से निर्वासित किया गया, जबकि बांग्लादेश के 145 नागरिकों को वापस भेजा गया और वह तीसरे स्थान पर रहा। ब्रिटेन के नागरिक चौथे और पाकिस्तान के नागरिक 5वें स्थान पर रहे। आव्रजन विभाग के अनुसार कानूनों के करने, वीजा की शर्तों को तोड़ने या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर विदेशी नागरिकों को कानून के अंतर्गत जुर्माना लगाने और वसूलने के बाद देश से निर्वासित किया जाता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ पहली मुलाकात को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि दोनों देश न केवल सीमा साझा करते हैं बल्कि सपनों को भी साझा करते हैं। श्री त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान और गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि चर्चा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर केन्द्रित रही। बैठक के बाद पत्रकार से बात करते हुए श्री त्रिवेदी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बीच होने वाली बैठक का इंतजार कर रहा है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के एक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में पाकिस्तानी अधिकारियों की बर्बर कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी के अनुसार पिछले एक महीने में पीओ

जेके में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के दौरान 93 नागरिकों की मौत हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज

0: आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील इलाकों से लगभग 1,68,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका था। कल देर शाम तक शंघाई से जोखिम वाले इलाकों से 2,15,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। फुजियान में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। तूफान के कारण परिवहन और पर्यटन में व्यापक व्यवधान बना हुआ है। यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान क्षेत्र में स्थित तेल केंद्र निजनेकामस्क पर हमला किया, जिसमें 13 लोग मारे गए और 75 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन की सेना ने बताया कि उसने निजनेकामस्क में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 1,200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसकी आबादी लगभग 2,40,000 है। रूस के अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि ड्रोन ने किसे निशाना बनाया, लेकिन शहर में 2 रिफाइनरियां और एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थित है। यूक्रेन पिछले कुछ महीनों से लगभग हर दिन लंबी दूरी के ड्रोन से रूसी तेल सुविधाओं को निशाना बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा, तब तक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोला नहीं जाएगा। तेहरान में श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस जलमार्ग को फिर से खोलना अमरीका और इसराइल की ओर से ईरान और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर की गई कार्रवाई पर निर्भर करेगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच वैकल्पिक समुद्री मार्ग को लेकर बातचीत द्विपक्षीय मामला है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा था कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हंस ग्रनबर्ग ने मोचा शहर पर हूती हमलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि सैन्य तनाव बढ़ने से यमन में फिर से बड़े पैमाने पर संघर्ष हो सकता है। श्री ग्रनबर्ग ने कहा कि मोचा पर हुए हमलों में 8 लोगों के मारे जाने और बंदरगाह सहित बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबर है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने के लिए उनके कार्यालय के साथ मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से 47 लोगों की मौत और कई इमारतें गिरी। भारतीय राजदूत दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तेल केंद्र तातारस्तान क्षेत्र में 13 लोग मारे गए और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्यार में अकेले भी होते हैं तो, लेकिन उस अकेलेपन में भी एक सुकून होता है ना, मानते हैं ना आप भी। मैं रितिका आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जी हाँ, हर श्रृंगार। ये जो गीत आपने सुना, ये फिल्म 1988 में कयामत से कयामत तक फिल्म का था। मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा ये गीत अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़ और इस गीत को संगीत से सजाया आनंद मिलिंद ने। मैंने ये इसीलिए कहा भाई, प्यार में अकेलापन जो होता है ना, कभी कभी सुकून देने वाला होता है, क्योंकि दिल जानता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उतना ही हमें भी चाहता है ना। तो बस यूं ही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ बने रहिए और यूं ही जो गीतों के जरिए हम प्यार बांट रहे हैं ना, यूं ही बांटते चलिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सावन बरसे और बिल्कुल दिल तरसता है ऐसे ही मीठी मीठी गीतों के लिए, लेकिन आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ना आपके पास, बस ट्यून इन कीजिए 100.1 मेगा हर्ट्स पर और तैयार हो जाइए इन मीठे मीठे गीतों के साथ इस सावन में झूमने के लिए। '99 में आई फिल्म दहक से आपने ये गीत सुना, साधना सरगम और हरिहरन की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया आदेश श्रीवास्तव ने और इस गीत को लिखा आनंद मिलिंद ने। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया आदेश श्रीवास्तव और आनंद मिलिंद ने।

तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रावधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya

0: Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444 or 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Niharika Bhuvania with you this evening with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं, लेकिन आज सोमवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको भी किया करते हैं आमंत्रित हमसे सवाल पूछने के लिए. अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल यदि आप पूछना चाहते हैं तो डायल कीजिए 2331-4444-2331-0481 या फिर 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को या जो मोबाइल फोन से फोन करना चाहते हैं उन्हें दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करना होगा. बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं. हमसे खबरों के पर चर्चा के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी नमस्कार.
2: नमस्कार मनोज जी.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका.
0: Well, let's take a look at the headlines first for this evening. Benchmark domestic indices end on a flat note. Sensex adds 43 points. Nifty settles at 24,584. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI. And global crude oil prices rise.
1: बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए आज घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 43 अंक उछला. निफ्टी 24,584 दर्ज हुआ. संसद ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया आश्वस्त, कहा छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we move forward, a small note for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 43 अंक बढ़कर 78,542 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंक बढ़त के साथ 24,584 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की मांग में मिला जुला रुख दिखा है. एक और खरीदारी से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.6% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.3% की गिरावट भी हुई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेसेस एंडेड ऑन अ फ्लैट नोट टुडे. द सेंसेक्स रोज 43 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,542. The Nifty added 13 points to settle at 24,584. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained over 0.6%, while the Small-Cap 100 Index dipped nearly 0.3%. Earlier, the benchmark indices opened slightly up and briefly slipped into negative territory. However, the Sensex and Nifty recovered their initial losses and traded in positive zone for most of the range-bound session. Despite a slight pullback in the final hour of trading, both indices ended marginally higher following the closing auction session.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक के प्रदर्शन पर तो 30 में से

19 कंपनियों को आज फायदा हुआ है। सबसे अधिक फायदा टाइटन कंपनी के शेयरों में देखने को मिला, जिसके भाव 3.1% बढ़कर बंद हुए। बजाज फाइनेंस को 1.9% का और बजाज फिनसर्व के शेयर 1.1% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही भारतीय स्टेट बैंक, जिसके शेयरों में 2.2% की कमी देखने को मिली। इटर्नल

0: 88 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, realty advanced 1.6%, consumer durables rose 1.2%, and capital goods gained almost 0.5%. In contrast, PSU banks dipped 1.3%, housing finance shed 0.6%, and mid-small private banks' quality tilt lost over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,226 companies declined, 2,225 advanced and 194 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 8 पैसे कमजोर हुआ, 95 रुपए 29 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में आज की गतिविधि पर यदि आपकी हम प्रतिक्रिया समझना चाहें तो बताएं कि क्या सब बाजार में रहा.
2: आज देखिए बाजार जो है थोड़ा फ्लैट रह रहा है. अगर आप देखें अर्निंग सीजन जो है काफी अच्छा चल रहा है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा, लेकिन ऑयल और जियोपॉलिटिकल जो अनिश्चितता बनी हुई है उस वजह से थोड़ा सा वो वे कर रहा है बाजार के ऊपर, तो ये इसीलिए थोड़ा फ्लैट दिख रहा है.
0: And with that, we also have our first caller this evening. Dr. Prafulit Bish joins us from Delhi. Good evening, Dr. Prafulit. Please ask your question.
3: Hello, good evening, everyone. I'm a regular listener of Market Mantra, and it's immense pleasure to get the insightful knowledge. My question is regarding, I'm a new investor in terms of SIP. So I recently started 2,500 rupees four SIPs in sectoral this thing. The one is Nifty Index Funds, small index and mid cap and large cap. So is it the right strategy? Because I was reading about it, someone said that this is not a right strategy to go, or maybe 10,000 in one SIP would have been a better choice. So what would you suggest me? What should I read so that I'm looking at a long time duration, for example 30 years or 35 years delay I'm trying to invest. Yeah, thank you, ma'am.
2: Thank you, Dr. Bisht, and a pleasure to have you on the show. And it's nice to know that you are a regular listener. See, we always advise investors to diversify, to, have a very balanced portfolio. While, like you've said, you have invested in four SIPs and you have tried to balance it out. But you also have to see there is a cost of investment involved. So if you're putting in small amounts in four SIPs, you are also incurring costs at four different places. So that also adds to your cost of acquisition. So you have to see how you can sort of balance it and whether it is more cost effective to do it at have two invest in two products or invest a consolidated sum in four, in one product. But that is something you'll have to figure it out. It is advisable to have a balanced portfolio, but you also have to see the costs involved.
1: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमित. अमित जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए.
4: हाँ, नमस्कार सभी को. शिखा मैडम से प्रश्न ये है मैम कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईटी कंपनी अभी भी अंडर प्रेशर में है, बट दिग्गज कंपनी है, नाम तो नहीं ले सकते प्रोग्राम में, ये आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है मैम, और वो पिछले दिसंबर 2025 से लेकर के जून तक वो 46% माइनस में थी, यानी कि डाउन चल रही थी. ठीक है मैम. हेलो
2: जी. जी अमित जी, पूछे अपना सवाल.
4: और जून के बाद उसने अपने लोअर लेवल से 20% की रिकवरी हुई है, तो क्या हमारी आईटी कंपनी पूरी तरह एआई के जो चैलेंज से उबरने के लिए तैयार हो चुकी है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जो भी समस्या आ रही थी, तो क्या उसके जो है समस्या खत्म हो चुकी है या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं अभी भी? धन्यवाद.
2: अमित जी देखिए, टेक क्षेत्र जो है अभी उस पर ये अनिश्चितता जो एआई के वजह से हो गई थी, ये अभी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत क्लैरिटी आई है कि आगे कितना असर हो सकता है हमारी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर. लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये माहौल अब बन रहा है कि ये हो सकता है एक बहुत बड़ा बबल हो. हमारी जो कंपनियां हैं टेक क्षेत्र की, वो भी तैयारी कर रही

0: है कि वो किस तरह से इस नए नई चुनौती को हैंडल कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि खतरे के बादल पूरी तौर से छट गए, क्योंकि अभी एआई का पूरा असर आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एआई आने से हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, अगर वो अपने आप को तैयार कर लेती हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आए नई व्यवसाय के तहत।
1: यहाँ पर दीपशिखा जी थोड़ा समझना चाहेंगे श्रोताओं के नज़रिए से कि अक्सर जब कोई एक नई तकनीक आती है और ऐसी तकनीक जो समझ में ना आने लायक हो तो थोड़ा सा भय होता है, आशंका होती है। जैसे कंप्यूटर का ही जब आगमन हुआ था तो चिंताएं थी कि कंप्यूटर नौकरी खा जाएगा। इसी तरह एआई एआई बहुत सारे कामों को निश्चित रूप से आसान बना दे रहा है, तो यह रोजगार के अवसर कहाँ दे रहा, कैसे इसका जो नया स्वरूप निकलेगा उसमें ये सहायक कैसे साबित होगा, आशंकाओं के बादल से निकलने के सूत्र के रूप में समझना चाहेंगे इसे।
0: मनोज जी, देखिए, एआई जो है एक नया क्षेत्र आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें, एआई जो है जिस तेजी से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, एआई खुद ही रेलेवेंट नहीं रहेगा,
1: बिल्कुल
0: इतना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा चीज है कि एक कॉस्ट है एआई की। अगर आप ह्यूमंस को रिप्लेस करना चाहते हैं एआई से, तो वो कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है कंपनीज के लिए आज की तारीख में। हो सकता है वो कॉस्ट आगे चल के कम हो जाए, लेकिन ये जो मैनेज करना है एआई का इंटरफेस जो है कंपनीज के साथ या ह्यूमंस के साथ या जो भी अडॉप्शन है, उसके अडॉप्शन में भी आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो ये है कि ये एआई जो है, हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज और नए रोजगार के अवसर पैदा करे। हम देख रहे हैं किस तरह टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ और उस तरह से व्यवसायों का जो चरित्र है वो किस तरह से बदल रहा
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो उम्मीद की जाती है कि नए अवसर भी पैदा होंगे।
2: And with that, let's take a look at the next story for this evening. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. The ordinance was promulgated with the objective of mitigating the impact of external economic shocks. The bill further exempts foreign institutional investors and the Bank for International Settlements from paying income tax on interest earned on investments in government securities. The bill further amends the Income Tax Act to exempt income earned by certain foreign companies from the sale of rough diamonds in a notified special zone. Replying to the discussion, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, "No merchant discount rate framework has been finalized." She assured that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. Let this be clear. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges.
2: So, Deepshika, a small comment from you on this. Given that UPI today has assumed massive proportions in the country, and even the smallest transaction requires UPI now, not requires maybe, but is the default go-to mechanism. And with that, the volume of transactions has also improved quite a bit. It has also increased multifold. So, your comment on this bill, on this law, and how is it going to impact the economy overall?
0: Niharika, if you see, if you heard the finance minister, she's clearly saying that this is an enabling amendment, which will enable the government to sort of pave the way for, imposition of MDR. Now, the thing is, MDR, why is it required? We've seen how digital payment industry, the entire sector has grown. It has grown in volumes. So how do the companies which support this growth or support these transactions also sort of survive? They also need to make some money on it.
2: Of course.
0: They also need to invest in technology to further improve, interface with customers. So which is what a levy of MDR will allow.

0: And the government has assured that, you know, smaller transactions, or smaller merchants, they would not face this charge. So this whole expansion which has sort of happened, you know, you now have vegetable vendors or anyone even taking small payments over, UPI or phones, that would still be facilitated. So government has assured that that would be taken care of. So I think that fear should not be there that, you know, MDR will, sort of raise the cost of digital transactions. Not all transactions will attract it. Smaller ones will be sort of kept out, and traders would also, smaller traders would be spared.
1: Very well.
2: आइए आगे बढ़ाएं कार्यक्रम का सिलसिला और आमंत्रित करें अपने एक नए श्रोता नितिन जी को. नितिन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
3: नमस्कार सर.
0: नमस्कार नितिन जी.
3: जी दीपशिका मैडम को भी नमस्कार.
0: जी नमस्ते.
3: मैम मेरा एक मार्केट के बारे में एक छोटा सा सवाल है. जैसे मतलब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करता है तो जो डीमैट अकाउंट जो भी प्रोसीजर है वो कर देता है, तो क्या इसके लिए मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करना पड़ता है इससे पहले, ऐसा कोई नियम है? जैसे मार्केट में एंटर करता है आदमी तो फाइनेंशियली एक्टिविटीज बढ़ती है, जैसे कैपिटल गेन्स हो गया, TDS वगैरह वगैरह, तो क्या ये जरूरी होता है? जो टैक्सेबल जो आदमी उसका इनकम टैक्सेबल नहीं है, ऐसे आदमी अगर मार्केट में एंटर करता है और अपना डिमांड अकाउंट खोल के चालू करता है तो क्या? थैंक यू मैडम.
0: नितिन जी देखिए, आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो तब आपको कोई ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है. लेकिन अगर आपकी आय नहीं भी है और आप बाजार में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसमें आपका ऐसा कोई गेन भी नहीं आया, आपका कर नहीं बन रहा है, देनदारी नहीं बन रही, तो भी आप एक निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है. लेकिन अगर आपके गेन्स हो रहे हैं, कैपिटल गेन्स हैं, तो उसके लिए तो आपको रिटर्न फाइल करना ही होगा.
2: हाँ, यानी जिस समय आप काम शुरू करने जा रहे हैं उस समय कोई
0: औपचारिकता नहीं है. जी.
1: And with that, let's move towards the next story for this evening. India's urban unemployment rate for persons aged 15 years and above rose marginally to 6.7% during the April to June quarter of current fiscal year, from 6.6% in the previous quarter. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, Periodic Labour Force Survey Quarterly Bulletin, unemployment rate in rural areas increased to 4.8% from 4.3% during the fourth quarter of the last fiscal year. Meanwhile, the female urban decreased to 8.7% in the current quarter from 9.1% in the last quarter. The data showed that sectoral distribution of employment continued to exhibit similar structural pattern, with the rural workforce predominantly engaged in the primary sector and the urban workforce concentrated in the tertiary sector.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजनाओं के अंतर्गत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय शुल्क भुगतान चालान जमा कराने की आवश्यकता को, यानी इसकी जो भौतिक प्रति होती है उसे जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 1 अगस्त या उसके बाद किए गए स्वैच्छिक शुल्क भुगतान के लिए निर्यातकों को प्राधिकरण बंद करने के लिए अपने आवेदन के साथ भौतिक रूप से चालान की प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. इस कदम से प्रक्रिया में तेजी आने, अनावश्यक पत्राचार कम होने और DGFT के क्षेत्रीय प्राधिकरणों में निर्णय लेने में अधिक एकरूपता सुनिश्चित होने की उम्मीद है.
1: The gross merchandise value of the government e-marketplace has increased from 422 crore rupees to over 1,55,000 crore rupees in the last decade. This was stated by Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal. In a social media post, Mr. Goyal said that over 12 lakh micro and small enterprises, including more than 2 lakh led by women, and over 42,000 startups are registered on the portal. He further said that the platform has made government markets more accessible to MSEs, startups, women entrepreneurs and others, while championing the vision.

0: of Vocal for Local and Make in India.
1: यहाँ पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. इसे एक उत्साहजनक खबर माना जाए कि एक दशक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है.
0: बिल्कुल मनोज जी, देखिए जेम जो है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत सरकार खरीदी करती है. तो एक तो कागज और सारा जो पहले डिलेज होता था या पेमेंट्स में डिले होता था, अब आप ऑनलाइन जाइए, एक मार्केट प्लेस क्रिएटेड है, जिस डिपार्टमेंट को खरीदी करनी है वो वहां से खरीदी करता है. तो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों की तरफ ये एक कदम था और इसका अडॉप्शन जो है वो काफी बढ़ गया है. तो और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बढ़ गई है. ये अगर आप देखें जो नंबर मंत्री जी ने बताया है, तो जेम जो है सरकार में काफी उसको अडॉप्ट किया जा रहा है.
1: जी जी जी.
2: And just a small reminder for our listeners at this moment, in case you have any market-related queries, you can reach out to us on 2331-4444 or 2331-0481 or 2371-7106. And of course, please add the code 011 before any of the numbers that you're dialing. You must also remember that we do not address stock or company-specific queries.
1: श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन हमारा फोन इन कार्यक्रम होता है, यानी आप हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा सवाल. आप हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में से जापान में लिवाली तेज रही है. जापान का निक्केई 225 सूचकांक कारोबार के अंत में 2.1% लाभ के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.6% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली.
2: And with that, we have our next caller who joins us from Delhi as well. Premjeet is on call with us. Good evening, Premjeet. Please go ahead with your question.
3: Okay, good evening, all of you, ma'am. My question to the respected Deepshikha ma'am in the regard of, ma'am, when I visited all these port close to LPG and crude oil, I have seen, ma'am, in Texas, U.S. build so many LPG terminals, new terminals. So, could we expect that the trade will be impact with our country and our region as well? Thank you, ma'am.
0: मेरा ख्याल है आप क्रूड ऑयल के बारे में जानना चाह रहे हैं. तो क्रूड ऑयल में देखिए, काफी समय तक अभी अनिश्चितता जो है और उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि जो मेन सप्लाई क्षेत्र रहा है क्रूड ऑयल का, मिडल ईस्ट, वहां पर जो है बहुत अनिश्चितता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और वो अनिश्चितता हट नहीं रही है. तो वो अनिश्चितता जब तक रहेगी तब तक क्रूड ऑयल पर हम प्रेशर देखेंगे कुछ समय तक.
2: So since we spoke of crude oil, it's time to take a look at the next story for this evening. Global crude oil prices edged higher today as Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai said that the Strait of Hormuz will not reopen until the US continues its naval blockade against Iran. Brent crude was trading 1.4% up at $84.72 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 1.1% higher at $79.02 per barrel when reports last came in.
1: श्रोताओं, आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार. भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य 0.7% की बढ़त के साथ 1,50,641 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी मामूली कमजोरी के साथ 2,31,373 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको दीपशिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
0: धन्यवाद मनोज जी. थैंक यू निहारिका.
2: मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे दीपशिखा ऑन मार्केट मंत्रा. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस फॉर आवर लिसनर्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट. सेंसेक्स एड्स 43 पॉइंट्स. Nifty settles at 24,584. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI. And global crude oil prices rise. And with that,

0: a wrap on today's edition of Market Mantra. Take care and see you in the next one.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

बिल्कुल, ये प्यार भरी जो रात है, गीतों से भरी जो रात है, वो कहीं नहीं ढलने वाली है। बिल्कुल, आप बनी रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और मैं हूँ आपके साथ रितिका।

नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान

0: की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ आप बने रहिए और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों

0: पर उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने 11 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को अधिसूचित किया है। इससे ई वीजा धारक विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि नए बंदरगाहों को शामिल किए जाने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की उपयोगिता में वृद्धि होगी। मंत्रालय ने बताया कि भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में स्वीकृति दे दी जाती है। नए बंदरगाहों को शामिल किए जाने के साथ भारत में ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों को प्रवेश की सुविधा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्ण लाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ नागरिकों ने भाग लिया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
3: The Parliament also passed the Bankers Book Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House yesterday. He said the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi has informed that no decision has been taken by the government to increase ethanol blending with petrol beyond 20%. In a written reply to a question in the Rajya Sabha, Mr. Gopi said that any future decision regarding higher ethanol blends will be taken only after detailed scientific and technical studies and consultations with all relevant stakeholders, including automobile manufacturers and oil marketing companies, OMCs. The minister said that the Ethanol Blended Petrol EBP program has been implemented through a phased, scientifically validated and consultative process involving Niti Aayog, automobile manufacturers, OMCs and technical institutions. The 80th Independence Day celebrations this year will highlight Yuva Shakti and the contribution of young India towards building a Viksit Bharat by 2047, along with the commemoration of 150 years of the national song Vande Bhataram. Briefing media in New Delhi yesterday, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh said the celebrations will be led by Prime Minister Narendra Modi from the historic Red Fort. The Prime Minister will unfurl the national flag and address the nation for the first time. The national song will be sung from the ramparts of the Red Fort during the Independence Day ceremony. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining a significant momentum across the country, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of national song Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi has urged the citizens to participate enthusiastically in the movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. The India Navy U.S. Explosive Ordnance Disposal EOD Exercise 2026 has commenced at Southern Naval Command Kochi yesterday. It will continue till the 14th of this month. The bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist diving and EOD teams of the two navies. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 6 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज़ में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरि ने। इस खामोश रात में जब चारों ओर सुकून की चादर बिछी हो, ऐसे में अगर कोई मधुर गीत कानों तक पहुंच जाए तो फिर क्या कहने। लगता है जैसे रात और भी हसीन हो गई हो और हर धुन दिल को अपने साथ किसी खूबसूरत एहसास की दुनिया में ले जा रही हो।

लिबास फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जीवा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, कोई चेहरा खामोशी से दिल में उतरता रहे, कोई याद रात की तन्हाई में धीरे से दस्तक देती रहे। कुछ सपने नींद में नहीं आते, वो तो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और हर सुबह दिल फिर उसी ख्वाब को जीने की चाह करता है।

इजाजत फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। प्यास भी जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास है। हर प्यास का बुझ जाना जरूरी तो नहीं, कुछ अधूरी चाहते ही तो दिल को जिंदा रखती हैं। बस यूं ही कतरा कतरा जीते रहिए, कतरा कतरा बहते रहिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 45 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

बसीरा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है।

0: है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और व्यवहारिक प्रशिक्षण को मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कृषि रणनीति के तीन प्रमुख लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों की आजीविका हैं। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के छात्रों की छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति सीधे और समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। भारतीय और अमरीकी नौसेना विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ। गीत सुहाने, कुछ ऐसे गीत जो कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचते हैं, जिनकी धुन में बीते लम्हों की खुशबू है।

वक्त फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस एक एहसास होता है जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाता है।

दो बदन फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कभी ठंडी हवा का झोंका, कभी बादलों की छांव, और अचानक दिल कह उठता है, कुछ लोग दूर होकर भी कहां दूर होते हैं, वो तो हर मौसम में, हर खुशबू में चुपके से याद आते ही रहते हैं।

आरजू फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मोहब्बत से भला कब तक यूं नजरें चुराइएगा, दिल की राहों से होकर आखिर हमारे पास ही तो आइएगा। आपका ये रूठना भी कमाल है और हमारा आपको मनाना भी। इश्क में ये छोटी छोटी नोक झोंक ही तो रिश्तों में मिठास खोलती है।

पड़ोसन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: todo.
1: आई मिलन की बेला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सोचता हूं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मगर ये दिल है कि तुम्हारी एक मुस्कान पर अपनी सारी खबर खो बैठता है। तुम्हें चाहना शायद कोई फैसला नहीं, बस एक खूबसूरत एहसास है जो चुपचाप दिल में उतरता गया और पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरी हर खुशगवार सोच का हिस्सा बन गई।

लाल बत्ती फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलील चौधरी ने। हाय झिलमिल, ये शाम के साए हाथ से निकल न जाएं।

मेरा साया फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

0: वक्त हुआ है 1:44 और ठीक 36 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए।

20 साल बाद फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, इन शब्दों में जैसे किसी के जाने का दर्द भी है और उसे रोक लेने की एक मासूम सी गुजारिश भी। कभी किसी की मौजूदगी इतनी खास हो जाती है कि उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। मन बस यही कहता है, थोड़ी देर और ठहर जाइए, अभी तो दिल की बातें बहुत सारी बाकी हैं।

गाइड फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पुराने बंधनों को पीछे छोड़कर फिर से जीने का मन करता है। बीते हुए कल की उदासी को समेटकर आज में एक नई उम्मीद तलाशने का मन करता है। कुछ गीत इसी एहसास को आवाज देते हैं।

वक्त हुआ है 1:53 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: Electronic signatures.
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें।

0: संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेल्स एसोसिएशन लिमिटेड के पिछले 3 कारोबारी दिनों में सोने के औसत मूल्य के आधार पर भुनाए जाने की कीमत 14,957 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। दक्षिण अमरीकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतें ढहने की खबर है। मलबे में दबने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, यहां तक कि राजधानी बोगोटा में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण और कोलंबिया की संबंधित एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 250 मील पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होज डेल पालमार में था, जहां लगभग 4,800 लोग रहते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। ये प्रतियोगिता 15-30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies, procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users. The Parliament also passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on the key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee meeting held at Parliament House yesterday. He said the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। पहले प्यार की मुलाकातें भला कौन भूल पाता है, वो पहली नजर, वो झिझकती सी मुस्कान, दिल की बढ़ती धड़कन और घंटों की बातें, सब कुछ आज भी उतना ही ताजा लगता है। वक्त गुजर जाता है मगर पहले प्यार की यादें दिल में हमेशा एक खूबसूरत गीत की तरह बजती रहती है।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कुछ बातें लफ्जों की मोहताज नहीं होती, उन्हें कहने के लिए बस एक नजर ही काफी होती है। नजरें जब दिल का हाल कहने लगे तो समझिए प्यार का मौसम दस्तक दे चुका है।

वक्त हुआ है 2:26 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

खेल खेल में फिल्म का गाना आपने सुना शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। पहली नजर में ही दिल को कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे ये मुलाकात आज की नहीं बरसों पुरानी हो। नजरों ने न जाने कब दिल की बात कह दी और दिल ने चुपके से एक ख्वाहिश कर ली। हमने तुमको देखा कुछ ऐसे जैसे हर जन्म में तुमसे मिलने की आरजू रही हो।

लावारिस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आकर मिले, जैसे वक्त ने फिर से वही कहानी खोल दी हो और दिल ने मुस्कुरा कर कहा हो। कुछ मुलाकातें देर से होती हैं, मगर शायद इसलिए कि उनका इंतजार और भी खूबसूरत हो।

सौतन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। रात सुरमई है, आसमान पर चांदनी की हल्की सी चमक, हवाओं में एक मीठी सी खामोशी और चारों ओर फैला सुकून। ऐसी रातों में दिल भी कुछ पुरानी यादों के पन्ने खोलने लगता है। कोई भूली हुई मुलाकात, कोई अधूरी सी बात और कोई बेहद प्यारा गीत।

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 44 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

सौतन की बेटी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे सावन कुमार ने लिखा और संगीत दिया वेदपाल ने। वक्त बीत गया, मौसम बदल गए, जिंदगी अपनी राह पर आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो प्यार आज भी उसी तरह महफूज है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधेय संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री, न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच ये विधेयक प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में

0: परिणामी संशोधन करना भी है।
1: एंड टू मेक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन रिलेटेड इनएक्टमेंट्स।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा ना करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्फोटक आयुष निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। ये अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 15 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में बहुत से हंसी पल आते हैं, पर जो बात पहले प्यार की होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। वो मासूमियत, वो पहला एहसास, वो छुप छुप कर देखना और मुस्कुराना। सच में दोस्तों, पहला प्यार किसी पुरानी डायरी में रखे उस सूखे गुलाब जैसा होता है जिसकी महक बरसों बाद भी धुंधली नहीं होती, बिल्कुल इस गीत की तरह।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर से अभी आपने गीत सुना। ये रातें ये ढलती हुई खामोशियां, ये रातें ये ढलती हुई खामोशियां, नदी की लहरों में छिपी कुछ कहानियां, पास तुम बैठो तो वक्त भी ठहर जाए, यहीं थम जाए जिंदगी की सारी रवानियां।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दिल्ली का ठग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, वक्त की फितरत है चलते जाना। दिन ढलते हैं, महीने बदलते हैं और साल गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन पर वक्त की धूल कभी नहीं जमती।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अवतार से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं मधुमती फिल्म से, मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में।

मोहब्बत क्या है कोई पूछे तो बता देना, मोहब्बत क्या है कोई पूछे तो बता देना, एक खामोश सा एहसास जो दिल में उतर जाए, ना कोई शर्त हो ना कोई शिकवा जहां, बस एक इंसान को देखकर दिल को सुकून मिल जाए। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में आइए सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म से ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में फिल्म वो सात दिन से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, इश्क ये लफ्ज सुनते ही दिल के किसी कोने में एक मीठा सा एहसास जाग उठता है। मोहब्बत जब किसी की जिंदगी में दस्तक देती है तो पूरी दुनिया ही एक खूबसूरत मौसम और बहार जैसी लगने लगती है। आइए इस प्यारी सी नजाकत और एहसास को कुछ अल्फाज के जरिए महसूस करते हैं।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म नाइट इन लंदन से अभी आपने ये गीत सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं, दिल ही तो है फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म मधुमति से आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और मैं आपके साथ बनी रहूँगी सुबह 6 बजे तक। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। कई लोगों के

सुबह के 4:11 और 11 सेकंड हुए हैं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, बारिश और फुहार का मौसम, प्यार का मौसम। सावन सिर्फ बादलों का बरसना ही नहीं, बल्कि दिल के किसी कोने में छुपी हुई पुरानी यादों का महक उठना है। और जब दिल में एहतराम और यादें हों तो संगीत कैसे दूर रह सकता है। चलिए सावन के इसी रिमझिम मिजाज को रंगीन बनाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जीवन मृत्यु से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, सावन का ये महीना हमें सिखाता भी है कुछ, और ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी तपिश हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, सब्र के बाद हर तरफ हरियाली और खुशियां ज़रूर आती हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर बहार।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म राजकुमार से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हम किसी के साथ कैसा बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वही सब साथ में जाएगा और हमारे बोल ही सबको याद रहेंगे, बाकी तो सब मिट्टी है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म धर्म कर्म से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं, ये सुदास की आवाज़ में। फिल्म है सावन को आने दो।

दोस्तों, ये महीना पतंगे उड़ाने का भी है। रंग बिरंगी पतंगे बादलों में जब लहराती हैं तो दिल बाग बाग उठता है, और ये पतंगे आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाती हैं। जिस तरह से हमारा मन होता है ऊंचाइयों तक पहुंचने का, ये पतंगे भी वैसे ही पहुंच जाती हैं। और बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है पतंगे उड़ाने में। तो सुनते हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म शहीद से अभी आपने गीत सुना। कुछ तुम्हारे हैं कुछ मेरे हैं, कुछ तुम्हारे हैं कुछ मेरे हैं, ये जो बिखरे से उजाले और अंधेरे हैं, चलो संग मिलकर एक दुनिया सजाते हैं जहां तेरे मेरे सपने एक रंग में ढल जाते हैं।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से अभी आपने गीत सुना। मोहब्बत की राहों में मुस्कुराते चलो, मोहब्बत की राहों में मुस्कुराते चलो, दिलों के फासले मिटाकर बस प्यार बांटते चलो। नफ़रतों के इस दौर में उल्फत का पैगाम बनो, जहां से भी गुज़रो प्यार की एक सुंदर मिसाल बनो। हंसते हंसाते राहों में खुशबू बिखराते चलो, ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगी, बस प्यार बांटते चलो। छोटी सी जिंदगी है, शिकवे गिले भुलाते चलो, जहां मिले कोई उदास चेहरा वहां एक मुस्कान सजाते चलो, प्यार बांटते चलो।

बिल्कुल दोस्तों, प्यार बांटते चलो। और ये गीत आपने सुना, हम सब उस्ताद हैं फिल्म से, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। और आइए अब प्रोग्राम की अंतिम पेशकश नर्तकी फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

दोस्तों इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और अब अरुणिमा से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक पेश किया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया है कि सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने कहा कि संबंध में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंजन की मजबूती, उत्सर्जन और ईंधन दक्षता जैसे मापदंडों को कवर करने वाले व्यापक प्रयोगशाला अध्ययनों और फील्ड परीक्षणों ने पुष्टि की है कि E20 निर्धारित मानकों के तहत उपयोग के लिए सुरक्षित है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए तेज पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 11 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के बंदरगाह शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में स्वीकृति दे दी जाती है। पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप से 111 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एविलार्डो डेला एस्प्रियला ने बताया कि भूकंप में 87 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आपातकाल की घोषणा की। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोकू क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDP ने विशाखापत्तनम की एक निजी चिकित्सा उपकरण कंपनी के साथ स्वदेशी AI संचालित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक के व्यवसायीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता कैंसर से पहले के घाव का शीघ्र पता लगाने के लिए AI सहायता प्राप्त क्षमताओं से लैस देश में ही विकसित पोर्टेबल डिजिटल कोल्पोस्कोप ग्रीवाजिन के निर्माण और व्यावसायीकरण में सहायता करेगा। ग्रीवाजिन में एक हाई डेफिनेशन कैमरा, एक अंतर्निर्मित डिस्प्ले और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञों को नियमित नैदानिक जांच के दौरान पूर्व कैंसर संबंधी असामान्यताओं की पहचान करने में सहायक करता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। 2 दिन तक चलने

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस सुहानी सुबह में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

दोस्तों, ज़िंदगी में हम हर कदम पर कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। पर जहाँ तक होशियारी सीखने की बात है, वो सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है।

मुकेश की आवाज़ में फिल्म अनाड़ी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ये छोटी सी दुनिया है और कब कोई कहाँ पर मिल जाता है, कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, कुछ पता नहीं लगता है। कई बार हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते और वो हो भी जाता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रंगोली से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म शोर से।

दोस्तों, मुस्कुराना भी एक कला है, क्योंकि अपनी मुस्कान से ही हम दूसरों के चेहरों पर चमक ला सकते हैं। जब कोई दिल से मुस्कुराता है तो आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म लहू के दो रंग से ये गीत।